0: ವಂದೇ ಮಾತರಂ.
1: ಸುಜಲ ಸುಫಲ ಮಲಯ ಜ ಶೀತಲ ಶಸ್ಯ

एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून 2026 सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार।
1: देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने

0: प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रणथंभौर चैनल। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं पीयूषा और कैलाश अनुज की आवाज में इस भक्ति रचना के साथ।

पीयूषा और कैलाश अनुज की आवाज में आप सुन रहे थे भक्ति रचना, और इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। FM 101.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। आइए सुनते हैं आज हमारी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा कार्यक्रम विवरण में।

अब से कुछ ही देर यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा से श्री रामचरित मानस गान, 6:45 पर सुनेंगे संगीत सरिता।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम। हेलो रणथंभूर, आप सुनेंगे प्रातः 7 बजे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार प्रभात, आप सुनेंगे सुबह 8 बजे। सुबह 8:15 पर सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़।

कार्यक्रम लोक रंग आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे सुबह 9:00 9:10 पर आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत। फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गाने नए पुराने आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर 9:55 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट ट्रांसमीटर के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण।

विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा से कार्यक्रम रंग तरंग आप सुनेंगे सुबह 11 बजे, दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग

विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा से कार्यक्रम यादों की महफिल आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 101.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा से।

भरत को ये प्रतीति है कि श्री राम को वनवास दिलाना काल का कुचक्र है। कैकेयी तो मात्र माध्यम बन गई। उन्हें चिंता इस बात की है कि किस प्रकार श्री राम का राज्याभिषेक कराया जाए। ये सोचकर मन में आशा का संचार होता है कि श्री राम गुरु की अवज्ञा नहीं करेंगे, किंतु दूसरे ही क्षण मन में ये विचार भी आता है कि वशिष्ठ जी श्री राम की रुचि को ध्यान में रखकर ही जो कहना होगा कहेंगे। भरत स्वयं तो मात्र सेवक हैं, जिसका हठ करना भी कुकर्म होगा। जब भरत समेत सभी सभासद वशिष्ठ जी के सम्मुख उपस्थित हुए तो मुनिवर ने आशातीत कुछ भी नहीं कहा। बोले, श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। उनका जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है। नीति, प्रेम, परमार्थ तथा स्वार्थ को उनसे अधिक कोई नहीं जानता। वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, दिक्पाल, माया, जीव सभी की आज्ञा प्राप्त है। अतः उनकी रुचि जानकर ही कुछ कहने में सबका हित होगा।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 216।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। ये है इस श्रृंखला की 11वीं और अंतिम कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं। रविंद्र जी, बहुत से संगीतकारों की रचनाओं को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने रिदम पैटर्न के बारे में, ताल जो बज रहा है उसमें अपना कुछ दे करके, जोड़ करके एक नया पैटर्न बनाया है, नया रिदम पैटर्न देखने को मिलता है। वो उस गीत की जरूरत होती है। जैसे आर डी बर्मन साहब का एक एल्बम है दिल पड़ोसी है, उसमें जो गीत है उसकी झलक पहले सुनते हैं।

0: दिल पड़ोसी है एल्बम से ये जो गाना था गुलजार साहब की रचना है, आशा जी के स्वर में हमने सुनी, और इस रचना में जो ताल बज रहा था वो स्वयं उस गीत के लिए आरडी साहब ने
1: कंपोज किया था
0: या उसे बनाया था, ये कह सकते हैं। ऐसे ही प्रयोग धर्मिता फिल्म संगीत के बारे में भी देखने को मिलती है।
1: बिल्कुल देखने को मिलती है। और देखिए कि फिल्मी गीतों का जो सौंदर्य है वो सौंदर्य उसी वजह से आया है और वो उस गाने को चिरंजीवी बनाता है।
0: जी जी जी।
1: तो इसमें जब हम लोग ये रिदम पैटर्न की बात करते हैं
0: जी,
1: तब मुझे ये कहना बहुत जरूरी

0: लगता है, जैसे संगीतकार होते हैं, अरेंजर होते हैं, तो उसी तरह से फिल्मों में रिदम कंपोजर भी रहे हैं। अन्ना जोशी, मारुति कीर, भवानी शंकर, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका योगदान है कि जिस वजह से हमको ये इतने अच्छे अच्छे पैटर्न सुनने को मिले हैं। तो ये जो होता है, गाना जब बनता है तब गाने के साथ में उसका रिदम कैसा होना चाहिए, उसका रिदम पैटर्न क्या होना चाहिए
1: जी,
0: ये तय करने वाले ये रिदम के अरेंजर होते हैं। और वो किस वाद्य पे ये पैटर्न अच्छा लगेगा, कौन से वाद्य का उसमें प्रयोग करना उचित होगा, ये वो तय करते हैं।
1: अच्छा।
0: और उस वाद्य के ऊपर फिर वो जब पैटर्न बजता है तब जाकर वो रिदम अच्छा तैयार होता है, बहुत सुनने को अच्छा लगता है। तो रिदम का महत्व इसलिए है कि वो शुरू में ही उसके ऊपर काम किया जाता है, शुरू में ही उसके ऊपर सोचा जाता है कि ये गाने के लिए हम रिदम का पैटर्न किस तरह रखेंगे, इसमें वेरिएशन लाने के लिए कहाँ पर उसको मोड़ देंगे, कहाँ पर उसका वो मोड़ को फिर से और एक मोड़ देकर दूसरी राह पर या जो मूल प्रवाह है उसमें
1: जी,
0: लाएंगे
1: जी।
0: तो मूल प्रवाह से मोड़ लेकर जाना, फिर मूल प्रवाह में आना, ये सारी चीजें जो है वो रिदम पैटर्न के लिए वो अरेंजर तय करते हैं। तो ऐसे में देखो, जैसे तबले के साथ में ढोलक बजा, फिर वेस्टर्न म्यूजिक के साथ में तबला बजा, तो उसी तरह मल्टीपल आर्टिस्ट मतलब बहुत ज्यादा कलाकार लेकर हम लोग मतलब एक अच्छा रिदम पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ऐसा जब हमारे प्रतिभाशाली संगीतकारों को लगा तो उन्होंने क्या किया कि दो तबले की बजाय और चार पांच तबले, छह तबले, सात तबले ऐसे एक साथ बिठाए,
1: रिदम सेक्शन को बढ़ाया,
0: रिदम सेक्शन को बढ़ाया, जबकि मल्टीपल ट्रैक्स है लेकिन हर एक कलाकार जो है उसका बजाने का एक अपना लहजा होता है, उसका उस वाद्य के ऊपर का नियंत्रण अलग होता है। तो इसलिए चार पांच लोग जब एक साथ बजाते हैं तो वो चार ट्रैक एक ही आदमी से बनाने से कुछ अलग होता है, तो इसलिए चार पांच लोगों को बिठाकर एक साथ में एक पैटर्न उनको दिया जाता है और वो पैटर्न वो लोग बजाते हैं
1: जी।
0: और उसमें फिर गाना जब हम लोग सुनते हैं तो जैसे भोर भी पनघट पर मुहे नटखट शाम सताए,
1: बहुत सुंदर
0: रचना है, उसका पैटर्न भी बहुत खूबसूरत है और तबला भी एक साथ बजा हुआ है।
1: तो क्यों ना इस गीत की झलक सुन ली जाए।
0: बिल्कुल।

0: सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से इस गीत की झलक आपने सुनी श्रोताओं। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रविंद्र जी, इस विश्व की, इस दुनिया की एक लयबद्धता है
1: जी,
0: ऐसे ही हमारे जीवन के, सभी के जीवन की अलग अलग लय है। एक विशिष्ट लय में हम सब चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कला के साथ, संगीत के साथ कैसे इसे जोड़ करके और समृद्ध किया जा सकता है?
1: जी, हमने इस पूरी श्रृंखला में ताल के बारे में बात की है
0: जी,
1: तो अब जब इसका समापन करने जा रहे हैं, तो जीवन का और ताल का कैसे संबंध है उसके बारे में बात करके मैं मेरी बात पूरी करना चाहूंगा
0: जी।
1: पूरी सृष्टि जो है उसमें एक ताल है। ये ताल जो होता है, वो ताल जैसे सूरज का रोज सुबह आना, शाम को सूरज का ढलना
0: जी,
1: फिर दूसरे दिन सुबह आना, तो ये एक प्रकार का चक्र है, ताल चक्र जिसे हम कहते हैं
0: जी।
1: सम है, काल है, फिर सम आई, फिर काल आया। तो उस तरह जीवन में हर जगह, मतलब सृष्टि में तो हर जगह आपको ताल खिलता हुआ दिखेगा। जैसे पृथ्वी जो है वो सूरज के
0: इर्द गिर्द चक्कर लगाती है,
1: तो उसमें भी एक ताल है
0: जी।
1: पूरे सृष्टि में जगह, अगर झरने से पानी बह रहा है तो उसकी एक मधुर नाद आती है, सुनाई देती है, उसमें भी एक ताल होता है
0: जी।
1: तो ऐसे हर जगह पर हमारा जो जीवन है वो पूरा तालमय है। घड़ी की टिक टिक जिस समय के साथ में हम लोग चलते हैं
0: जी जी,
1: वो भी एक ताल दर्शाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा हृदय जो है
0: जी,
1: वो भी एक ताल में चल रहा है, और जब तक ये ताल हमारा सही चलता है तब तक हमारा जीवन भी सही चल रहा है। इसलिए हम लोग जो है ना शब्द प्रयोग करते हैं कि तालमेल बनाए रखो
0: जी। हाँ जी,
1: तो तालमेल जो है ये मेल होना जरूरी है ताल का जीवन में, और वो मेल अगर अच्छे से होता है तो पूरा जीवन हमारा अच्छा होता है।
0: क्या बात है।
1: मैं अपने इस कार्यक्रम का समापन स्वर सम्राज्ञी लता दीदी, जिनके गले में हम लोग कहते हैं कि माँ शारदा बसी है
0: जी,
1: और जिनका गाना जो है वो अपने आप में एक ताल है। मतलब जैसे हमने कहा शुरू में कि सुर और ताल ये संगीत की बुनियाद है
0: जी,
1: और उसका मिलाप जिसमें बहुत अच्छे से होता है वो हमें सबसे ज्यादा कर्णप्रिय लगता है, सबसे ज्यादा सुनने में अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल सही।
1: तो लता दीदी का गाना हमें इसलिए अच्छा लगता है कि सुर और ताल इसका जो मेल उनमें है वो देखते देखते खुशी से जीवन भर जाता है
0: जी जी। तो श्रोताओं को भेंट करने के लिए लता जी के स्वर में वो कौन सा गीत है?
1: पलकों की छाव में, इस फिल्म का, कोई मेरे माथे की बिंदिया।
0: वाह वाह, बहुत सुंदर गीत है और एक निराला ही ढंग है इसमें ताल का, और वो प्रयोग धर्मिता की जो हम बात कर रहे थे
1: हाँ,
0: वो यहाँ हमें दिखाई देती है। आइए सुनते हैं यही गीत।

0: पलकों की छांव में इस फिल्म से लता जी के स्वर में ये सुंदर सा गीत आप सुन रहे थे, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी के साथ सिने संगीत में तबले का दौर, ये श्रृंखला अब समाप्त होती है। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे थे आकाशवाणी के अश्रेणी संगीत रचनाकार, आकाशवाणी के ही आत्मीय श्री रविंद्र खासनीश जी। रविंद्र जी, विविध भारती के सुनने वालों की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से हम आपके हृदय से आभारी हैं।
1: जी धन्यवाद।
2: सिने संगीत में तबले का दौर, इस श्रृंखला की 11वीं और अंतिम कड़ी अभी आपने सुनी। इस श्रृंखला में हमारे विशेष अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीश। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

FM 101.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। सुबह के 7 बजे है। आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो रणथंभौर। कार्यक्रम का आगाज करते हैं शूरवीर फिल्म के एक गाने के साथ, जिसे सुनने के लिए हमें कॉल किया है अलीगढ़ टोंक से सलीम नसीम, खुशबू नाजिया, इनायत, साहिल और शेर खान ने। तो सुनते हैं इनकी फरमाइश पर शूरवीर फिल्म का ये गाना।

शूरवीर फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। इस गाने को सुनने के लिए हमें कॉल किया था अलीगढ़ टोंक से सलीम, नसीम, खुशबू, नाजिया, इनायत, साहिल और शेर खान ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो रणथंभौर। कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं कसूर फिल्म से। इसे सुनने के लिए हमें कॉल किया है ग्राम पचीपल्या जिला सवाई माधोपुर से रामगोपाल वर्मा, कुलदीप वर्मा, मोहिनी देवी, विनीता वर्मा और लवकुश वर्मा ने। तो सुनते हैं इनकी फरमाइश पर कसूर फिल्म का।

कसूर फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। इस गाने को सुनने के लिए हमें कॉल किया था ग्राम पचीपल्या जिला सवाई माधोपुर से रामगोपाल वर्मा, कुलदीप वर्मा, मोहिनी देवी, विनीता और लवकुश वर्मा ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो रणथंभौर। कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं संगम फिल्म से। इस गाने को सुनने के लिए हमें कॉल किया है मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, नवीन, कविता, गोविंद, सिमरन, व्योमिनी और पुरंजय ने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: FM 101.5 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो रणथंभौर। कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं दिल तो पागल है फिल्म से। इसे सुनने के लिए हमें कॉल किया है बेमेतरा छत्तीसगढ़ से योगेश जांगड़े ने। तो सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना।

संगम फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। इस गाने को सुनने के लिए हमें कॉल किया था मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, नवीन, कविता, गोविंद, सिमरन, व्योमिनी और पुरंजय ने।

दिल तो पागल है, इस फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। इस गाने को सुनने के लिए हमें कॉल किया था बेमेतरा छत्तीसगढ़ से योगेश जांगड़े ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो रणथंभौर। कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं बरसात फिल्म से। इसे सुनने के लिए हमें कॉल किया है पिपरिया मध्य प्रदेश से उमाशंकर पटेल, शांति, प्रियांशी, नंदिनी, माधव, यशवंत और सिमरन ने। तो सुनते हैं इनकी फरमाइश पर बरसात फिल्म का ये गाना।

बरसात फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे और इस गाने को सुनने के लिए हमें कॉल किया था पिपरिया मध्य प्रदेश से उमाशंकर पटेल, शांति, प्रियांशी, नंदिनी, माधव, यशवंत और सिमरन ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो रणथंभौर।

0: आकाशवाणी एट 90
1: एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं दूसरा आदमी फिल्म से। इसे सुनने के लिए हमें कॉल किया है जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, अंकिता, कृषभ और वेदा सिंह ने। तो सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना।

दूसरा आदमी फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे और इस गाने को सुनने के लिए हमें कॉल किया था जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, अंकिता, कृषभ और वेदा सिंह ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो रणथंभौर।

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: FM 101.5 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो रणथंभौर। कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं घरवाली बाहर वाली फिल्म से। इसे सुनने के लिए हमें कॉल किया है पांचोलास से भंवर सिंह जादौन ने। तो सुनते हैं उनकी फरमाइश पर ये गाना।

घरवाली बाहरवाली फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे और इस गाने को सुनना चाहा था पांचोलास से भंवर सिंह जाधौन ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो रणथंभौर। कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं कुर्बान फिल्म से। इसे सुनने के लिए हमें कॉल किया है गांव तालवाल मध्य प्रदेश से मेहरबान सिंह नागल ने। तो सुनते हैं इनकी फरमाइश पर कुर्बान फिल्म का ये गाना।

कुर्बान फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे और इस गाने को सुनने के लिए हमें कॉल किया था ग्राम तालवाल मध्य प्रदेश से मेहरबान सिंह नागल ने। अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं हिना फिल्म से। इसे सुनने के लिए हमें कॉल किया है पीलीभीत से जालिम सिंह ने।

हिना फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे और इस गाने को सुनने के लिए हमें कॉल किया था पीलीभीत उत्तर प्रदेश से जालिम सिंह ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो रणथंभौर। कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं पूरब और पश्चिम फिल्म से। इसे सुनने के लिए हमें कॉल किया है अहमदाबाद गुजरात से कृष्ण भाई रेबारी, हीराबेन, कमल और विजय ने।

पूरब और पश्चिम फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे और इसे सुनने के लिए हमें कॉल किया था अहमदाबाद गुजरात से कृष्ण भाई रेबारी, हीराबेन, कमल और विजय ने। इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम हेलो रणथंभौर कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। स्टूडियो घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार प्रभात और 8:15 पर सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है। विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
3: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
0: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि

0: एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
0: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति है। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
3: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
2: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10.82 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
4: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
2: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10.55 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1.12 करोड़ से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

0: रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
1: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
5: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
6: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में एनटीए अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने एनटीए ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का पीओके में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है।

0: latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: FM 101.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। सुबह के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोकरंग, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं बीना कुमावत के द्वारा गाए लोकगीत।

0: मतगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

बीना कुमावत की आवाज में आप सुन रहे थे लोक संगीत, और इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम लोक रंग यहीं संपन्न होता है। FM 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का शुभारंभ करेंगे। भारतीय रेलवे देश भर के स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगा और नए पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में आज से मौसम बदलने की संभावना, 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में होने वाली इस बैठक का विषय 2027 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। ये हर भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी और एनडीए ने हमेशा राष्ट्र के विश्वास को मजबूत किया है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। श्री शर्मा कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में रामजल सेतु लिंक, यमुना जल समझौता, जयपुर मेट्रो फेज 2 और रिफाइनरी जैसी ऐतिहासिक परियोजनाओं से राजस्थान में विकास का नया युग शुरू हुआ है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश में विभिन्न वर्गों को मिल रहा है। पाली के रहने वाले किसान रामचंद्र ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री कुसुम बी योजना के तहत 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है। इससे बिजली की बचत होने के साथ ही खेती में लागत भी कम हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: भारत सरकार की जो वाटरशेड स्कीम है उसके तहत मैंने एक डिक्की बनाई, उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री कुसुम की योजना के तहत ये 5 किलोवाट का सोलर लिया जिसकी लागत 3,05,000 है, लेकिन सरकार किसानों को मात्र 1,30,000 उपलब्ध करा रही है। इस योजना के लाभ से ये कृषि कार्य में सुगमता आने लगी है एवं खेती की लागत में बहुत कमी आ गई। और सरकार ने जो ये सराहनीय कार्य किया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए, उसके लिए सरकार का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर हैं। वे अब से कुछ देर बाद आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस ट्रांसमीटर के उद्घाटन के साथ ही प्रदेश में कुल एफएम

0: ट्रांसमीटरों की संख्या 39 हो जाएगी। वर्तमान में आकाशवाणी के 38 केंद्र हैं। ये राज्य की 94% क्षेत्र को कवर करते हैं और 99% आबादी तक आकाशवाणी की पहुंच है। कार्यक्रम के बाद श्री वैष्णव MNIT जाएंगे। इसके बाद वे दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से देश में हुए ऐतिहासिक विकास, सुशासन और जनहित के कामों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। भारतीय रेलवे देश भर के स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों और रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा आग जैसी किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखना है। इस ऑडिट के तहत स्टेशन भवनों, बिजली व्यवस्था, वातानुकूलन, आपातकालीन निकास, फायर फाइटिंग सिस्टम और पानी की उपलब्धता सहित सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा इंतजामों की गहन जांच की जाएगी। स्टेशनों की जांच के लिए रेलवे के विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमें बनाई जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर राज्य अग्निशमन विभाग और विशेषज्ञ एजेंसियों का सहयोग भी लिया जाएगा। ऑडिट के दौरान सुरक्षा मानकों का कड़ाई से आकलन किया जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कल कुछ क्षेत्रों में हल्की बरसात हुई। इनमें अलवर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और भरतपुर के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के विभिन्न हिस्सों में 14 जून तक तेज आंधी और बारिश का दौर बना रह सकता है। इस दौरान बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। विशेष तौर पर उत्तर पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे पहले प्रदेश में तेज गर्मी और उमस का असर लगातार बना हुआ है। कल श्रीगंगानगर 45.9 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जबकि 19 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के पहले चरण की सभी पाबंदियां हटा दी गई हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार को देखते हुए ये फैसला किया गया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव कपिल चंदरवाल ने बताया कि पिछले दिनों हुई हल्की बारिश और तेज हवाओं के कारण हवा की गुणवत्ता में ये सुधार दर्ज किया गया है। ग्रैप से जुड़ी उपसमिति प्रदूषण की स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है और भविष्य में परिस्थितियों के अनुसार आगे के आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। डाक विभाग ने युवाओं और छोटे व्यापारियों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए फ्रेंचाइजी योजना 2.0 शुरू की है। पाली डाक विभाग के अधीक्षक तरुण कुमार शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत स्पीड पोस्ट, पार्सल बुकिंग, पिकअप और डिलीवरी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय EMS और ट्रैक्ड पैकेज सर्विस की बुकिंग का भी काम होगा।
1: इस योजना के तहत स्पीड पोस्ट या पार्सल बुकिंग, पिकअप, कलेक्शन और पार्सल डिलीवरी, इंटरनेशनल EMS, EMI तथा इंटरनेशनल ट्रैक पैकेज सर्विस जैसी सेवाओं की बुकिंग की जा सकेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य डाक सेवाओं में आमजन की भागीदारी बढ़ाना है, ई कॉमर्स क्षेत्र में डाक विभाग की पहुंच मजबूत करना है और रोजगार के अवसर देना है। पाली के युवा और देश के युवा, राज्य के युवा अधिक से अधिक इस योजना से जुड़े और डाक विभाग में अपनी भागीदारी भी बढ़ाएं और रोजगार के अवसर भी डाक विभाग के माध्यम से प्राप्त करें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे

0: पर आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। भारतीय रेलवे देश भर के स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगा और नए पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में आज से मौसम बदलने की संभावना, 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम का आगाज करते हैं पंकज उदास की आवाज में इस गजल के साथ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

अलका याग्निक और हरिहरण की आवाज में आप सुन रहे थे गाना, और इसी गाने के साथ आज का हमारा कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। FM 101.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रणथंभौर चैनल। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गाने नए पुराने। कार्यक्रम का आगाज करते हैं साथ साथ फिल्म के गाने के साथ, जिसे गाया है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने।

0: अरिजीत सिंह चिन्मय श्रीपदा की आवाजों में आप सुन रहे थे टू स्टेट्स फिल्म का एक गाना। इस गाने को लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन में पिरोया था शंकर एहसान लोय ने।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए वो भी ऐप से, वाह।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: FM 101.5 MHz पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने नए पुराने। कार्यक्रम में अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज में इस गाने को लिखा है वर्मा मलिक ने और धुन में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: लता मंगेशकर की आवाज में रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे और इसी गाने के साथ आज का हमारा कार्यक्रम गाने नए पुराने यहीं संपन्न होता है। एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट ट्रांसमीटर के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण।
1: और यही है कि एक नया सोपान हम चढ़ने जा रहे हैं आकाशवाणी के इतिहास में। 90 साल के हमारा लंबा इतिहास रहा है जिसमें हमने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से श्रोताओं से अपना जुड़ाव किया है।
2: और जितेंद्र, मैं तो ये श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि एफएम ट्रांसमीटर की स्थापना के साथ ही हम एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। ये सफर सूचना का है, संस्कृति का है और आप सबसे जुड़ाव का है। तो यूं ही जुड़े रहिए इस विशेष प्रसारण में। और साथ ही जितेंद्र, मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। रात भर जलता रहा हूं सुबह होने की आस में, रात भर जलता रहा हूं सुबह होने की आस में, टूट कर बिखरा नहीं हूं फिर से जुड़ने की प्यास में। मैं वो लम्हा नहीं जो गुजरा नहीं, मैं वो लम्हा नहीं हूँ जो गुजरा नहीं हूँ, मैं वो सपना हूँ जो टूटा नहीं हूँ।

0: श्रोताओं, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आज रामगढ़ जैसलमेर में 20 किलो वाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा रहा है। श्री अश्विनी वैष्णव माननीय सूचना प्रसारण मंत्री, रेल मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा, और साथ ही इस कार्यक्रम में गरिमा में उपस्थिति है प्रसून जोशी जी की, जो अध्यक्ष हैं प्रसार भारती के। और ये जो ट्रांसमीटर है ये जैसलमेर जो हमारा बॉर्डर एरिया है उसके पास में स्थित है, तो इसकी वैसे ही महत्ता बहुत बढ़ जाती है।
1: और जितेंद्र, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे एफएम यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की खूबी, और ये खूबी है बिना खरखराहट के स्टीरियो साउंड में संगीत और बातें सीधे हमारे श्रोताओं के दिलों तक उतरेंगी।
0: बिल्कुल, और जो रेडियो प्रसारण के माध्यम से और भी लोग हमसे जुड़ पाएंगे, जो दूर दराज के लोग हैं, जैसलमेर के जो आसपास के इलाके हैं, जो गांव ढाणियां हैं, वहां तक हमारी बात पहुंच पाएगी, रेडियो की बात पहुंच पाएगी, आकाशवाणी की बात पहुंच जाएगी।
1: हाँ, क्योंकि हम मानते हैं कि ये रेडियो सिर्फ हमारा नहीं, आपका है। आपकी समस्याएं, आपकी कहानियां, आपके गीत, आपकी बातें और आपकी शिकायतें भी।
0: बिल्कुल, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेडियो ने जो हमारी सभ्यता है, कला है, संस्कृति है, उसको जीवंत रखने में एक अपनी महती भूमिका निभाई है, और ये

0: एक मील का पत्थर साबित होगा कि जब हमारे यहाँ पर रेडियो का नेटवर्क उत्तर उत्तर बढ़ता जा रहा है।
1: बिल्कुल जी, हमारे लिए बहुत ही बड़ा गर्व का विषय और खुशी का दिन है कि ये नया एफएम ट्रांसमीटर स्थापित हो रहा है। इसके साथ ही आपकी आवाज और दूर तक और ज्यादा स्पष्ट रूप से पहुंचेगी। और जितेंद्र, जैसा कि प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं, हमारे चेयरमैन हैं श्री प्रसून जोशी, और वे बहुत अच्छे गीतकार भी हैं। अगर उन्हीं के शब्दों को, बहुत ही सरल शब्दों में वो अपनी बात कहते हैं, उन्हीं के शब्दों को अगर मैं श्रोताओं तक पहुंचाऊं तो कहना चाहूंगी कि पुरानी राहों से हटकर नई डगर बनानी है, पुरानी राहों से हटकर नई डगर बनानी है, गिरकर उठना सीखा है, अब दौड़ लगानी है। ये नया हिंदुस्तान है, आंखों में अरमान है, हाथ में हुनर है, दिल में तूफान है, अब सपनों को हकीकत की जुबान देनी है, दुनिया को अपनी नई पहचान देनी है।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं ये कार्यक्रम चल रहा है, मंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में आप प्रतीक्षा कीजिए मंत्री जी का उद्बोधन आपके रेडियो सेट पर।
1: तो बस श्रोताओं को लिए चलते हैं

शुरुआत थोड़ी सी जोश के साथ। भारत माता की, भारत माता की। ये हुई ना बात। जयपुर की धरती तो शूरवीरों की धरती है, कला की भी धरती है। यहाँ तो जोश भी है, कला भी है, साइंस टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है। आज ये बड़ा ही शुभ दिन है। आकाशवाणी के जैसलमेर के ट्रांसमीटर का इनॉग्रेशन यहाँ जयपुर में हम सब मिलके कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मेरे साथ आज सौभाग्य है कि सब एक से बढ़कर एक हमारे गणमान्य

व्यक्ति समाज के लीडर्स जुड़े हैं, मैं सबको नमस्कार करता हूं। हमारे जयपुर की सांसद मंजू दीदी, दीदी सभी इनको दीदी बोलते हैं, पार्लियामेंट में भी दीदी बोलते हैं। वो दीदी अलग टाइप की थी, दूसरी वाली, ये हमारी जयपुर की दीदी जयपुर के घेवर जैसी है बिल्कुल। सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार, पार्लियामेंट में, सदन में, लोकसभा में, सब भी आपको मंजू दीदी के नाम से जानते हैं। वैसे हमारी दीदी हमारे ऊर्जा के मंत्री ऊर्जावान श्री हीरालाल नागर जी, जिन्होंने राजस्थान के ऊर्जा के मानचित्र को पूरी तरह से बदल दिया है। हमारे एमएलए साहब श्री गोपाल शर्मा जी, जो जब बोलते हैं मजा आता है सुनने का, एक अलग ही आनंद आता है। एक कार्यक्रम में मैं साथ था आपके, बहुत ही आनंद आया था। और जो अभी बोल रहे थे कि मानव संवेदनाओं के चितेरे, मुझे तो ऐसे ऐसे शब्द भी नहीं आते भाई। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ जुड़े ऐसे श्री प्रसून जोशी जी, जिन्होंने जीवन में, समाज में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसा अद्भुत नाम कमाया है। और आज हमारे साथ प्रसार भारती को एक नया स्वरूप देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको जिम्मेदारी दी है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ और जुड़े हैं श्री पंडित विश्वमोहन भट्ट जी। आपने वीणा को दुनिया में एक नया नाम दिया। मेरे ख्याल से वीणा के बारे में आपसे बेहतर जानने वाले विश्व में शायद ही कोई होंगे। हमारा सौभाग्य आज आप पधारे इधर। उस्ताद मोइनुद्दीन खान जी, आप पधारे, बहुत ही अच्छा लगा। सारंगी में व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है, मजा आता है। आप पधारे, आप दोनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सलील भट्ट जी भी, आप भी पधारे। मैं पंडित जी को भी धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा कि आज स्वास्थ्य कमजोर होते हुए भी आप यहाँ आए, बहुत धन्यवाद आपको। सीधा अस्पताल से आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी श्री राजीव जैन जी, आप भी हैं। जैसलमेर में हमारे बहुत ही मजबूत विधायक छोटू सिंह जी भाटी जी भी जुड़े हुए हैं, आपका भी नमस्कार। छोटू सिंह जी, जब हम जैसलमेर गए थे, वहां से स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस चालू करने गए थे, वही छोटू सिंह जी ने जो बाजरे का चूरमा खिलाया, मजा आ गया था। आज भी याद आता है, छोटू सिंह जी भेजिएगा भाई बाजरे का चूरमा, मजा आ गया था। बाजरे के सोगरे को फर्स्ट क्लास चूर के छोटू सिंह जी, राम राम भाई साहब खमागणी, बहुत मजा आ गया था। तो ऐसे हमारे मजबूत विधायक, और विशेषकर जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु जुड़े हैं, हमारे अधिकारी बंधु जुड़े हैं और पत्रकार बंधु जुड़े हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज जो बॉर्डर इलाके का एक FM ट्रांसमीटर चालू हुआ है, इसके पीछे थॉट प्रोसेस, सूचना संपर्क विभाग, आकाशवाणी का प्रसार, वो सब ठीक है। लेकिन कुछ दिनों पहले माननीय गृह मंत्री जी बॉर्डर एरिया का निरीक्षण करके गए थे, बीकानेर गए थे और बॉर्डर एरिया को पूरा देख के आए थे। तब उन्होंने कहा कि हमारे पूरे बॉर्डर एरिया को हमें कंप्लीट आकाशवाणी दूरदर्शन से पूरी तरह से कवरेज करना है, तो उस सीरीज में हम इसको काम को चालू कर रहे हैं। मैं राजीव जी को रिक्वेस्ट किया हूं, अपने CEO साहब को भी किया था मैंने, गौरव जी को, राजीव जी आप भी पूरा बॉर्डर एरिया उठा लें, कच्छ से लेके कंप्लीट अपना जम्मू कश्मीर तक, जो भी एरिया में जहां पर भी कोई गैप हो बॉर्डर एरिया में, आकाशवाणी का और दूरदर्शन का भी, दूरदर्शन का भी आप देख लें, प्रसार भारती की तरफ से आप सभी देखेंगे, तो दूरदर्शन और आकाशवाणी का कहीं पर भी कोई भी गैप हो, उस गैप को हमें फिलअप करना है, पूरे बॉर्डर एरिया को हमें कंप्लीटली कवर करना है। आज ये पहली उसकी कड़ी है। और जैसलमेर जिले का करीब करीब 20,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल, 80 किलोमीटर का रेडियस कवर करके ये ट्रांसमीटर सब जगह पहुंचाएगा विश्व की, हमारी संस्कृति की बात को। मैं थोड़ी बात रेलवे की करना चाहूंगा, क्योंकि राजस्थान को वर्षों तक रेलवे के हिसाब से इग्नोर किया गया था, वर्षों तक। बॉर्डर एरिया है,

इतना बड़ा विशाल प्रदेश है, एक सामरिक दृष्टि से भी स्ट्रैटेजिक दृष्टि से भी देखो तो राजस्थान का एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे देश की स्ट्रैटेजिक टाइम फ्रेम में, स्ट्रैटेजिक फ्रेम में। ऐसे में राजस्थान के लिए जब यूपीए की सरकार थी मात्र 682 करोड़ रुपए का बजट रेलवे के लिए दिया जाता था। इतना विशाल प्रदेश और इतना महत्व सामरिक, जनता की आकांक्षाओं पे कहीं पर भी यूपीए की सरकार के समय में रेलवे का खड़े उतरने का प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि जनता जो भी आकांक्षा करे, कोई उसके लिए काम करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, वो फंड्स होते नहीं थे। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी ली और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि कल उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का एक नया कीर्तिमान बनाया। ये हम सबके लिए गौरव की बात है कि ऐसा नेतृत्व हमको मिल रहा है जो देश को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाना और एक ऐसी नींव रखना जो कि भारत को विकसित भारत बनाएगी। तो जब मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली तो 10,228 करोड़ रुपए का भी अपने को राजस्थान के लिए बजट मिलता है, यानी जो बजट पहले मिलता था उसका 15 गुना। हमारे जनरल मैनेजर साहब यहां पर है, अमिताभ जी, अभी जीएम साहब एयरपोर्ट से आते हुए मुझे बता रहे थे कि करीब 200 स्टेशनों का, पूरे प्रदेश में 200 स्टेशनों का प्लेटफॉर्म्स को ठीक करना, उनकी ऊंचाई पूरी करना, उनकी लेंथ पूरी करना। जीएम साहब 200 करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर का स्टेशन कितने लोगों ने देखा भाई, कैसा लगता है भाई पीछे कैसा लगता है? अच्छा है तो पता नहीं चल रहा है। गांधीनगर का स्टेशन फोटो है, कैसा है? खातीपुरा कितने जनों ने देखा है? थोड़े दिन बाद में उसका खातीपुरा में जो साइडिंग है उसका इनॉग्रेशन करेंगे। अपने इतना रेलवे का काम हाथ में लिया है कि आनंद आता है देख के कि मोदी जी ने देश का ये अपना जयपुर का स्टेशन। अभी मुझे एक भाई पूछ रहे थे कि स्टेशन के काम में किस तरह की कठिनाई आ रही है, मैं उनको समझा रहा था विदेशों में जब स्टेशन का काम करते हैं तो पूरे ट्रैफिक को बंद कर देते हैं, यानी रेलगाड़ियां आएगी नहीं जाएगी नहीं वहां से, कई जगह तो 5-5, 6-6, 7-7 वर्षों तक, 7 साल तक ट्रैफिक बंद। इस तरह का भी देश दुनिया में कई उदाहरण है, अपने देश में तो ऐसा नहीं कर सकते, अपने तो एक दिन भी गाड़ियां अगर रुक जाए तो जैसा समझते हो मैं क्या बोलू, समस्या बड़ी हो जाए। इसीलिए काम को बहुत सावधानी के साथ करते हुए, बड़े स्टेशन का टाइम फ्रेम है 4-6 साल का करीब करीब, और छोटे स्टेशन का टाइम फ्रेम है 2-3 साल का, सावधानी के साथ ध्यान रखते हुए। और प्रदेश की जो कठिनाई, अभी मुझे भाई हमारे एमएलए साहब गोपाल जी भाई साहब बता रहे थे और दीदी मंजू जी बता रहे थे, स्टेशन के सामने लोगों की कुछ समस्या है, तो मैं जेडीए से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको बहुत संवेदना के साथ करें। जो भी हमें डेवलपमेंट करना है, किसके लिए डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट तो लोगों के लिए है, नागरिकों के लिए है, तो वो जो भी हम डेवलपमेंट करें संवेदना के साथ करें, और उसमें जल्दबाजी ना करके सबको साथ लेके सबकी बात करके सबको समझ के उनके लिए क्या किया जा सकता है वो सब समझ के ही हर चीज को करें। तो आप दोनों इसमें

लीडरशिप लीजिए और माननीय मंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी जेडीए को इसको बात में बता देंगे। वैसा ही गांधीनगर स्टेशन भी बहुत ही सुंदर बन रहा है जयपुर गांधीनगर, ये जयपुर गांधीनगर का मतलब जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन्स को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी। स्वर्ण नगरी है जयपुर, स्वर्ण नगरी है जैसलमेर, ये जैसलमेर का स्वर्ण नगरी का स्टेशन कंप्लीट हो गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी जल्दी इसका इनॉग्रेशन करेंगे। इतना सुंदर काम हुआ है, इतना सुंदर काम। जीएम साहब बहुत धन्यवाद, हमारे अमिताभ जी जीएम साहब हमारे रेलवे के करीब 10,000 अधिकारी हैं, उनमें से वन ऑफ द फाइनेस्ट अधिकारी हैं, एक बार जरा आप सब इनका अभिवादन करें। वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स है रेलवे के, चार पांच जो बहुत अच्छे अधिकारियों में जिनको मैं मानता हूं उनमें से आप एक। इसी महीने इनका कंप्लीट टेन्योर कंप्लीट होता है, लेकिन अपने 2-2.5 वर्षों के समय में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये जोधपुर का स्टेशन, बहुत ही सुंदर डिजाइन है और बहुत ही अगले 50 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डिजाइन जो भी करो अगले 50 वर्षों की। ये अलवर का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है, सेकेंड एंट्री तो बन ही गया है। बीकानेर भुजिया की नगरी, बीकानेर भाई साहब आपका, कोटा का स्टेशन, कोटा को मॉडर्न बनाया है, जहां पे स्थापत्य कला, जहां पे मॉडर्न, जैसा जहां का स्वभाव, जहां की डिमांड, उसके हिसाब से सारा काम किया गया है। अजमेर, बहुत सारे स्टेशन है छोटे बड़े, कभी आप देखना सोशल मीडिया पे काफी। ये आबू रोड, मतलब पूरे प्रदेश में आज 85 स्टेशन का काम, 85 स्टेशनों पे काम चल रहा है, करीब करीब 4,600 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टेशनों में, जिससे कि एक प्रदेश के लिए एक नई नींव बने, एक बहुत आगे के लिए, भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा। 15 स्टेशन पे काम पूरा हो गया है, करीब करीब 23 स्टेशन पे हो गया है, और लेकिन एग्जैक्ट हमारे सिस्टम में जब तक काम एकदम 100% पूरा नहीं होता तब तक उसको पूरा नहीं बोलते। बाड़मेर, बूंदी, दौसा, डीग, देशनोक तो माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इनॉग्रेशन के टाइम में गए थे, ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद, फतेहपुर शेखावाटी, गंगापुर सिटी, गोगामेड़ी, गोविंदगढ़, राजगढ़, खैरथल, जैसलमेर, मांडलगढ़, मंडावर महवा रोड, सोमेसर के साथ मेरी बचपन की यादें जुड़ी है, चाय पीते थे स्टेशन के बाहर, गांव से आते थे जब गाड़ी पकड़ने के लिए, और करीब 80% काम कंप्लीट हो गया है 45 स्टेशनों में, बहुत सारे स्टेशन है और काफी करीब करीब अच्छी प्रोग्रेस है। साथ ही साथ इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, जिसको हमने गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल की ब्रांडिंग दी है, 10 हो गए राजस्थान में कंप्लीट, मारवाड़ मुंडवा, खेमली, भोपाल सागर, सोनू, हनुवंत, सुंदलक, मांडलगढ़, न्यू सराधना, हिरनौदा, केरला, ये 10 कंप्लीट हो गए। 6 पे काम चल रहा है, जोगी मगना, लानेला, धानक्या तो पंडित दीनदयाल जी की भूमि है, तो वहां भी एक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के हिसाब से, कोटा में, नवलगढ़ में, बीरदवाल में, और उसके बाद में 8 और अप्रूवल दिए हैं, तो एक तरीके से राजस्थान को रेलवे का पूरा बेनिफिट मिले और राजस्थान की इंडस्ट्री हो, जनसाधारण हो, उन सब के लिए बहुत सारे काम, कई सारे काम हाथ में लिए। आगरा से बांदीकुई की डबलिंग 150 किलोमीटर, अजमेर से चित्तौड़गढ़ की डबलिंग

178 किलोमीटर, बीकानेर से लालगढ़ की डबलिंग 11 किलोमीटर, देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा का गेज कन्वर्जन वर्षों वर्षों से पेंडिंग पड़ा था। मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाली ये लाइन है जो सदियों से बहुत महत्वपूर्ण लाइन थी। ये लंबे टाइम से गेज कन्वर्जन नहीं हो रहा था, मीटर गेज थी और एक तरीके से डिफंक्ट सी पड़ी थी। इसको भी कंप्लीट कर रहे हैं। नीमच से बड़ी सादड़ी की नई लाइन, पुष्कर एक बहुत ही हमारे श्रद्धा का बड़ा केंद्र, उसको मेड़ता से जोड़ने की लाइन, रामगंज मंडी से भोपाल मध्य प्रदेश को जोड़ने की लाइन, रेवाड़ी से खटवास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खटवास है जहां पे बहुत बड़ा एक मल्टी मॉडल कार्गो हब है, तो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा है। उमरा से देबारी की डबलिंग, लूनी से भिलड़ी, गुजरात जाने के लिए खासकर जो पोर्ट एरिया है वहां जाने के लिए, मुंद्रा कांडला इन सब पोर्ट्स के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मथुरा से धौलपुर से झांसी की थर्ड लाइन, फिर धौलपुर सर मथुरा से गंगापुर सिटी का गेज कन्वर्जन, रिंगस से सीकर की डबलिंग, सवाई माधोपुर से जयपुर की डबलिंग, शिवपुर कला मध्य प्रदेश में से कोटा की नई लाइन, तरंगा हिल अंबाजी, अंबाजी श्रद्धा का इतना बड़ा केंद्र, तरंगा हिल से अंबाजी आबू रोड की नई लाइन, और करीब करीब 46 नई गाड़ियां कोविड के बाद से राजस्थान के लिए चालू हुई है, जिसमें जयपुर की वंदे भारत, अजमेर की वंदे भारत, जोधपुर की वंदे भारत, जैसलमेर से दिल्ली की स्वर्ण नगरी, कई गाड़ियां, बीकानेर से मुंबई की गाड़ी, बीकानेर से दिल्ली वंदे भारत, उदयपुर से चंडीगढ़ की एक्सप्रेस, अजमेर से दरभंगा की गाड़ी जो कि हमारे जयपुर की दीदी मंजू जी ने बहुत ही इसकी डिमांड की थी। अब दीदी की आज डिमांड है कि उसको रेगुलर करना चाहिए। क्या दीदी, दरभंगा वाली गाड़ी को रेगुलर करना चाहिए, कर दे? दीदी कह रही है घेवर खिलाएंगे अगर आप पूरा कर दोगे तो, घेवर नहीं खिलाओगे तो नहीं होगी। खिलाएंगे दीदी घेवर, पक्का मंगवा लिए? चलिए इस गाड़ी को भी रेगुलर कर देंगे, आने वाले कुछ ही दिनों में आकर दरभंगा से अजमेर जयपुर की जो गाड़ी है उसको आने वाले कितने दिन में कर पाएंगे जीएम साहब? 15-20 दिन में कर पाएंगे, पता करके बताएंगे आप। चलिए 15-20 दिन के अंदर प्रयास करें भी। क्या शिवाजी 15 दिन में कर सकते हैं? कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। एक महीने में? चलिए सभी एक महीने का टाइम ले रहे हैं तो 2 महीने का टाइम देता हूं मैं, 2 महीने के अंदर अंदर इस गाड़ी को रेगुलर कर देंगे दरभंगा के लिए, जो दीदी की डिमांड है, आपकी डिमांड है, इसको रेगुलर कर लेंगे। साथ ही साथ दो और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जयपुर में। एक तो अच्छा एआई डेटा सेंटर बना रहे हैं। एआई डेटा सेंटर भविष्य का ऑयल है ये समझो, क्योंकि भविष्य की इकोनॉमी एआई पे बहुत बड़ी आधारित होगी। तो जयपुर में एक एआई डेटा सेंटर का काम चालू कर रहे हैं। काम को फेजेस में करेंगे। अभी मैं माननीय मंत्री जी से, नागर जी से मैं बात कर रहा था कैसे उसके लिए पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट जो होती है वो पूरी हो सके, और साथ ही साथ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाएंगे जयपुर के लिए, जो हमें बार बार गुड़गांव या दिल्ली जाना पड़ता है उसकी जरूरत ना पड़े, वो व्यवस्था भी यहां पर जयपुर में करेंगे। और यहां के नवयुवकों के लिए, नौजवानों के लिए MNIT में क्वांटम और AI और सेमीकंडक्टर की 3 नई फैसिलिटी का आज ही उद्घाटन करेंगे MNIT जयपुर में। एक तरीके से माने प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद है, और जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी का बहुत ही मेहनत का काम है, तो इस डबल इंजन की सरकार में बहुत सारे नए काम राजस्थान में हो रहे हैं। उसी कड़ी में कुछ और नई चीजें जुड़ेंगी। आज इस कार्यक्रम में आप सब आए, आकाशवाणी की कई यादें ताजा की। मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से, और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से, और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से, कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। समय परिवर्तन बहुत पहले हो चुका था, हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे, डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल। हाइपर लोकल का मतलब यह हुआ

0: जैसे राजस्थान का उदाहरण दें, अगर हम पश्चिमी राजस्थान में अलग तरह से बोली है, पूर्वी राजस्थान में अलग बोली है, उत्तर में जाओ तो अलग भाषा का एक प्रभाव दिखाई देता है, दक्षिण में जाओ तो भाषा का अलग प्रभाव दिखाई देता है, आदिवासी क्षेत्रों में एक अलग वाइब्रेंट कल्चर है, शहरी क्षेत्रों का अलग एक अलग उसकी ताकत है, उसकी अलग ऊर्जा है। क्या हम आकाशवाणी का उपयोग करके, क्या हम दूरदर्शन का उपयोग करके हाइपर लोकल उस क्षेत्र के कलाकारों को, उस क्षेत्र के नए क्रिएटर्स को, गांव के, कस्बे के, नगर के कलाकारों को, वहां के क्रिएटर्स को, वहां पे काम किसी भी तरह का, कोई पत्थर की मूर्ति गढ़ रहा है, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले दुनिया तक पहुंचने की, कोई बहुत सुंदर तरीके से कारीगरी का काम करता है, कोई बहुत अच्छा वीणा का शिष्य है पंडित जी का, उसको एक मौका मिले, कोई सारंगी हो, कोई बांसुरी हो, कोई किसी भी तरीके से किसी भी वाद्य यंत्र के माध्यम से, किसी भी गायन के माध्यम से, किसी भी तरीके से जुड़ता है, उसको जोड़े, उसको अपॉर्चुनिटी दे हाइपर लोकल, हाइपर लोकल। वो आप एक परिवर्तन अगले 3 वर्षों का टारगेट ले, 1000 दिन का टारगेट ले, और 1000 दिनों में हाइपर लोकल डिजिटल फर्स्ट, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है, और जो भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म हो उस प्लेटफॉर्म को यूज करें, जब चाहे अपनी खुद की ऐप बनाए, जिस तरीके से लोकल न्यूज, लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खान पान, जयपुर आए तो घेवर की बात करें, दाल बाटी चूरमा की बात करें, बाजरे का चूरमा की बात करें, सोगरे की बात करें, ग्वारफली की सब्जी की बात करें, ये चीजें समझाएं, राजस्थान के गट्टे की सब्जी की बात करें, कई जो चीजें हैं अपनी संस्कृति की, और देश भर में, उड़ीसा जाओ उड़ीसा की, बंगाल जाओ बंगाल की, तमिलनाडु जाओ तमिलनाडु की, संस्कृति को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए हाइपर लोकल डिजिटल फर्स्ट। इस आधार पे अगले 1000 दिनों में अच्छा एक्शन प्लान बना के, एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, आपके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। आप जो जमीन से जुड़े हुए आकाशवाणी के सभी कर्मचारी और सभी साथी हैं, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी, पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप, इस भावना के साथ काम करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आभार, बहुत बहुत आभार हम सभी के समक्ष अपने उद्बोधन से।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे 20 किलोवाट ट्रांसमीटर रामगढ़ जैसलमेर में जो उद्घाटन हुआ है, उस कार्यक्रम में माननीय मंत्री महोदय का उद्बोधन।
3: और बहुत ही सुखद अवसर है ये जितेंद्र, हम सबके लिए, कि राजस्थान में ये 39वां FM ट्रांसमीटर स्थापित हुआ।
2: जी हाँ, और श्रोताओं, ये मंत्री जी के उद्बोधन के साथ ही अब हम आपसे चाहते हैं इजाजत,
3: और
2: दीजिए इजाजत।
3: इस प्रसारण से हमें इजाजत दीजिए। मैं राजकुमारी करनानी और
2: मैं जितेंद्र वर्मा,
3: और अब आगे का सफर आप तय करेंगे हमारी साथी रौनक के साथ।

0: FM 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा से।
1: ये कविता लिखी और जो ये कविता भी लिखी

0: ये मैं जौनपुर में कक्षा 6 में पढ़ता था, तो एक दिन मेरी माँ ने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने के लिए दी पोस्ट बॉक्स में। मैंने चिट्ठी डाली और पोस्ट बॉक्स में एक चीज चिट्ठी निकली हुई थी, तो मैंने वो चिट्ठी खींच ली और चिट्ठी खींच के मैं अपने विद्यालय में ले गया। उस विद्यालय में मैंने उस चिट्ठी को बच्चों को बताया कि मैं चिट्ठी लाया हूँ, और मैंने क्लास रूम में उसे खोल के चिट्ठी पढ़ी, सबको सुना दी। और फिर मैं आया और जैसे आके मैं अपनी माँ को सारी बात बताता था, तो मैंने बताया कि आज मैंने ये चिट्ठी खोल के की, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। मेरी माँ ने कहा कि तुमने इतना गंदा काम किया। वो किसी का दुख था, किसी का सुख था, वो जाने पते पे जाना था, तुमने उसे रास्ते में ले लिया,
1: रोक लिया।
0: तुम्हारी चिट्ठी मैंने मामा को भेजी है और वो चिट्ठी कोई कर देता तो बहुत ही गंदा काम किया, जीवन में नहीं करना है। उन्होंने गोंद से उसे चिपकाया, एक एक रेशा जोड़ा और फिर ले जाके वो चिट्ठी मुझसे डलवाई उन्होंने पोस्ट बॉक्स में, सेम पोस्ट बॉक्स में वो चिट्ठी डलवाई। अब वो चिट्ठी तो चली गई होगी, पहुंच भी गई होगी
1: जी जी।
0: यार जो भी है, लेकिन उस चिट्ठी मेरे भीतर भी रह गई। तो मेरे भीतर जो चिट्ठी रह गई वो फिर मैंने कक्षा 6 में मैंने वो उनकी घटना है, फिर मैंने 12 में के आसपास या बीएससी पार्ट 1 में रहा हूंगा तब मैंने वो कविता लिखी। तो वो जो कविता है
1: जी आप अगर सुनाए हमारे,
0: हाँ
1: तो 4 लाइन,
0: तो वो कविता मैं आपको पढ़ देता हूँ। तो कविता ये है कि भैया की चिट्ठी आई है, घर भर का चिट्ठा लाई है, पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, लिखी अम्मा की पुकार है।
1: क्या बात है, वाह।
0: आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है। घर में पैसे 4 नहीं है, मिलता कहीं उधार नहीं है, भाई जब से दिन बिगड़े हैं, कोई नातेदार नहीं है, छोटे का तुम हाल न पूछो, मोटी कितनी खाल न पूछो, अर्जी आज नहीं दे आया और अगला इंटरव्यू कल है, शेष कुशल है।
1: क्या बात है, वाह।
0: बहना का संदेश आया है, उसने फिर से कहलाया है, सामान और नकदी की खातिर सास ससुर ने धमकाया है, कुछ ना कुछ सहते रहते हैं, ऐसे दिन कटते रहते हैं, ये सब छोड़ो अपनी लिखना, बीत रहे कैसे छिन पल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, क्या बात है।
0: आखिरी बंद है कि बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं।
1: वाह।
0: बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं, लिख दो ख्याल रखे सेहत का, मिनट मिनट पर टोक रहे हैं, आखिर में बस इतना कहना, तुम घर की चिंता मत करना, मजबूरी ढोने का हम में, बाकी अब भी काफी बल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, वाह क्या बात है। बहुत बढ़िया एक मार्मिक कविता आपने सुनाई, इसमें बड़ी संवेदनशील कविता सुनाई। प्रताप जी, हम आगे बढ़ने से पहले अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवाते हैं, आपकी पसंद का गाना, बताइए कौन सा गाना सुनवाए।
0: इंदिवर का वो गाना था, आओ मिल जाएं हम सुखंदर सुमन की तरह,
1: सुनते हैं यही गाना।

0: प्रताप जी, आपकी गाने से पहले बात चल रही थी कविता की, आपने कविता सुनाई। ये बताइए कि आप कविता से गजलों की ओर कैसे मुड़े, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कवि अलग और गजलकार अलग। इतवार छोटा पड़ गया, ये आपका गजल संग्रह है, इसके बारे में बताइए।
1: अब जैसे मैंने कहा कि इसमें शहर का दोष है कि मैं उस शहर में बचपन से पढ़ रहा था, वहां सांस ले रहा था, वहां कवि लेखक जो जैसा बना गढ़ा, दुष्यंत भी उसी शहर के थे
0: जी,
1: तो
0: दुष्यंत कुमार,
1: दूसरी
0: साये
1: चीज।
0: में धूप उनकी
1: हाँ,
0: बड़ी
1: साये में धूप।
0: मशहूर रचना।
1: फिर मैं जैसे व्यंग्य लिखता था

0: होता है कि आप एक बात कहते हैं फिर एक बात छुपा लेते हैं, क्योंकि अगर आप छुपा के नहीं बोलते हैं तो व्यंग नहीं उत्पन्न होता है,
1: अनकहा कुछ
0: अनकहा, तो एक अनकही चीज को आप धीरे से खोलते हैं। तो मुझे ये सेम एलिमेंट शायरी में लगा कि आप पहले मिसरे में आप उसको धीरे से कहते हैं, जैसे मैंने पहला जो शेर मेरी स्मृति में आया वो नासिर काजमी का था, जिसने मुझे शायर बनने के लिए इंस्पायर किया, वो शेर था कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर, ये बड़ा सादी से लाइन है कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर
1: क्या बात है?
0: उदासी बाल खोले सो रही है।
1: वाह वाह वाह।
0: तो अब उन्होंने एक स्त्री की कल्पना की, मुझे वो पेंटिंग की तरह लगा, मुझे वो शायरी की तरह लगा, फिर ये लगे। तो इस तरह के जो अगर मैं तमाम सारे शेर कहूं, ये मुझे लगा कि वालियासी साहब का एक शेर था कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, तुम जीत गए हम हार गए, तुमने पाया हमने खोया। अब अगला मिसरा तो मैं सोच ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, इन छोटी छोटी बातों का हम कोई ख्याल नहीं करते।
1: क्या बात है, वाह।
0: तो अब ये जो खूबसूरती थी इसने इंस्पायर किया, फिर हमारी जो जनरेशन है वो जगजीत सिंह को सुनती हुई बड़ी हो रही थी।
1: जी जी।
0: तो हम उनकी गजलें सुन रहे थे, तो उन गजलों में भी वो स्वाद था कि गजलें आकर्षित इसीलिए करती थी कि गजलें कंटेंट का मीडियम थी, गायकी का तो माध्यम थी लेकिन वो शब्द की भी महत्ता थी। तो उसमें ये जो शायरी की जो बारीकियां हैं उसमें भी थी। फिर प्रकाश पंडित की एक बड़ी भूमिका थी, उन्होंने हिंदी में तमाम लोग उर्दू के स्क्रिप्ट नहीं जानते थे, तो उन तमाम सारी किताबें स्टेशन पे मिल जाती थी, तो हमने उसके जरिए गालिब फैज मीर उन सबको पढ़ना शुरू किया। तो लगा कि ये एक माध्यम है जिससे जो मेरा सटायरिस बेंड ऑफ माइंड है वो और कविता का की जो रुचि है ये दोनों इसमें खूब जमेंगे। और फिर उस तरह के जब आप कोई चीज करते हैं तो उस तरह के लोगों की सोहबत होती है, सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उस तरह के परिवेश में जाते हैं, फिर आप वैसा कुछ हो जाते हैं।
1: जी, तो कोई शेर या
0: वो पूरी गजल यूं है कि कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है, गागर में सागर।
0: कैसे तो, कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया, सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए, उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। और कविता और गजलें, फिर नाटक, व्यंग्य भी लिखा आपने, तो नाटक की ओर भी मुड़े, नाटक लिखा आपने, एक लोई नाम का नाटक जिसका मंचन भी हुआ, कई भाषाओं में अनुदित हुआ, इसके बारे में बताइए। इसकी क्या
0: नाटक
1: कहानी है?
0: क्या था कि मैं श्रद्धेय में प्रभाष जोशी जी मेरे पिता तुल्य थे, तो उनकी जो
1: जनसत्ता के संपादक थे,
0: तो मैं जनसत्ता में उनके साथ रहा, उनका बड़ा स्नेह रहा। तो उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि थी तो मैं उसमें शामिल होने के लिए गया, तो वहां शेखर सेन का नाटक चल रहा था, कबीर जो करते हैं, तो उसमें वो लोई का एक करेक्टर आता है, तो लोई कहती है कबीर से,
1: जी
0: वो चूंकि एकल है तो खुद ही दोनों पात्र कर रहे थे, कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं साहूकार के बेटे से प्रेम करती हूँ। तो कबीर ने कहा चलो मिला लाते हैं।
1: जी,
0: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मेरी पत्नी गए थे, मैंने उनसे कहा कि 600 साल पहले क्या स्त्री पुरुष इस तरह का संवाद करते थे, और अगर करते थे तो ये कौन आदमी आया था 250-300 साल पहले लॉर्ड मैकाले जो कह गया कि ये सपेरों का देश है। तो हम तो इतने, अगर इस तरह का संवाद, और जो उनकी पत्नी थी वो तो बड़े गरीब लोग थे, बड़े छोटे लोग थे, एक जुलाहे थे, बुनकर थे, कोई राजा नहीं थे, कोई विदुषी नहीं थे, झांसी की रानी नहीं थी, कोई रजिया सुल्तान नहीं थी, ये साधारण परिवार के एक स्त्री पुरुष के बीच का संवाद है। तो मुझे लगा कि एक साधारण स्त्री की कहानी तलाशते हैं। फिर मैंने उस पर शोध शुरू किया, तो एक उपन्यास मिला मुझे लोई का ताना, जिसमें लोई के बारे में थोड़ी सी चीज है, रांगे राघव का उपन्यास है। फिर मैंने जो जितने उपलब्ध सामग्री थी उसको पूरा, फिर मैंने एक लंबी कविता लिखने के लिए ये सारा शोध किया था।
1: अच्छा अच्छा,
0: कि मैंने की लंबी कविता में लिखूंगा, 12-13 पेज की कविता लिखी, कविता जैसी बनी नहीं। फिर मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया, वो 13-14 पेज तक गया, फिर रुक गया, और फिर वो मेरे सामने लोई खड़ी हो जाती थी।
1: जी जी।
0: फिर मैंने पूरा नाटक लिखा। अब नाटक लिखने के बाद इलाहाबाद के एक विभूति थे पंडित नरेश मिश्र, तो वो मेरे लिए भी गुरु की तरह थे।

0: उनके पास वो नाटक लेके गया। मैंने उनको दिया, मैंने कहा ये पंडित जी ये नाटक लिखा है। तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि क्या सुंदर बात बताई। ये मैं इसलिए ये बात उनका उद्धरण देना चाह रहा हूं कि जो लोग नाटक लिखना चाहते हैं उनके लिए ये बीज मंत्र की तरह है।
1: जी जी
0: उन्होंने कहा कि जब दो लोग बात कर रहे हों और दो लोगों की बातों में एक दूसरे से कह रहा हो सीधी सीधी बात करो, नाटक मत करो।
1: हाँ बिल्कुल,
0: इसका मतलब कि दूसरा आदमी
1: हाँ,
0: उस बात को सीधी सीधी नहीं कर रहा है।
1: जी जी
0: वो कुछ घुमा के कर रहा है, तो वो नाटक है जो वो कर रहा है। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सीधी सीधी बात मत करो, नाटक करो। तो ये पुस्तक में सीधी हाँ, सीधी बात आ गई है, नाटक नहीं आया है।
1: क्या बात है,
0: तो इतनी सुंदर बात कही कि फिर पूरी पुस्तक को मैं दोबारा लेके गया और दोबारा मैंने उसको नाटक के तौर पे लिखा
1: जी।
0: और ये उनकी ब्लेसिंग्स थी
1: हाँ,
0: उनका आशीष था
1: जी
0: कि नाटक संयोग से दुर्योग से जैसे भी था वो इतना बन गया कि मुंबई में अभी पिछले दिनों उसका मंचन हुआ। इंडिया के मैच के दिन 8 मार्च को महिला दिवस के दिन उसका मंचन था
1: जी।
0: और 2 घंटे का शो और पूरा हाउसफुल और एक आदमी हॉल से बाहर नहीं निकला। बैक टू बैक शो था, उसके 2 घंटे बाद फिर शो था। ऑडियंस में हरीश भिमानी हैं, इरशाद कामिल हैं और तमाम सारे बड़े लोग उसके ऑडियंस में रहे। तो ये मेरे लिए, और जो स्टेज पे आर्टिस्ट थे उसमें मुकुल नाग, मिताली, वैसे अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने काम किया।
1: कहाँ पर था, किस
0: वेदा कुंभा थिएटर में?
1: अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर थिएटर है वो। तो ये तो बहुत बढ़िया, इसके बाद के लिए बधाई। और तकरीबन 9 भाषाओं में इसका अनुवाद
0: जी, 9 भाषाओं में अब तक
1: ये मराठी में भी
0: प्रकाशित हो चुकी है ये पुस्तकें
1: जी,
0: इसकी, और कई भाषाओं में अलग अलग, हिंदी में। तो अभी जो अगला प्रस्तुति है, एक तो ये जिन्होंने तैयार किया है थिंक बिग ग्रुप है तो मुंबई का, तो ये लोग करने वाले हैं इस नाटक को। और अभी इलाहाबाद की रंगकर्मी है सुषमा शर्मा जी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी वो भी करने जा रही हैं, 2-3 महीने में वो भी करेंगी। तो अलग अलग ग्रुप, जबलपुर का एक समूह है, तो अलग अलग समूहों द्वारा ये नाटक तैयार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। मैंने तो
1: लोई नामकरण कैसे,
0: कबीर की पत्नी है उनका नाम है
1: जी। बहुत बढ़िया। और अब आगे बढ़ने से पहले एक आपकी पसंद का गाना सुनते हैं। कौन सा गाना सुनवाए?
0: तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप
1: तुम घना साया, साथ साथ फिल्म की ये गजल है और जगजीत सिंह की आवाज है और इसमें कुलदीप सिंह की मौसीकी है।
0: और इसलिए मुझे और भी पसंद है कि कुलदीप सिंह जी ने लोई का पूरा म्यूजिक किया है, लोई के नाटक का।
1: जी क्या बात है। हाँ। तो ये बात यहाँ कितनी कनेक्ट हो रही है। हाँ। इस बात से

0: साथ साथ फिल्म की इस गजल के बाद प्रताप जी हम जानना चाहते हैं, अभी हाल ही में आपका एक नया कविता संग्रह आया है, उसके बारे में बताइए।
1: ये कविता संग्रह है ए अलिफ आ। ये कविता संग्रह का जो शीर्षक है, ये इसमें एक कविता है मलाला यूसुफजई के पिता पे।
0: जी जी
1: मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि ये जो आपकी सृजन यात्रा है ये कैसे संभव है कवि और पत्रकार के तौर पे। मैंने ट्विटर पे अपने बायो में भी लिखा है कि ये मेरी दो आंखों की तरह है।
0: अच्छा,
1: दोनों आंखें खुली रखता हूं तो साफ दिखाई पड़ती है, देख एक आंख से भी सकता हूं लेकिन पूरा परदृश्य नहीं दिखेगा। तो ये दोनों आंखें एक दूसरे की मदद करती हैं और दोनों आंखें दृश्य को पूरा और सम्यक देखने में सहायता करती हैं। तो जब मलाला को पहली बार गोली लगी और मलाला, तो ये पता चला कि एक लड़की को स्कूल जाने के एवज में उसके लिए गोली मार दी गई। तो फिर मैंने कहा कि भाई उसके पिता माँ पता करो कौन है, बेटी तो बहादुर हो सकती है लेकिन उसके पिता माँ कौन है। तो मैंने पता किया तो उनके पिता थे जियाउद्दीन यूसुफजई। तो मैंने एक पूरी कविता लिखी, ये कैसा पिता है जियाउद्दीन यूसुफजई। उनसे बात भी की, फोन किया, वो एक कहानी थी है कि मैंने उनसे कैसे बात की, कैसे बातचीत हुई। तो किसान थे, कवि थे और वो टीचर थे, तो वो उनकी हम मैंने पूरे उनसे बातचीत करके
0: जी
1: वो पूरी कविता लिखी। तो मैंने फिर एक कविता और लिखी, छोटी सी 3 लाइन की, लिखा कि एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ।
0: क्या बात है, वाह।
1: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह
0: वा।
1: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह, जीती रहे मेरी बेटी मलाला।
0: वाह।
1: तो ये मलाला के लिए ये कविता।

0: था, तो वो कविताएं मैंने उसी कविता पे मेरे इस जो नया कविता संग्रह है उसका शीर्षक बना, और इसमें बहुतेरी कविताएं ऐसी हैं जो किसी घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहली बात यह कि इसमें एक पत्रकार की कविताई की यात्रा है, तो इसमें 20 से अधिक कविताएं खबरों पे लिखी हुई हैं, और खबरों पे पहली बार कविताएं लिखी हुई आपको मिलेंगे, जो न्यूज के अलग अलग डायमेंशन के, कि मैंने 35 साल न्यूज रूम में बिताए हैं, तो मैं 35 साल की जो मेरी यात्रा है उसमें मुझे 20 दृश्य ऐसे मिले जिनको मैंने 20 कविताएं बनाई, तो 20 कविताएं इसमें दर्ज है।
1: क्या बात है, अगर चार लाइन सुनाना चाहे तो सुनाइए।
0: तो एक कविता है आंसू की खबर।
1: जी सुनाए।
0: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती।
1: क्या बात है।
0: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती है। गिरता है एक आंसू न्यूज रूम में, बताता है भरभराए गले से एक सब एडिटर, जिसे आई है अभी अभी एक कॉल, तीन बच्चे महोबा में उसी जगह जाकर कट गए हैं रेल से जहां उनकी मां ने जान दी थी।
1: वाह वाह, मार्मिक कविता।
0: तीन दिन पहले पूरा न्यूज रूम नम हो जाता है, हर कोई जीने लगता है। तीन दिन, तीन बच्चे, एक माँ, एक खबर।
1: ओह, बहुत ही संवेदनशील कविता है। और अब यहाँ पर हमें लगता है कि एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को।
0: हमेशा उदासी वाले गाने क्यों गाए। हाँ। पान खाएं सैया हमार।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: ये गाना सुनते हुए पूरा लोक संगीत की छटा बिखेर उठी है और उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की तो बात ही निराली है। तो एक बार चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर और आप चूंकि इलाहाबाद में पढ़े बले हैं तो वहां की यादें ताजा कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ।
1: देखिए मतलब... मैंने तो कई जगह लिखे शेर भी कहा है कि हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है
0: जी,
1: हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: क्या बात है?
1: तुझे तो याद हम अक्सर इलाहाबाद करते हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: एक तो... और शेर मैंने कहा है कि चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है औरों में ही अच्छाई का मन ढूंढ रहा है। इसमें जो शेर इलाहाबाद के हवाले से है कि संगम के इलाके से है पहचान हमारी, संगम के इलाके से है पहचान हमारी, ये मन तो वही गंगो जमन ढूंढ रहा है।
0: क्या बात है, वाह।
1: तो आप उसको ढूंढते हैं और वो दिल्ली में रहे तो वहां भी ढूंढते हैं।
0: जी जी।
1: और मैंने एक शेर कहा, वो इलाहाबाद को याद करते हुए कहा कि कड़ी धूप में छांव बना कर रहते हैं, हम दिल्ली में गांव बना कर रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो हम जो दिल्ली में भी रहते हैं हमारे अवचेतन मन में वो इलाहाबाद ही जीता है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो जैसा भारती ने कहा था कि आप जितनी दूर जाएं वो उतना हॉन्ट करता है।
0: जी जी।
1: तो ये है कि मैं पहुंच जाता हूँ जब हॉन्ट करता है या उससे पहले ही।
0: जी जी। वैसे तो मन हमेशा अपने उस जगह पर रहता है जहाँ आपका बचपन
1: बीता। क्योंकि आपको लगता है कि शेर मेरा था कि पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है।
0: जी, क्या बात है।
1: पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है, गांव ने मुझसे कहा था सुनो आते रहना।
0: क्या बात है।
1: तो ये जो उधर से भी इसी तरह का प्यार रहता है।
0: बिल्कुल। और एक अटूट रिश्ता होता है। प्रताप जी, ये शहर की बात तो बहुत लंबी है, बहुत सारी यादें होती हैं जहन में। हम जानना चाहते हैं कविताओं के बारे में, कवि बनने की जो प्रक्रिया है आपने वो बताई, कवि से पत्रकारिता की दुनिया में आप कैसे
1: पहुंचे? पत्रकारिता मुझे लगता था कि मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या थी कि मैं पत्रकारों से ये कहता हूँ, जितने जो लोग जर्नलिज्म करें नहीं करें, या मैं मीडिया स्कूल्स में जाता हूँ या मैं करीब 20 सालों तक अलग अलग कैंपस में इंटरव्यू करने गया, तो मैं उनको बताता था कि आप इसलिए बनिए कि आपके पास एक मौका है, एक संसार के सबसे बड़े डॉक्टर के पास अवसर नहीं है सबसे इंटरेक्ट कर सके।
0: जी जी।
1: किसी के पास ये मौका नहीं, हमारे पास मौका है। मैं हम विविध अनुभव संसार में जाते हैं।
0: जी जी।
1: वहां जीते हैं, उनसे बात करते हैं और बात करके हम चले आते हैं और इस काम के आपको पैसे मिलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इस काम से आपकी आजीविका चलती है। तो आपके अनुभव संसार को समृद्ध करने के लिए इससे बेहतरीन कोई पेशा मुझे नहीं लगा।
0: जी जी। तो यहाँ भी कोई नकारात्मक कहानी है, किसी ने मना किया आपको?
1: नहीं नहीं,
0: यहाँ सकारात्मक है।
1: हम तो समय में थे कि हम अखबार के दफ्तर में जाते थे तो एक कोई चीफ सब एडिटर बूढ़े से पान खाए हुए बैठे होते थे, तो हमको देखते कहते थे कि आओ घर में है खाने वाने का इंतजाम, हाँ तो कुछ और कर लो।
0: जी।
1: हमने क्या कहा, उखाड़ लिया जो तुम उखाड़ लोगे। तो हम उनको बताए कि हम कुछ उखाड़ने नहीं आए हैं,
0: कुछ करने
1: हम
0: आए
1: लगाने आए हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: हम कुछ बोने आए हैं, हम कुछ

0: सृजन करने आए हैं।
1: जी जी
0: तो हम इस भाव से आए, तो उसने मेरे अनुभव संसार को बहुत किया। मेरी कोई भी किताब संभव नहीं होती अगर मेरी पत्रकारीय दृष्टि नहीं होती, मेरे पास चीजों को देखने का वो फिल्टर नहीं होता मेरे पास
1: नजरिया।
0: तो अगर वो फिल्टर नहीं होता तो आप कैसे देखते? आपकी आंखों का विजन 6x6 है, थोड़ी दूर तक देख सकते हैं।
1: तो पहली बार किस अखबार में गए, कैसे
0: पहली
1: क्या
0: बार देखिए, मैं अखबारों में तो जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी। मैं एकदम गांव का लड़का, हमें डर लगता था कि अखबार में कौन आदमी हमें नौकरी देगा। तो मैं शुरू से फ्रीलांस लिखता रहा, लिखते लिखते लिखते लिखते लिखते ऐसा रहा कि फिर अखबारों में मतलब अपने आप में स्टिंगर हो गया।
1: जी जी
0: मैंने खबरें भेजी, खबरें छप गई, तो स्टिंगर से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। फिर मैं माया प्रेस में एक पत्रिका निकली, गंगा यमुना, उसमें रविंद कालिया जी ने मुझे बुला के रखा।
1: इलाहाबाद के
0: अकेला ही पीर बाबरची भिस्ती खर था उनके साथ, तो वो मैंने 3 साल काम किया, तो व्यवस्थित तरीके से मेरी पहली नौकरी उनके साथ थी।
1: जी।
0: फिर उसके बाद मैंने जनसत्ता में मैं रहा, फिर मैंने जो है अमर उजाला में रहा, रिपोर्टर टू एडिटर रहा, फिर मैं दैनिक भास्कर में रहा, न्यूज एडिटर रहा, फिर मैं अब हिंदुस्तान में 17 वर्षों से हूँ। तो टोटल 35 साल की यात्रा इसी तरह से पूरी की मैंने।
1: जी प्रताप जी, वो जो संपादक की और पत्रकार की एक समय भूमिका होती थी, बहुत ब्रांड होते थे पत्रकार संपादक, बहुत, जैसे आपने भी कहा कि उन्हें खाली देख के लौट आते थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, वो अभी बहुत सब फ्रेंडली हो गए हैं, लेकिन समय बदल गया है। अब वैसा समय नहीं कि आप आजीविका तलाशें उसके साथ साथ पैरल, तो एक इस ओहदे पर है कि आपके पास बहुत कुछ ताकत है कर सके नया कुछ करने के लिए। तो अब देश भर में जो साहित्य उत्सव होते हैं, साहित्य उत्सव को लेकर क्या आप कहेंगे कि उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और क्या नए लोग भी उससे जुड़ते हैं?
0: देखिए, फायदा तो होता है। उत्सव तो हमारे जीवन का तत्व है कि हम उत्सव धर्मी लोग हैं, इसलिए हम उत्सव करते हैं
1: जी।
0: लेकिन इसमें एक स्थिति है कि ज्यादातर जो साहित्य उत्सव है ये आयोजक के उत्सव होते हैं
1: जी।
0: तो जो आयोजक होता है उसके लिए उत्सव होते हैं, और साहित्य का तो उत्सव ही नहीं होता वो। उसमें सबसे हाशिए पर होता है तो साहित्य होता है
1: जी,
0: क्योंकि उसको सुनने वाला ही कोई नहीं होता वहां
1: जी।
0: तो वो ऑडियंस पे काम नहीं करते कि बच्चों को बुलाएं। हम जब कहीं जाते हैं किसी साहित्य उत्सव में, हम वहां देखते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई उसी शहर में हम विद्यालय के किसी प्राचार्य से मिलते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं ये उत्सव में क्यों नहीं आए, बोले हमारे पास सूचना नहीं थी। तो साहित्य उत्सव में अभी बहुत गुंजाइश है कि वो थोड़ा दो तरफा, रचनाकारों की ओर से तो वो आमंत्रित कर लेते हैं, बुला लेते हैं, स्पॉन्सर बुला लेते हैं, लेकिन ये उद्देश्य तब पूरा होगा जब वो बाकायदा जो सुनने वाले हैं, जिनको जरूरत है उस साहित्य की, अगर उनको वो ले आए तो फिर वो चीज बनेगी
1: जी। नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए आप
0: बहुत
1: क्या करना चाहते हैं?
0: सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज यही है कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए एक तो ये साहित्य उत्सव जितने हो गए, इस तरह की चीजें हो गई, दूसरा बहुत सारी चीजें हैं जो आर्काइवल वर्क कंटेंट हमारे पुराने पड़े हुए हैं। हमको हर समय कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे समय में कुछ नहीं लिखा गया या नए लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं, अभी भी बहुत कुछ बेहतर रचा जा रहा है
1: बिल्कुल,
0: या बहुत बेहतर रचा गया है। बेहतर आपके सामने नहीं आया तो इसका मतलब समय खराब नहीं है, आपका दायरा खराब है, आपकी समझ पे सवाल है। लेकिन तो जरूरत यह है कि अब इतने वेराइटी के वर्सटाइल तरीके के माध्यम आ गए हैं, हम उन सब माध्यमों को जोड़ के नई नई चीजें रखें, जो हमारी पुरानी चीजें हैं आर्काइवल वैल्यूज की, उनको उठा के रखें और ये चीजें रखें, और ताकि उस पर एक भरोसा हो जो नया व्यक्ति है कि हाँ हमें कुछ बेहतर काम रच रहे हैं। मेरे मन में आया तो इसी से आया ना कि एक जो लिगेसी थी वो लिगेसी मेरे पास थी ना, मुझे किसी ने बताया तो नहीं, तो वो लिगेसी मैंने अनुभव की, शायद वो अनुभव देने में हम अगली पीढ़ी को नाकाम हो रहे हैं
1: बिल्कुल।
0: तो वो अनुभव अगर हमको ये उम्मीद कर रही है कि नई पीढ़ी साहित्य से जुड़े, तो वो अनुभव हमको उसको देना होगा जो अनुभव मेरे पास बचपन में था, जो अनुभव व्यक्तियों के हवाले से था, जो अनुभव उनके साहित्य के हवाले से था, वो अनुभव हमें देना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से अब साहित्य माने लेखकों का अपना साहित्य हो गया है, कविता

0: माने मेरी कविता हो गई
1: जी,
0: है,
1: जी, जी.
0: कविता माने कविता नहीं रही.
1: जी जी
0: तो अगर कविता माने आपकी कविता है
1: हाँ.
0: तो वो फिर प्रचार की कविता है. ये उसी तरह है जैसे कोई मैं बच्चों से प्यार करता हूँ और अपने बच्चे से प्यार करे.
1: जी, तो प्रचार से हमें जहन में आया, बहुत संक्षेप में बताइए कि सोशल मीडिया ने लेखन पर क्या प्रभाव डाला है,
0: बहुत बहुत
1: रचनात्मकता
0: बहुत
1: पर.
0: अच्छा प्रभाव डाला है. बहुत चीजें, बहुत लोगों के पास अवसर के दरवाजे खोले हैं.
1: जी
0: अब ये है कि उस अवसर को आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि आपने खिड़की खोल दी है और अगर आपने जाली नहीं लगाई तो
1: जी जी
0: खटमल मच्छर सब आएंगे. ठीक है, तो
1: सही
0: आप वो
1: बात है.
0: जाली लगा दीजिए, बड़ी सुंदर सुंदर हवा आएगी, आपको ताजगी भी देगी और वातावरण को शुद्ध भी करेगी. तो इस तरह से जो साहित्य का पर्यावरण है वो भी सही होगा.
1: जी, जो हमारी युवा पीढ़ी है पत्रकारिता की दुनिया में आना चाहती है, तो उसके लिए कुछ दो लाइन में संदेश दीजिए.
0: उसके लिए सिर्फ एक लाइन है, दो लाइन की भी जरूरत नहीं है. एक लाइन ये है कि आप ज्ञान के निवेश के धंधे में हैं, तो आपके जो ब्रेन का एटीएम है ये खाली नहीं रहना चाहिए, वरना जब आप इसमें कार्ड डालेंगे तो इनसफिशियंट बैलेंस आएगा. तो
1: जी
0: आप उसको बिल्कुल पढ़ते रहिए, एनरिच करिए, वैरायटी और स्टाइल चीजें आप जानिए. क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप एक बेहतर पत्रकार क्या, बेहतर मनुष्य भी नहीं बन पाएंगे.
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने. प्रताप सोमवंशी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी जानकारी वाली बातें और इतनी अच्छी बातें आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर
0: बहुत
1: से.
0: बहुत धन्यवाद मंसूर
1: नमस्कार.
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान, जिसमें आपने सुनी जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत. जाते जाते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुशी गुप्ता, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान,

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: दिल पर मुझ पर खफा न हो, कहीं तेरी भी कुछ खता न हो, जो ये दिल दीवाना।
1: मोहम्मद रफी और साथियों को आप सुन रहे थे फिल्म धर्मपुत्र की, ये कव्वाली थी, साहिल ढानवी के बोल थे, एन दत्ता का संगीत था।

0: बेगम अख्तर की आवाज में ये पारंपरिक दादरा गीत आप सुन रहे थे।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन

0: उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित।

0: ये पॉप गीत आप सुन रहे थे अदनान सामी की आवाज में, समीर के बोल थे।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती का ये कार्यक्रम है रंग तरंग।

सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज थी, देव कोहली के बोल थे, आनंदराज आनंद का संगीत था, ये फिल्म थी हमको तुमसे प्यार है।

0: शारदा सिन्हा की आवाज में मैंने प्यार किया इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। असद भोपाली के बोलों को सुर में ढाला राम लक्ष्मण ने।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद

तलाश फिल्म का ये गीत था अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में समीर की बोल, संजीव दर्शन का संगीत था और यही है श्रोताओं आज के रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। दोपहर के 12 बजे हैं। अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, जिसके प्रायोजक हैं एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की,

0: नानू रविंद्र और रौनक सेन जी का।
1: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
0: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
1: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
1: जी
0: श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
1: जी
0: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
1: जी
0: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
1: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई हैं, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजी जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
0: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
1: जी
0: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
1: जी
0: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
1: श्रोताओं, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
0: तो श्रोताओं, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
1: जी
0: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है। यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है या नारंगी या लाल भी हो सकता है, किस्मों और स्थान के अनुसार।
1: जी
0: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं। फिर क्या होता है?
1: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भून कर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
0: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
1: जी
0: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
1: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
0: जी विमृषि, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
1: जी
0: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
1: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
0: जी श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
1: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: कोको या काकाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कोको या काकाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओं, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ci

0: cit.nic.in, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
0: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल हैं।
1: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
2: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहाँ बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ

0: वाला हर व्यक्ति अमिट स्मृतियां लेकर वापस जाए।
1: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
0: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
1: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
0: राम कृपाल
1: जी,
0: इसे श्री अरविंद का व्यवहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
1: हाँ,
0: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
1: जी,
0: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
1: अच्छा,
0: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
1: जी,
0: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
1: वो क्या था सुबोध जी?
0: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
1: जी,
0: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
1: जी,
0: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
1: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
0: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
1: जी,
0: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
1: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
0: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
1: जी,
0: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
1: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
0: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
1: हाँ?
0: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
1: और ब्रह्मचर्य?
0: राम कृपाल
1: जी,
0: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
1: जी,
0: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
1: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था। ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं,

0: जी
1: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
0: जी हाँ,
1: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है वैसा सात वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
0: बिल्कुल ठीक।
1: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
0: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
1: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
0: जी,
1: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है। उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी छह इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
0: छह इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो पांच ही इंद्रियां हैं।
1: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये पांचों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
0: जी,
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
0: जी हाँ,
1: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
0: जी बिल्कुल।
1: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

माता जी ने पांडिचेरी के आश्रम में भी श्री अरविंद के विचारों को व्यावहारिक रूप दिया। श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास

0: के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पौंडेचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: दीक्षा
1: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल
0: दीक्षा दीक्षा।
2: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
3: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।
4: घर के पास लगा था मेला।

गई इस गीत में। अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपने मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, जिसके प्रायोजक थे NCERT। FM 101.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा से।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर आशा भोसले का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल ने।
1: अरे
2: चुपके से दिल दे दे
1: नहीं ते
2: नहीं ते

तरसी और इस गीत की रचना की आनंद बख्शी ने। आदमी और इंसान फिल्म का ये गीत है। आशा भोसले, महेंद्र कपूर की आवाजें, साहिल ध्यानवी के बोल।

कर ले हमसे मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत कर ले हमसे मोहब्बत गुजरना जाए घड़ियां तो चती है पायल तो बनती है हथकड़ी।

0: आप सुन रहे थे सुहाग फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आप सुन रहे थे इस वक्त कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम श्रोताओं यही संपन्न होता है।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: FM 101.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। दोपहर के 1 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ किया। ये ट्रांसमीटर एक बड़े क्षेत्रफल में लोगों तक रेडियो की पहुंच को सुनिश्चित करेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि इस ट्रांसमीटर के बनने से और अधिक लोग रेडियो से जुड़ सकेंगे। उन्होंने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में दूरदर्शन और आकाशवाणी के व्यापक प्रसारण नेटवर्क उपलब्ध कराने की योजना पर काम किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल सूत्र पर काम करने को कहा, जिससे स्थानीय कलाकारों और डिजिटल क्रिएटर्स को अधिक से अधिक मौका और प्रोत्साहन मिले।
2: हाइपर लोकल डिजिटल फर्स्ट, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स ओटीटी है और जो भी पॉपुलर प्लेटफॉर्म हो उस प्लेटफॉर्म को यूज करें, जब चाहे अपनी खुद की ऐप बनाए। जिस तरीके से लोकल न्यूज, लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, गांव के, कस्बे के, नगर के कलाकारों को, वहाँ के क्रिएटर्स को, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले दुनिया तक पहुँचने की, संस्कृति को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। इस आधार पे अगले 1000 दिनों में अच्छा एक्शन प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा

0: ट्रांसफॉर्मेशन करें।
1: रेलवे परियोजनाओं का जिक्र करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि प्रदेश में रेलवे का तेजी से विस्तार हो रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 85 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, इनमें से 15 का काम पूरा हो चुका है। श्री वैष्णव ने इस अवसर पर जयपुर अजमेर दरभंगा ट्रेन को जल्द ही नियमित करने की घोषणा की। उन्होंने जयपुर में AI डेटा सेंटर और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए जाने का भी ऐलान किया। कार्यक्रम में प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसी संस्थाएं अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई एक अत्यंत आवश्यक सेवा है। श्री जोशी ने प्रसारण में सत्यता और प्रासंगिकता पर जोर देते हुए कहा कि सत्य को बिना बढ़ा चढ़ाकर पेश किए संतुलित रूप में समाज तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जयपुर सांसद मंजू शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके साथ ही आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन उपस्थित रहे। इसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्री तथा प्रसार भारती के अध्यक्ष ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के युवा अधिकारियों के साथ संवाद किया। इसके बाद श्री वैष्णव MNIT पहुंचे। वहां उन्होंने क्वांटम AI और सेमीकंडक्टर मेकर्स लैब का उद्घाटन किया। श्री वैष्णव का दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करने का कार्यक्रम है। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कुछ प्रकारों का उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 % इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा है कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। राजस्थान पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान पिछले 6 दिनों में 50,000 से अधिक वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यातायात पुलिस की अतिरिक्त महानिदेशक डॉ BL मीणा ने बताया कि अवैध फिल्म, नंबर प्लेट, हूटर और प्रेशर हॉर्न लगाने वालों पर कड़ा शिकंजा कसा जा रहा है। अभियान के 6 दिन रिकॉर्ड 10,825 चालान बनाए गए। प्रदेश में आज जयपुर और अलवर सहित 12 जिलों के लिए आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 14 जून तक बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 101.5 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सवाई माधोपुर चैनल। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा से।

श्रोता, गांव की जो दिनचर्या होती है वो बड़ी गजब होती है, तो गांव में या अभी आपकी दिनचर्या क्या है? अगर जब कभी आप गांव में थे तो उसे किस तरह से अब के समय से आप जो है मैच कर सकते हैं कि अब शहरों में जो सोना उठना बैठना उसका समय और गांव में जो दिनचर्या होती थी वो भोर के समय, जी हां, पनघट पर बहुत सारी पनिहारें नजर आ जाएंगी। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन की भाग दौड़ में मन आज भी अपने गांव, अपने बचपन और उन अनमोल रिश्तों में बसा हुआ है, जहां बचपन की यादें, गांव की मिट्टी, बिछड़े साथी और पुरानी यादें आज भी दिल में घर बनाए हुए हैं। और बहुत सारे गीत भी इन्होंने बताए हैं, हमें सुझाए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सभी को प्रणाम, तो आप सभी को भी बहुत बहुत प्रणाम। विविध भारती के सुरीले सफर में जहां बचपन फिर यादों के सहारे लौट आया है, वो आजादी, वो स्वच्छंदता अब लौट के नहीं आने वाली। जब मेघ बरसते थे, भीगते निकल जाते थे और साथियों के साथ छपाकछी खेलते, बहते धारे में कागज की नाव चलाते, दिन भर बिना भूख प्यास की चिंता के नदी के पार जाकर खेतों से खरबूजे चुराया करते। एक श्रोता और लिखते हैं कि आज की इबारत केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि अतीत की स्मृतियों और आधुनिक जीवन के अकेलेपन का एक बेहद खूबसूरत और मर्मस्पर्शी दस्तावेज है। लेखक इन्होंने लिखा है कि बड़ी संवेदनशीलता के साथ शहरी चकाचौंध के पीछे छिपे खालीपन और ग्रामीण जीवन की निश्चलता के बीच द्वंद्व को हमने उभारा है। आखिरी पंक्तियां, शायद हमने दुनिया से अलग एक गांव बसा रखा है, ये दर्शाती हैं कि भले ही भौतिक रूप से इंसान शहर में कैद हो लेकिन उसका मन आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। ये अंत निराशा में भी एक खूबसूरत उम्मीद और सुकून देता है। गांव की तो बहुत सारी यादें होती हैं। श्रोताओं, आपको अपना गांव क्यों अच्छा लगता है और इसकी क्या खासियत है? क्या कुछ है जो आप अपने गांव में अब भी याद करते हैं और क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं? तो ये हमें जरूर लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं बहुत सारे गीतों के बारे में। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, ढूंढो ढूंढो रे साजना, तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी कोई चीज गांव में कहीं खो गई हो या फिर पनघट पे कहीं रह गई हो? तो आप जरूर बताइए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं जाते हैं तो कुछ खास गीत एक अकेलेपन में बैठकर सुनते हैं। गांव में क्या कुछ आपके साथ ऐसा हुआ तो हमें लिखिए।

एक और श्रोता लिखते हैं, शहर और गांव हमेशा से एक नियमित प्रसंग के रूप में किसी भी वाद विवाद के चर्चित विषय के रूप में उभर कर आते हैं। अधिकांश शहरवासी शहर छोड़कर गांव में रहने की कल्पना भी नहीं करते, चाहे कितनी भी दुश्वारियां हों शहर में, वही गांव में रहने वाले मजबूरी में ही शहर का रुख करते हैं और बाद में वहीं के होकर रह जाते हैं। भारत में शहर और गांव दो अलग अलग संस्कृतियों और जीवन शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां शहर आधुनिकता, गति और सुविधाओं का केंद्र है, वहीं गांव सादगी, परंपरा और प्रकृति के करीब होते हैं। तो आप बताइए कि आपके गांव में क्या कुछ ऐसा था जो आप भी आज भी आपकी यादों में बसा है, और क्या कुछ ऐसी चीज है जो आपके गांव की यादगार चीज है।

तो अगर आपने फिल्म देखी है गंगा जमुना तो आप जरूर बताइए, और आपको याद ही होगा तो इनका बाला कहाँ है, कहाँ गुमा है, आप क्या ढूंढ सकते हैं, तो हमें जरूर बताइए अगर आपको मिला हो। वैसे गांव में भी कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जब आप पनघट पर गए होंगे, कोई चीज या कहीं गए होंगे, कुछ खो गई होगी, तो कुछ यादें अगर इसे मिली जुली आप साझा करना चाहते हैं तो जरूर करें। और गांव की बहुत सारी खासियत होती है श्रोताओं कि गांव में जो यादें हैं, रहट का पानी है, या अगर आपको याद हो कहीं दूर रेडियो में कोई गीत बजता हो जो आपको अपनी तरफ खींचता हो, या कोई फिल्म ऐसी जो आपने गांव के थिएटर में देखी, क्योंकि गांव में पहले थिएटर कम हुआ करते थे। एक और श्रोता ने लिखा है, वैसे आपको बता दूं कि गंगा जमुना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। इस गीत से पहले सत्यम शिवम सुंदर।

हम फिल्म का गीत आपने सुना जो जीनत अमान पर फिल्माया गया और सत्यम श्याम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार आपको बताने हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, यादें अजीब होती हैं, एक तो बिन बुलाए आ जाती हैं और आ जाएं तो सांस थमने सी लगती है। किसी पुरानी फोटो को देखो जो धुंधली पड़ गई, लेकिन उसके पीछे उससे जुड़ी याद हमेशा ताजा मिलेगी ताजी मिलेगी। कुछ यादें शब्द मांगती हैं तो कुछ यादें खामोशी, कुछ आवाजें अब भी दुनिया में नहीं पर कभी कभी लगता है कि कंधे पर हाथ रखकर कह रही हूं अपना ध्यान रखना। वो हाथ जो अब कंधे पर नहीं पर थकान में सहारा बन जाते हैं। यादें हमें एक ही समय में दो जगह रख देती हैं, शरीर को वर्तमान में और दिल को किसी सुनहरे अतीत में। दुख इस बात का नहीं कि वक्त बदल गया, दुख इस बात का कि वो लम्हे अब दोबारा नहीं जी सकते। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज एक बार फिर काफी लंबा गद्यांश सामने आया है और साथ मिलाया है वो बचपन की यादें जो कभी मन को सुकून देती, जब पनघट पगडंडी खेत खलिहान नदी झरने रेत पर उकेरी तस्वीरें सब अपने से लगते थे और हम खुशियों के से पल भरे पल जीते थे। लेकिन जब ये छोड़ शहर की ओर चले तो वक्त की लाठी ने धीरे से सब कुछ छीन लिया और दे दिया खालीपन। बस बाकी रह गया तो सुनहरी यादों का गांव मन के भीतर एक कोने में। तो जादूगर की भी बहुत सारी यादें होंगी श्रोताओं, आप बांट सकते हैं, क्योंकि ऐसी यादें तो मेरे पास भी बहुत सारी हैं कि जादूगर आया करते थे गांव में।

प्रदीप कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म नागिन से, और एक गीत के हमने संगीतकार आपसे पूछे थे सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि भोर भय पनघट पर अब वो दौर कहाँ जब पनघट पर गांव की गोरियां इकट्ठे होकर दिनचर्या की बातें किया करती थी, अब हर घर पर नल से जल हो गया है, पगडंडी थी अब वो पक्की सड़क बन गई है, मोबाइल ने बच्चों का बचपन छीन लिया है, डाकिये की साइकिल की घंटी मूक हो गई है, डाक का स्थान अब मोबाइल मैसेज

नया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार आप बताना चाहें तो बता दें श्रोताओं। गांव तो अपने आप में बड़ा खूबसूरत होता है, यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं। बगीचे से आम चुरा कर चोरी चोरी दोपहर में खाना, रहट का पानी, गांव की क्या खासियत है आपके गांव की। रेडियो की यादें, कुछ थिएटर की यादें, बाइस्कोप की यादें, दिनचर्या, पत्र जो आपके पास आया करते थे, तो क्या नहीं है गांव में। ऐसी बहुत सारी बातें हैं श्रोताओं। क्या कभी आपने बैलगाड़ी का सफर किया या साइकिल से स्कूल जाते थे, ये भी आप हमें जरूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है संगीत में होगा, हमने इबारत पढ़ ली है, हम गांव और शहरों में तुलना करें तो हमें गांव ही अच्छा लगेगा। गांव में अपनापन होता है, वहीं शहरों में भीड़ तो बहुत है पर अपना कहने वाला कोई नहीं। और एक बात, इन दिनों शहरों में शाम के वक्त कुल्फी चाट के ठेलों और अन्य दुकानों में सुंदर लाइट से सजी दुकानें शाम होते ही जगमगा उठती हैं, और वहीं गांव में शांत सुकून के साथ अपने घर के छत पर शाम को लेटे हुए चांद तारों को तकना किसी अद्भुत दुनिया की ओर हमें ले जाता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि मर्म को छू लेने वाली है हमारी आज की इबारत, हमारी पीढ़ी वालों को झकझोर देती है। बचपन गांव में या छोटे शहरों में बीता, आज बस आडंबर की भीड़ में मात्र एक इकाई बनकर रह गए हैं। अभी भी दिल के कोने में वो मंजर, हरियाली, बाग बगीचे, कुआं तालाब, बरगद की छांव में चारपाई पर लेटना आदि दिल के कोने में छुपी हुई इन्हें शहरी भीड़ में तलाशते हैं, मगर सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन याद करके दिल को सहला लेते हैं। मिट्टी के सोंधी खुशबू वाली इस सफर का इंतजार है। तो जी हाँ, ये सफर जो है वो तो जारी है। आप भी अपनी बातें कहिए गांव को लेकर, गांव की यादों को लेकर, और गांव आपको क्यों याद आते हैं ये जरूर बताइए।

ये प्यारा सा संगीत था नौशाद का, और आप कलाकार बता दें। एक कलाकार हम आपको बता देते हैं, राजेंद्र कुमार। जी हाँ, ये गीत था फिल्म गंवार से। बाकी आप बताइए। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का सफर सुरीला बड़ा प्यारा है, गांव की सभी यादें ताजा हो गईं और हमें भी याद आता है कुएं से पानी भरना, बैलों को पानी पिलाना, गाय का दूध निकालना, बकरियां, वो आंगन में सब कुछ समेटना और रोजगार के लिए हमेशा काम करते रहना। जी हाँ, जब रोजगार की बात आती है तो नैया, जिसका गीत हमने आपको सुनवाया, नाव भी बड़ी साधन है रोजगार का, और हम ऐसी नैया को प्रणाम करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो गांव में बड़ी ज्यादा खुशियां या प्यार या लोग बड़े अच्छे होते हैं, शायद इस वजह से कि वहां संतोष बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा न पाने की इच्छा होती है, शायद इसीलिए गांव और गांव के लोग बहुत ही सुंदर होते हैं। इन्होंने और भी थोड़ी बड़ी इबारत लिखी है। वैसे एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत भावुक है, गांव की यादें, बचपन, बिछड़न, शहर का अकेलापन, ये सारी बातें इन्होंने लिखी है और बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि दिल के दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है, वो दिन याद करो, भोर भरे पनघट पे, ढूंढो ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला, बहुत सारे गीत इन्होंने सुझाए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन की यादें जब दस्तक देती हैं, तब हम मन के बंद दरवाजे खोलते हैं, भूली बिसरी शक्लें, पनघट की यादें, खिलौने, रेत के घर, कागज की नाव, सब याद आता है। तो इनमें से आपको क्या पसंद था? रेत पे घर बनाना, खिलौने, कौन से खिलौने आपको अच्छे लगते थे, या अपने स्कूल की कोई याद? खासकर जब हम लोग स्कूल में थे तो चटपटी चीजें बहुत खाते थे श्रोताओं, और अब तो जंक फूड आ गए हैं। आप बताएं ये कलाकार को

0: अपनी आंखों।
1: बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म ठोकर से। सजन दिलवी के बोल थे और श्याम जी घनश्याम जी की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि जो कभी गांव में गया ही न हो और वो लोग गांव के बारे में क्या जानेंगे। गांव का मिलनसार जीवन, लड़ते झगड़ते दोस्तों का गांव की जिंदगी क्या होती है वो बातें याद आती हैं तो दिल में एक कसक सी उठ जाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जादूगर एक बार हमारे मिडिल स्कूल में शो करने आया था। खेल की घंटी में स्कूल के प्रांगण में एक घंटे तक ये शो हुआ। बात 1976 के सितंबर की है। हमने घर से 75 पैसे लेकर उसे दिए थे, बहुत मजा आया था। जी हाँ, तब पैसे भी बहुत कम हुआ करते थे और थोड़े से पैसे में बहुत सारी चीजें हम खरीद लिया करते थे। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि मेरे गांव के चारों तरफ पहाड़ है जैसे एक टोकरी होती है, जिसके कारण मेरे गांव का नाम ठोकर है। मेरे गांव की लोकेशन बहुत अच्छी है। गांव उत्तर दिशा की पहाड़ी की तलहटी में बसा है। दक्षिण की तरफ तालाब है जिसका नाम कायरा तालाब है। गांव तो हमारा जीवन है, इसकी हर चीज हर स्थान हमारे रग रग में बसा हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच अपने गांव में बचपन की यादें और पुराने दोस्तों के साथ बिताए गए पल आज भी बहुत सताते हैं। गांव की भोर की बेला में पक्षियों की चहचहाट और बचपन के दोस्तों की यादें किसी मरहम से कम नहीं। ये अनमोल पल में बिताए गए बचपन से जोड़े रखते हैं जिसमें हमारे मन को असीम सुकून और शांति देते हैं। और भी इन्होंने अपनी बातें बहुत सारी लिखी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का जो ये सुरीला सफर है, अक्सर लोग गांव छोड़कर शहर में रहने लगे है लेकिन गांव में जो आपसी प्रेम और भाईचारा देखने को मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता। शहर में तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता। मनुष्य अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए शहर की तरफ भाग रहे हैं लेकिन वो खुशी नहीं मिलती जो गांव में थी। तो खिलौने वालों की जो यादें हैं वो आप हमसे साझा कर सकते हैं।

संध्या पर फिल्माया गया दो आंखें बारह हाथ फिल्म का ये गीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है इस गीत के बारे में, तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद इस गीत को पहचानने के लिए। और भी हमारे कुछ नगमे हैं, देखते हैं कि कौन से शामिल हो पाते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, अरे वाह, तीन गीत मेरे शामिल हो गए। आज सुहाना सफर में पुरानी यादें ताजा हो गई। मेरे गांव की पैदाइश है, बहुत सुंदर था बचपन। हमारे गांव में रामलीला होती थी और इन्होंने निम्बाड़ी लोकगीत गणगौर उत्सव में बड़ा आनंद आता था, बहुत याद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगल में शुभकामनाएं, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं। आपने रुला दिया, वो बहुत यादों को जगा दिया। तो जी हाँ, यादें तो होती ही ऐसी हैं, समय समय पर इन्हें जगाना भी चाहिए श्रोताओं। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि यह हकीकत है कि गुजरे वक्त यानी पास्ट में हम जा नहीं सकते, इसलिए अपना अक्स अपने बच्चों और आसपास के बच्चों में देखा करते हैं। बचपन में मैं स्कूल और कॉलेज जाया करता था, उनकी सभी गतिविधियों को देखकर मैं ये सोचता हूं और महसूस करता हूं जैसे उनकी शक्ल में मैं स्वयं हूं। उनमें स्वयं को देखकर अपने गुजरे वक्त को याद करके बहुत खुश होता हूं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने आठ गीतों को लिखा और पहला गीत शामिल हुआ जो भोर भय पंघट में, जी हाँ, तो यही तो आपको पहचानना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की भारत पढ़कर आपने बचपन और बचपन के साथी याद आ गए, हमारे मन बहुत बेचैन हो रहा है, कौन कौन से साथी बिछड़ गए पता नहीं।

ये तो बैलगाड़ी है जिसमें ये दुल्हनिया जा रही है, ये कौन सी दुल्हनिया है वो आपको बताना है, फिल्म पहचाननी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको बताऊं, मेरे गांव से एक नदी बहती है, बचपन में हमने इस नदी के पाट करीब 100 फीट के आसपास देखा है जो कि बरसात में 1 किलोमीटर दूर तक हो जाता था, किंतु अब बहुत दुख होता है वो केवल एक नाले में परिवर्तित हो गया है। इस नदी के पास आम के बगीचे होते थे जो आज नहीं है। जी हाँ, यही सारी चीजें हैं जो हमें बचानी है। श्रोताओं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, अगर कुछ खास करते हैं तो आप हमें जरूर बताएं, जैसे पेड़ वगैरह लगाने को लेकर जो बातें हैं। और आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है तो आजकल खेतों में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो गांव में भी हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, विविध भारती सुनते हैं। एक और श्रोता ने बचपन की जो चटपटी चीजें थी उसके बारे में लिखा है कि बेर जो गुड़ और नमक मिर्च के साथ पके रहते थे, वो कागज की पुड़िया के समान बांध के देना, वो न्यूज़पेपर के लिफाफे जो घर में आटे की लोई बनाकर बनाए जाते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में गांव में कहीं शादी होती थी तो लाउड स्पीकर बजता था, उस समय राजा और रंग का मेरा नाम है चमेली ये गीत लोकप्रिय था, आवाज सुनते ही सभी साथी दौड़कर वहां पहुंचकर गाना सुना करते थे।

दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी तेरवा आते सोमवार है, छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार।

0: किया बाबू।
1: क्या रे?
0: छह महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से अभी का लिख दो नाम।

0: लाया था पिया।
1: ये गीत आप सुन रहे थे हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। श्रोता पलकों की छाव में इस फिल्म का गीत था। राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है वो भी

क्या दिन थे जब पंखट पर हम सब इकट्ठे भोर की किरणों को ताका करते थे। बड़े खुशनुमा दिन थे। यादें अजीब चीज होती हैं। मैं कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, बस अचानक से किसी गीत में किसी रास्ते से दस्तक देती हैं और हम घंटों बैठे रहते हैं उस याद में, उसी उसकी तस्वीर के साथ। मन ने इन सब यादों को बातों को बड़े सीधे तरीके से आत्मसात कर लिया है। हर चीज को स्वीकार करना यही सुख की निशानी है, इसी में बड़ी समझदारी है। फिल्म आपको पहचाननी है श्रोताओं और कलाकार।

पहली फिल्म का ये गीत आपने सुना सत्यजीत और नमिता चंद्रा पर फिल्माया गया। हमारे श्रोताओं ने इस गीत को भी पहचाना बिल्कुल ठीक। और अगले गीत को आपको पहचानना है, कलाकार पहचानना है। एक श्रोता ने लिखा है, मैं कल ही अधिक मास के चलते मेरे शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर चांददूद जो नर्मदा नदी पर बसा है वहां दर्शन करने गई थी। वहां नाव में बैठकर सामने वाले दूसरे किनारे पर स्नान किया। मतलब कल ही नाव में बैठकर आई हूँ।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वो दादी के हाथ की मक्के और ज्वार के चूल्हे पर बनी रोटी काश एक बार ही सही खाने को मिल जाए, बस फिर और कुछ नहीं मांगेंगे अपने इस मालिक

एक श्रोता ने लिखा है, मेरा गांव बहुत सुंदर है जो पहाड़ों की तलहटी में बसा है। एक नदी बहती है जिसके तट पर बहुत से मंदिर हैं। शाम के समय जब घाट पर बैठते हैं तो मंदिर से आरती की स्वर लहरियां गूंजती हैं, बस मन खुश हो जाता है।

अरुण गोविल और जरीना बहा पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे सावन को आने दो फिल्म से। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। श्रोताओं, तो अब चलते हैं गांव से शहर की ओर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी गांव जरूर जाना चाहिए और वहां की सारी चीजों को देखना चाहिए, निहारना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कार्यक्रम सुरीला सफर सम्पन्न होता

साथियों, आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इसे इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले भी कहते हैं। ये दिन बच्चों और बड़ों के जीवन में खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन के सामने बैठने का बढ़ता समय और पढ़ाई के बढ़ते कंपटीशन के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल। ये सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत स्तंभ है। चाहे बात बड़ों की हो या बच्चों की, खेल हर जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। और जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है, तो वो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखता है कि रुक गए या झुक गए तो फिर उठो, आगे बढ़ो। पढ़ाई के साथ बच्चों के लिए खेलकूद उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित आहार। खेल से हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, साथ ही जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। आप देखिएगा, खेलते कूदते रहने वाला बच्चा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है ना?

अकेले रहना पसंद करने वाला व्यक्ति भी खेल के कारण टीम में रहना सीख जाता है। विशेष तौर पर बड़े हो रहे बच्चे में खेल सहयोग, नेतृत्व और दूसरों का सम्मान करने की भावना उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने खेल की भावना को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों, खेल बड़ों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। दिन भर के दफ्तर का काम या घर का काम, उसके बाद थोड़ा सा खेलकूद, चाहे वो बैडमिंटन हो या शतरंज का या लुका छुपी का खेल, थोड़ी सी देर का ये खेल का समय हमारे दिमाग में एंडोर्फिन यानी खुश रहने वाले हार्मोन का रिसाव करता है और इसी के कारण त्वरित तनाव भी कम हो जाता है। बच्चों के साथ बच्चा बनने से, उनके साथ किसी खेल में पूरी तरह डूब जाने से मन की सारी थकान दूर हो जाती है। कभी ये खेल भी खेलकर जरूर देखिएगा।

मैंने नहीं तो

खेल हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देते हैं। ये हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं। मैदान पर कोई भी खिलाड़ी हमेशा नहीं हारता, हर हार उसे अगली जीत के लिए तैयार करती है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति खेलों से जुड़ा होता है वो संकट के समय घबराने के बजाय उसका सामना करता है। आज इस बात की जरूरत है कि हम बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर वापस मैदान की मिट्टी से जोड़ें और स्वयं भी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय खेल के लिए निकालें, क्योंकि जब तक जीवन में खेल है तब तक ऊर्जा बरकरार है। खेल हमें जाति धर्म और अनेक भेदों से ऊपर उठाकर एक धागे में पिरो देता है। तभी तो जब देश की टीम मैदान में उतरती है तो करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं, और यही जुनून, यही जज्बा खेल की सबसे बड़ी ताकत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी जो

0: ये विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास।

0: बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, पर जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉ जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है।

0: शक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
1: ओमान के खाड़ी में पलाउ ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमरीकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
2: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में

0: कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं, प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि

0: में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिम हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थे, एम जी हर्षपत के बोल थे। किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित को आप सुन रहे थे फिल्म उलझन में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत

0: चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए
1: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

फिल्म पूर्णिमा में आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर को, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला कल्याण जी, आनंद जी ने। विविध भारती श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म पाल की का ये गीत आपने सुना। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: शारदा की आवाज में अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन की तर्ज है, और श्रोताओ यही है सदाबहार नगमे प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार, और आप सुनिए ये नगमा।

0: की सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सहेलियों को और आरती आपको नमस्कार।
2: चंचल जी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज हम आ चुके हैं और बहुत सारे विषय लेकर आए हैं, बहुत सारी मस्ती, कुछ अच्छे अच्छे गीत
2: जी, सब लेकर
1: आए हैं। तो आज हम खेल खेल में सारी बातें हो जाएंगी क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस।
2: बिल्कुल, और ये खेल दिवस किनका है?
1: छोटे बच्चों का।
2: बच्चों का खेल दिवस है तो आज बच्चों के लिए भी है ना।
1: तो बचपन के जो खेल होते हैं, आपने कौन कौन से खेल खेले या जो खेल माता पिता ने खेले वही खेलना आपको पसंद है? इंडोर ज्यादा गेम खेलते हैं या आउटडोर ज्यादा करते हैं, मतलब घर में रहकर घर से बाहर?
2: जी बिल्कुल।
1: या माता पिता है किस तरह से बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इस बारे में अपनी बातें वो जरूर बताएं।
2: आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बाहर खेलने पे जरा कम ध्यान देते हैं, मोबाइल वगैरह में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो क्या आप भी मतलब बच्चों को कहते हैं कि आप बाहर जाके खेलिए या फिर आप भी उनके साथ मोबाइल में लग जाती है?
1: तो इस बारे में बहुत सारी बातें और होंगी और आज होगी कहानी पद्मश्री की। इसमें किस सखी की बात होगी बताइए?
2: भीमव्वा डोडाबलप्पा शिलेक्या थारा, जो कि पारंपरिक छाया कठपुतली कलाकार हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: बिल्कुल, और कठपुतली का खेल देखना भी बच्चों को बड़ा पसंद होता है,
2: बड़ों को भी अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।
1: और मुझे कुछ कहना में हम

0: करेंगे खुश रहना या खुश रहने का दिखावा करना, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हम खुश हैं या नहीं, लेकिन सामने आते ही जब कोई फोटो खींचना होता है तो हमारे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, या फेसबुक पर मीडिया पर हम कोई भी पोस्ट जब हम अपलोड करते हैं तो वहां जब डालते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हम कितना अच्छी जिंदगी जी रहे हैं या कितने खुश हैं। तो खुश रहने से ज्यादा खुशी का दिखावा करना, ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं।
1: तो आपके इस पे क्या विचार है कि मतलब खुश रहना जरूरी है, चाहे वो कम में ही क्यों ना हो
0: जी,
1: या फिर दिखावा ज्यादा जरूरी लगता है आपको कि लोगों के इसमें ध्यान में आपकी कैसी इमेज बन रही है
0: जी।
1: तो इस पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही हम बताएंगे कुछ टिप्स आपको कान की किस तरह से सुरक्षा करके रखें आप, ध्यान रखें आप,
0: क्योंकि भाई आपको अगर रेडियो सुनते रहना है तो आपके कानों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, तभी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी मनोरंजक जानकारी या फिर अच्छे अच्छे गीत आप सुन पाएंगे
1: जी। हाँ, जैसे कि अभी हम सुनने जा रहे हैं प्यारा सा गीत।

0: आरती गीत तो तुमने बहुत अच्छा सुनवाया, और अब हम पद्मश्री जिन्हें मिला है और कठपुतली कलाकार हैं वो, उनके बारे में बात करेंगे।
1: बिल्कुल। तो वर्ष 1929 को कर्नाटक के कोप्पल जिले के मोरनाला गांव में जन्मी भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्यथारा कर्नाटक की पारंपरिक छाया कठपुतली यानी कि तोगलू गोम्बेता की दुनिया में एक दिग्गज हस्ती रही हैं। वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जो इस प्राचीन कला का संरक्षक रहा है।
0: यानी कि हम जिसे कठपुतली के नाम से जानते हैं, कर्नाटक में वहां की भाषा में उसे भी कुछ अलग नाम दिया गया है। और कन्नड़ में चमड़े की गुड़ियों का खेल, इसका अर्थ होता है तोगलू गोम्बेयता, जो आपने भी बताया, जो कर्नाटक की एक पारंपरिक छाया कठपुतली कला भी है। और इस प्रदर्शन शैली में चमड़े की कठपुतलियों का उपयोग पौराणिक कथाओं से लेकर और अभी लोक कथाओं तक सुनाने के लिए किया जाता है कि कहानी जब हम सुना रहे हैं तो उनको पात्र बनाया जाता है, उस माध्यम से उन कहानी को अच्छे से समझाया जा सके।
1: बिल्कुल, जैसे कि कुछ कला का जैसे मंचन किया जाता है ना, उस तरीके से उस कठपुतली के जरिए मंचन किया जाता है। तो एक छोटी सी बच्ची के रूप में अपने सफर की शुरुआत करते हुए उन्होंने चमड़े की कठपुतली कला में पूरा ध्यान लगाया और रामायण महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं को सुनाने के लिए कठपुतलियों को बनाने और उन्हें चलाने की कला में महारत हासिल की।
0: जैसे राजस्थान में भी कठपुतलियां बहुत बनती हैं, तो वहां लकड़ी की कठपुतलियां बनाई जाती हैं। और जब हम आज जिनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने चमड़े की कठपुतलियों के साथ में वो प्रयोग किए।
1: बिल्कुल। और दशकों तक उन्होंने अपनी कला को कस्बों और गांवों तक पहुंचाया, जहां उन्होंने कहानी, संगीत और जटिल शिल्प कौशल को मिलाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। लगभग 8 दशकों से भीमव्वा का नाम तोगलू गोम्बेता के पर्याय के रूप में जाना जाता है।
0: और उनके जो प्रदर्शन होते हैं वो पौराणिक कथाओं, संगीत और भावपूर्ण कठपुतली आंदोलनों के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं आरती। और बहुत दशकों जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के साथ साथ जो वहां के लोक परंपराएं हैं उसके साथ में एक जुड़ाव भी महसूस करवाते हैं।
1: बिल्कुल। और सीमित संसाधनों और घटती लोकप्रियता के बावजूद भीमव्वा ने गांव और कस्बों में व्यापक यात्राएं की और पारंपरिक कलाओं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत ग्रामीण कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी।
0: पारंपरिक कठपुतली कला जो विलुप्त हो रही थी और खतरे में जा रही थी, क्योंकि ऐसी कला है ना जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते, तो जब उन्होंने इस खतरे को भांपा तो युवा पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा भी उन्होंने उठाया कि भाई जो चीज उन्होंने खुद सीखी है वो आने वाली पीढ़ी है वो भी सीख सके, ताकि जो तोगलू गोम्बेयता की जो कला है इसके अस्तित्व के लिए जो भी जरूरी ज्ञान है, कौशल है, वो उन तक भी उसे पहुंचा सके।
1: बिल्कुल। और उनकी कार्यशालाओं और मार्गदर्शन ने कठपुतली कलाकारों की एक नई पीढ़ी तैयार की है, जिससे ये कला आज भी जीवंत और प्रासंगिक बनी हुई है। उनके मार्गदर्शन में उनका परिवार प्रमुख महाकाव्यों और लोक कथाओं का मंचन करता चला आ रहा है।
0: और ये जो मंचन वो करते आ रहे हैं, इससे कर्नाटक की जो सांस्कृतिक विरासत है वो देखिए ना आज भी संरक्षित है। और उनके दर्शन केवल मनोरंजन ही नहीं देते हैं लोगों को, बल्कि उनका जो प्रतीकात्मक महत्व है या जो भी वहां के उत्सव हैं, त्योहार हैं, जो भी परंपरा है उनसे जुड़े हुए होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: भीमव्वा की जो जीवन यात्रा है वो केवल एक कठपुतली कलाकार की कहानी हमें नहीं बताती, बल्कि एक सांस्कृतिक संरक्षण किस तरह से किया जाता है ये पूरी कहानी बयान करती है।
1: बिल्कुल। उनका जीवन भर का मिशन कर्नाटक के पर्दे पर कला की जीवंतता को बनाए रखना रहा, ताकि तोगलू गोम्बेता की प्राचीन आवाजें आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करें और उनको शिक्षित करती रहें। और पारंपरिक चमड़े की कठपुतली कला तोगलू गोम्बेता के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्यथारा को भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्रदान किया गया।
0: वो आगे इसी तरह नई पीढ़ियों को ये काम सिखाती रहें और इसके क्या क्या फायदे हैं समझाती रहें, लोगों को इससे जोड़ती रहें, यही शुभकामनाएं हम देते हैं।
1: जी,
0: और एक गीत सुन ले अभी।
1: जी बिल्कुल।

0: देखिए ना, इस गीत में भी कठपुतली का जिक्र था, और ऐसे जो खेल होते हैं ना, ये बच्चों को बड़े लुभाते हैं। और हम सब ने भी बचपन में जरूर कठपुतली का खेल देखा होगा, और
1: बिल्कुल
0: खासतौर पे स्कूल में जब कठपुतली वाला आता था तो एक बच्चों में बड़ा कौतूहल सा होता था कि
1: हाँ
0: किस तरह के खेल दिखाए जाएंगे। और उसमें कुछ कठपुतलियां होती है ना जिनकी कमर बड़ी लचकती है, और उनका जो डांस है वो
1: हाँ
0: देखने में बड़ा मजा आता
1: बिल्कुल, अजीब अजीब सी आवाजें भी निकालते हैं ना।
0: हाँ
1: तो हमारे एक जो श्रोता है वो लिखती है कि कठपुतली का खेल डांस जो डांस होता है प्राय विलुप्त सा हो रहा है। गांव और शहर में मोहल्लों में ये अक्सर दिखाई दे जाते हैं। सोसाइटीज और बड़े बड़े बंगला बंगला जो एरिया है उसमें बहुत कम दिखाई देते हैं। हम लोग के स्कूल में कठपुतली का खेल दिखाया जाता था, जैसे आपने बोला वो बोल
0: बिल्कुल।
1: रही
0: और अगर आपको लगता है कि
1: हैं।
0: कहीं भी बच्चों के स्कूल में या आसपास के क्षेत्र में अगर कठपुतली का खेल दिखाया जा रहा है, तो बच्चों को जरूर वहां लेकर जाएं, ताकि कल बच्चे भूल ना जाएं कि कठपुतली नाम की कोई चीज होती है, कठपुतली का खेल कैसा होता है।
1: बिल्कुल
0: और इसीलिए जागरूकता के लिए भी इस तरह के दिन भी मनाए जाते हैं, और जब ऐसे किसी कलाकार को पुरस्कार मिलता है तो उन्हें भी इस चीज के लिए बहुत बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल
0: तो बात हम कर रहे थे खेलों के बारे में, आज जो खेल दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो 11 जून को मनाया जाता है, इसके बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिवस विशेष रूप से बच्चों के अधिकार, उनकी शारीरिक क्षमता के विकास और खेल के जरिए उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। इसे यूनिसेफ द्वारा बच्चों के खेलने के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ये बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी है हमें।
1: बहुत। और खेलना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि ये हर बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी भी है। इसलिए खेल की रक्षा करने के, खेल को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इससे हमारा बचपन जो है बच्चों का वो बचा रहता है।
0: बिल्कुल। और खेल की रक्षा करने का मतलब होता है बचपन की सुरक्षा करना, ताकि हर जगह हर बच्चा खेलने का जो अधिकार है उसे पूरा कर सके। और परिवार में जिस सदस्य की खेल की तरफ रुचि ज्यादा होती है, मतलब सबकी तो नहीं होती ना, तो जिसकी रुचि ज्यादा है वो खेल के लिए प्रेरणा या खेल का समर्थक बन सकता है उन बच्चों के लिए। क्योंकि
1: बिल्कुल
0: कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े अंतर्मुखी होते हैं ना, तो वो लोगों से ज्यादा बात करना पसंद करते हैं ना खेलना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रेरित
1: बिल्कुल, वो
0: करना
1: जिस
0: बहुत
1: तरीके के
0: जरूरी
1: खेल
0: है।
1: में उनको रुचि हो उस तरफ आप उनको बढ़ावा दीजिए।
0: जी
1: और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद की बधाई दे रहे हैं और कहते हैं कि वर्तमान में बच्चे मोबाइल के आदि हो गए हैं और खेलकूद से रक्त का संचार होता है, शरीर और मन प्रफुल्लित रहता है, स्वस्थ रहता है। पुराने

0: खेलकूद, छिपा छिपाई, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, आम के पेड़ पर रस्सी बांधकर झूलना सब लुप्त हो गए। आज केवल बच्चों को क्रिकेट ही अक्सर खेलते देखा है और मोबाइल चलाना। खैर, हमारी बिटिया रानी ऐसी नहीं है।
1: लेकिन अगर बच्चों को स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है तो उसे थोड़ा कम करके बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है, ताकि उनकी जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और सामाजिक क्षमता है, टीम में खेलने का जो एक स्पिरिट है, ये सब चीजें बच्चों में आ सके। और ये जो हम खेल दिवस मना रहे हैं आरती, इसका उद्देश्य भी यही है कि खेल की क्या शक्ति है इसे हम सब जाने, पहचाने और समझे। ये हर व्यक्ति को समझना है कि हर बच्चे के विकास के लिए और कल्याण के लिए खेलना कितना जरूरी है। और खेल दिवस जैसे आयोजन ये बातें समझने का हमें मौका देते हैं, और यही वो समय होता है आरती जब हम सब मिलकर ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर बच्चा खेलने के अधिकार का पूरा लाभ उठा सकता है।
0: बिल्कुल, और बहुत जरूरी भी है खेल के को महत्व देना। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हम जो बच्चे आजकल दिख रहे हैं ना, कि छोटे छोटे बच्चे भी जिम जा रहे हैं, तो उनको उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो खेलेंगे तो जो प्राकृतिक रूप से उनका विकास होगा।
1: और खेलने के लिए आपके पास बहुत सारी सामग्री हो ये भी जरूरी नहीं है, जैसे बचपन में जो हमने खेल खेले हैं या हमारे बहुत सारे सुनने वालों ने भी खेले होंगे,
0: दौड़ भाग है, साइकिल चलाना है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम खेल के अपने को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: लुका छिपी भी खेलते थे, और बस पत्थरों से कुछ टुकड़े जमा किए, सतोलिया बना के खेला, और कपड़े की, पुराने कपड़े की गेंद बना ली, उससे मारकर खेल रहे हैं।
0: बिल्कुल, बहुत से ऐसे खेल हैं और जिनको खेल के मतलब मन तो खुश रहता ही है ना, हम स्वस्थ भी रहते हैं। और जबकि मोबाइल हम लेके एक जगह बैठे हैं तो बस हम उसी जगह बैठे हुए पूरा दिन निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलता, हमें कोई दिन दुनिया की खबर नहीं रहती है। तो इससे क्या होता है ना, हम एक ही जगह बैठे रहते हैं तो रक्त संचार भी हमारा सही से हो नहीं पाता पूरे शरीर के अंदर, तो उसकी वजह से ना बच्चों का विकास बहुत ज्यादा अवरुद्ध भी होता है, और पूरे समय वो स्क्रीन पे लगे रहते हैं, उसे आंखों में हर तरह से उनको नुकसान नहीं होता है। तो बहुत जरूरी है बाहर निकलना, बाहर निकलकर खेलना।
1: तो इस दिन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में स्थापित किया, ताकि इस अधिकार को बढ़ावा दिया जा सके और इसकी रक्षा की जा सके। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूनिसेफ और यूनेस्को खेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इस दिन का आयोजन करते हैं, ताकि ये जो खेल की जो प्रक्रिया है बच्चों में चलती रहे। और हम एक गीत सुन ले, फिर आपको आगे बढ़ाएंगे।

0: बच्चों के साथ मिलकर जो परिवार के सदस्य हैं वो भी जब खेल का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो बच्चों को खेलने में बड़ी रुचि रहती है। तो देखियो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, कि ये जो दिन है ये बताता है कि हमारे जीवन में खेल कितना जरूरी है। और हमारी ये श्रोता जो है वो कहना चाहती है कि अगर कोई बच्चा खेल की तरफ रुचि लेता है तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि खेल में कोई करियर है या नहीं है, बस खेलने के लिए उसको प्रेरित करना है। और आगे लिख रही है कि खेल हर चीज में हमें जीने का तरीका सिखाता है, इसीलिए सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। और खेल हार जीत में कैसे उभरना है इसका तरीका भी हमें सिखाता है, और इस बात का भी हमें हमेशा ध्यान रखना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारी श्रोताएं जो लिखती हैं कि मेरे विचार से खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खेलों से शारीरिक मानसिक विकास होता है और हम सोशल मीडिया और मोबाइल से कुछ समय के लिए दूर रह पाते हैं। और मेरा मानना है कि बच्चों के साथ खेलने के लिए यदि हमें अपने व्यस्त समय में से थोड़ा वक्त निकालना पड़े तो जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ खेलते खेलते हम भी अपना बचपन फिर से जी लेते हैं। बहुत सही कहा इन्होंने,
0: जब ये खेल दिवस हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो इसका विषय है खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। और ये विषय हम सभी को और मतलब जो भी स्कूल हैं, परिवार हैं, व्यवसाय हैं, उनको ये याद दिलाता है कि खुशहाल और स्वस्थ बचपन खेल पर ही आधारित होते हैं। और खेल खेल में बच्चों को बहुत सारी चीजें दिखाई समझाई भी जा सकती है ना।
1: बिल्कुल, खेलते खेलते आप उनको पढ़ा भी सकते हैं
0: जी,
1: बहुत सी ऐसी तरीके की चीजें आप कर सकते हैं, ताकि अब उनको खेलने अगर थोड़े समय भी वो मोबाइल से दूर रहेंगे ना तो ये बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे वो सीखेंगे।
0: बिल्कुल, रचनात्मकता, लचीलापन, सामाजिक कौशल, ये सारी चीजें बच्चों में विकसित करते हैं खेल। और जीवन भर सीखने की जो खुशहाल जीवन की नींव है इसे भी वो रखते हैं। और बहुत सारी जगहों पर बच्चों के लिए स्वतंत्र और अनौपचारिक खेल के जो अवसर हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थान है वो कम है, अगर कहीं है तो वो सुरक्षित नहीं है, हर बार बच्चे के साथ कोई जाएगी जरूरी नहीं हो पाता। तो माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बच्चा घर पर ही खेले, तो ये सुरक्षा भी अगर बच्चों के लिए दी जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड हर बगीचे में वहां होना चाहिए जो बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखे। माता पिता में से कोई एक सदस्य तो जाता ही है, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित हो, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और बच्चे सीखते हैं कि किस तरह हमें साथ मिलकर काम करना है, साथ मिलकर खेलना है, टीम वर्क क्या होता है, ये सब चीजें खेल के जरिए ही आती हैं। जब वो साथ मिलकर खेलते हैं और बच्चों के साथ में खेलते हैं, उनसे सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, है ना, ध्यान रखना सीखते हैं, बहुत।
0: अभी जैसे बारिश का जब मौसम आएगा, पेड़ों पर झूले पड़ेंगे, तो सब बच्चे एक साथ मिलकर झूलते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं अपने आप लंबी पेंग नहीं ले पाते हैं झूले की, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको थोड़ा सिखाते हैं झूला कैसे जाता है, उनके साथ बैठकर, उनके साथ खड़े होकर, तो झूलना भी एक खेल हो गया। तो इस तरह से आप साथ लेकर कैसे चलेंगे ये भावना विकसित होती है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर यही कहना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है, खेल से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जब हम खेलते हैं तो सोशल मीडिया से हमारी दूरी बनी रहती है और स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है।
0: और जब बात खेलने की आती है तो हमें किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का इंतजार ही क्यों करना है।
1: बिल्कुल,
0: हम जो भी हमारे मस्ती भरे पल हैं उन अवसरों की तलाश करें, और हल्की फुल्की जो गतिविधियां होती हैं हमारी हम उन्हें भी खेल में बदल सकते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: और हमें रोज ही कम से कम इतना समय निकालना चाहिए, और बच्चों के लिए भी इतना समय निकालना चाहिए कि उनके साथ हम खेल सकें, ना कि हम मोबाइल पे या उनके साथ में कुछ इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, बैठे हुए मोबाइल पे देख रहे हैं या टीवी में लगे हुए हैं या मूवी देख रहे हैं, ये सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन एक इतना समय जरूर होना चाहिए हर दिन कि बच्चों के साथ बाहर खेला जाए। जो बाहर आप खेलते हैं ना उससे वो पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, उनका पूरा शरीर एक्टिव होता है, तो वो उससे उनके उनका विकास होता है, उनका दिमागी विकास बहुत अच्छा होता है, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है।
0: बिल्कुल, जब बच्चों को धूप में जाने से रोकना है, बारिश में भीगने से रोकना है, ऐसा कोई मौसम की अगर समस्या है जब बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, उस वक्त आप उन्हें चाहे कार्टून देखने में व्यस्त करिए।

0: घर में कोई इंडोर गेम खिलवा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बच्चों के विकास की हम बात कर रहे हैं वो बाहर खेलने से ही होता है।
1: बिल्कुल, और थोड़ा बहुत भीग जाना भी जरूरी है कभी कभी।
0: भाई बारिश में नाव चलाना एक बड़ा अच्छा खेल होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो जल्दी गाना सुने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और देखिए, हम बात कर रहे थे बच्चों के खेल की। बच्चे खेलकर कितने खुश हो जाते हैं और बच्चे कोई दिखावा भी नहीं करते।
1: नहीं,
0: अगर
1: नहीं।
0: वो खुश हैं तो खुशी दिखाई देगी, अगर वो किसी से नाराज हैं, गुस्सा है, तो वो गुस्सा भी अपना साफ दिखा देते हैं। लेकिन ये चीजें हम बड़ों में बहुत ज्यादा होती हैं आरती, कि खुश हैं या नहीं, कई बार सिर्फ दूसरे को हमारी तकलीफ का अंदाजा ना हो इसलिए हम खुश रहने का दिखावा भी करते हैं।
1: बिल्कुल, अक्सर ही होता है ऐसा कि दिखावा ज्यादा होता है, खुशी उतनी नहीं होती है।
0: खास तौर पर जब सोशल मीडिया की बात आती है तब ये दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आज का दौर ऐसा है जहां बहुत से लोग वास्तव में खुश रहने से ज्यादा खुश दिखाने पर ध्यान देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जो मुस्कुराती तस्वीरें होती हैं, शानदार यात्राएं, महंगे सामान, चमकदार जीवन शैली को देखकर कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि भाई ये जो सामने वाला है ना, ये सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति यही है और हमारे जीवन में कोई खुशी पता नहीं है भी कि नहीं। लेकिन अक्सर इन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है
1: उसको खुश देखने के बारे में हम समझ नहीं साथ में आ जाते हैं कि वो इतना खुश है हमसे, कहते हैं ना कि हमारे मतलब तुम्हारे उसके कपड़े हमारे कपड़े सफेद कैसे हो सकते हैं, तो वही चीज है, वो हमसे ज्यादा खुश कैसे हो सकता है।
0: हाँ, तो उन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। और जब जीवन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना बन जाता है तब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं से थोड़ा दूर होने लग जाता है।
1: बिल्कुल, और हर कोई ये सोचने लगता है कि लोग उसके बारे में सोचेंगे क्या, बजाय इसके कि उसे वास्तव में क्या अच्छा लगता है, कि उसे सचमुच उसे पसंद किया है, वो क्या करता है, वो ये करने लगता है कि वो दूसरे क्या पसंद करेंगे, मुझे उस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। तो परिणाम क्या होता है उसका, तुलना और तनाव, तुलना से क्या होता है, तनाव और असंतोष, क्योंकि उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है कि मैं सही लग रहा हूं या मैं सही हूं, वो सिर्फ दूसरों की नजर से खुद को देखने लगता है।
0: बिल्कुल, इसीलिए अगर सच्ची खुशी आप चाहते हैं अपने जीवन में तो क्या करना है, जो लाइक्स और फॉलोअर्स हैं ये दिखावे से नहीं आती। आजकल इसी के पीछे बस सब भाग रहे हैं कि अगर हमने कोई पोस्ट डाली है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है जिसमें हम नजर आ रहे होते हैं, तो वहां हमें बहुत सारे एक लाइक मिले।
1: बस आप क्या करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहते हैं कितने लाइक्स हो गए,
0: वो लाइक कितने बढ़ गए।

0: वो उसी में लगे रहते हैं
1: और बस इसी से हम है ना, तो ये अच्छे रिश्ते और आत्मसंतोष, स्वस्थ जीवन शैली और अपने काम में आनंद खोजने से मिलती है, इन चीजों से नहीं मिलती। ये चीज हमें समझनी है आरती। और व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है, अपनी खुशी का प्रमाण दुनिया को दिखाने की हमें जरूरत ही नहीं। क्यों हम सबूत दिखाएं कि हम खुश हैं? इस बात की हमें दिखावा करना ही क्यों है? बल्कि हमें ये समझना है कि कोई जीवन में प्रदर्शन नहीं चाहिए, बस जो वो अंदर हमारी खुशी है वो सबसे जरूरी है।
0: बिल्कुल। और सच्ची खुशी किसी भी दिखावे की तो मोहताज होती नहीं है कि हमें दिखाना पड़े कि हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं, कि कब हम हंस रहे हैं कब हम रो रहे हैं। एक एक चीज को उस पर डालने की जरूरत भी नहीं है। तो वो चीजें होती हैं जो खुशी होती है ना, वो होती है छोटे छोटे पलों में। हम बहुत बड़े पलों का इंतजार करते रहते ना कि चलो ये त्योहार आएगा तो हम बहुत खुशी से ये पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो अभी क्यों नहीं खुश हो जाते? तो हर जो खुशी छोटे छोटे पलों में मिलती है ना, वो खो जाती है उसे इंतजार में कि बहुत बड़ा पल हमारे पास में आए।
1: और जो लोग खुशियों के लिए बहाने ढूंढते हैं ना, इस तरह से उनकी खुशियां जिंदगी में पूरी कभी नहीं होती। ये मिलेगा तब खुश होंगे, उससे मिलेंगे तब खुश, यहां जाएंगे तब खुश होंगे, ये आएगा तब खुश होंगे, ये तो सिर्फ एक बहाने हैं। लेकिन वो खुशी छोटे छोटे पलों में, जैसा आप बता रही हैं,
0: जीवन है, कोई ऐसा मंच नहीं है कि हमें दूसरों को प्रभावित करना है, बस कि वो हमसे प्रभावित हो जाए, वो हो जाए। भाई हमें अपने लिए जीना है ना, हमें दूसरे के लिए इतनी दूसरे की नजर से नहीं जीना, हमें अपनी नजर से जीना है कि हम कब संतुष्ट हैं, हमें कब अच्छा लग रहा है, वो देखना है।
1: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिखते हैं कि खुश होना दिल की बात है और खुशी दिखाना चेहरे की आदत है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हम अपने लिए जीते हैं और दूसरे में दुनिया के लिए जीते हैं। जब हम असल खुशी में होते हैं तब मन को एक सुकून और संतुष्टि होती है, लेकिन जब खुश होने का हम दिखावा करते हैं तो चेहरा तो मुस्कुराता है पर कंधे थके हुए होते हैं। दिन भर लोगों को दिखाते हैं कि सब ठीक है पर रात को हम तकिया भी होते हैं। कभी कभी गिरकर संभलने में थोड़ा दिखावा ही सहारा बनता है, पर दिखावा ही अगर जिंदगी बन जाए तो अंदर का जो बच्चा है वो मर जाता है जो सच में हंसता था। लेकिन दिखावा वहीं तक सही है जहां तक खुद से झूठ ना बोलना पड़े। ये इतना प्यारा संदेश है और हम श्रोता ने जिसने भी लिखकर भेजा उसे बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना या दिखावा करना, सच बताऊं तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे हाव भाव हमें बता देते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, और अगर हम परेशान होते हैं तो हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें वो दिख ही जाता है। ऐसा ही कुछ हम सबके साथ में होता है, क्योंकि समाज में रहने के लिए हम सभी को कभी न कभी दिखावा करना ही पड़ता है, क्या करें। लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है कि कुछ ज्यादा ही दिखावा करते हैं खुश रहने का, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता। खुश रहने का एक उपाय है, वो बताते हैं वो, कि सबकी करो और मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की, क्योंकि मन से किए गए काम खुश करते हैं।
1: तो चलिए अभी हमें खुश करेगा और हमारे सभी सुनने वालों को खुश करेगा ये प्यारा सा गाना।

0: बहुत मीठा, बहुत सुरीला गीत हमने सुना। और इसके बाद हम लौटते हैं अपने विषय पर। हम बात कर रहे थे खुश रहना और खुशी का दिखावा करना।
1: जी बिल्कुल। और वैसे भी चंचल, अपनी खुशियों को महसूस करना, उन्हें जीना और उनके लिए आभारी होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम उन्हें केवल प्रदर्शित करते रहें। क्योंकि खुश रहने और खुश दिखने में बहुत अंतर होता है। खुश दिखने के लिए मुखौटा लगा सकते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए हमें मन का संतुलन बहुत जरूरी होता है और हमारे अंदर संतोष होना चाहिए। जैसे कि हाँ, हमें जो भी चीज है हम खुश है इसमें, वो चीज होनी चाहिए।
0: और कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सामने वाला व्यक्ति है, वो बात बात पर आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपने अंदर की अच्छाई को और खुशी को आप ज्यादा उजागर करके लेकर आइए, अपने सकारात्मक भाव को लेकर आइए, तो सामने वाले की जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं वो आपको कभी प्रभावित नहीं करेंगी।
1: बिल्कुल।
0: और देखिए, अब मैं एक अच्छा सा संदेश पढ़कर आपको सुनाती हूँ। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना या खुशी का दिखावा करना, दोनों पहलू शामिल हो चुके हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अक्सर अपनी परफेक्ट तस्वीरों को और स्टेटस के जरिए अपनी खुशियों का दिखावा करने में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, जबकि असल जिंदगी उनकी कुछ और ही होती है। जो अलग अलग सोशल मीडिया की साइट्स हैं, वहां पर अपने स्टेटस, अपना घर, अपने कपड़े, आउटिंग की फोटो डालकर बस लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने खुश हैं और कितने कामयाब हैं। और इस बेहतरीन दिखने की वहां पर होड़ सी मची हुई है। खुशी मांगे जो हो और मांगे सामानों से महंगे पलों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए समय में होती है, शांति में होती है, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में छिपी होती है। बहुत सही बात लिखी है।
1: बहुत सही बात। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना और खुश रहने का दिखावा करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। असल में खुशी आंतरिक शांति और संतुष्टि से आती है, जबकि जो दिखावा होता है वो सिर्फ एक मुखौटे की तरह होता है, जिसमें सामने वाले को प्रभावित करते हुए अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाना होता है और कुछ नहीं। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। कुछ लाइन्स उन्होंने भेजी है गाने की,
0: और इस गाने के माध्यम से इस बात को बहुत सटीक

0: तरीके से समझा जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: एक आगे के संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि आज के समय में लोग अपनी खुशी से ज्यादा उसकी नुमाइश करने में व्यस्त दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर जो प्रदर्शन है उसके बारे में इन्होंने भी लिखा है और आगे लिखते हैं कि दिखावा कुछ समय के लिए ही प्रभावित कर सकता है, लेकिन मन का संतोष, मन की शांति कभी नहीं दे सकता। रिश्तों में अपनापन, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अगर है तो चेहरे पर मुस्कान खुली रहती है और यही सच्ची खुशी है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य खुश दिखना नहीं है बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है लेकिन वास्तविक खुशी मन को संतोष और जीवन को अर्थ देती है। जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई के साथ जीना सीख जाता है तब उसे खुशी का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, उसका जीवन ही खुशी का प्रमाण बन जाता है। बहुत सही बात कही उन्होंने।
0: एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा संदेश है कि जीवन में दिखावे की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि खुश दिखना अब खुश रहने से ज्यादा आवश्यक हो गया है। जहां वास्तविक खुशी मन की शांति और संतुष्टि देती है, वहीं दिखावा ऊर्जा को खत्म करता है और मानसिक तनाव का कारण बनता है।
1: बिल्कुल
0: सही बात है।
1: बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि खुश रहना और खुश दिखना ये दो अलग यात्राएं हैं। खुश रहना भीतर का अनुभव है, ये सस्ता है क्योंकि इसका लेन देन बाहर की दुनिया से नहीं भीतर से होता है, लेकिन खुश दिखना दिखावे की दुनिया का खेल है। ये सब महंगा है, जेब से, दिल से, शांति से भी। असल में कठिनाई खुश रहने की नहीं, खुश दिखने की मजबूरी छोड़ने में है। सुख हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहरी चमक सिर्फ एक नकली रोशनी है। बहुत बहुत गहरी बात कही इन्होंने।
0: और भी संदेश है।
1: तो एक और जो हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि भाई दुनिया तो दिखावटी तो है ही, अपितु उसके पोषक भी है, फिर खुश रहना चाहते तो सभी हैं क्योंकि वो आनंद के सच्चित स्वरूपांश है, किंतु खुद में खुश रहना एक कला है और खुशी का दिखावा करते रहने वालों में अक्सर इसका अभाव ही देखा जाता है, क्योंकि वस्तुतः वो खुशी प्राप्त करने की कला को अपने दिखावेपन के माध्यम से सीख रहे होते हैं।
0: ऐसी बहुत से मिलती जुलती बातें हमारे सभी श्रोताओं ने लिखी हैं। कुछ संदेश जिन्हें हम शामिल नहीं कर पाए हैं उनसे क्षमा चाहते हैं और सुनते हैं ये वाला गीत।

0: आरती, हम बात कर रहे थे ना खुशी रहने के, खुश रहने के बारे में, उसका दिखावा करने के बारे में. एक बड़ा अच्छा संदेश हमें मिला है, खुश रहना दिल की बात है और खुश दिखाना दुनिया को. जो सच में खुश होता है उसे मुस्कुराने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, उसकी मुस्कान अपने आप ही चेहरे पर आ जाती है. दिखावे की खुशी कुछ पल चमकती है, लेकिन सच्ची खुशी मन को लंबे समय तक रोशन रखती है. इसीलिए खुश दिखने से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए. एक और छोटी सी बात ये आगे लिखते हैं, जिंदगी में सबसे सुंदर बात ये नहीं कि लोग हमें खुश समझें, बल्कि ये है कि हमारा मन सचमुच खुश हो.
1: बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने. और इसी साथ एक और हमारे श्रोता है, वो लिखते हैं कि जीवन में जब भी मौका मिले खुशी रहना चाहिए. खुश रहने का दिखावा करने से हम आंतरिक रूप से खुश नहीं रह सकते. दूसरों को खुशी दिखाकर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता. और मुझे विश्वास है कि विविध भारती मुंबई की श्रोता, जिसे मैं स्वयं भी हूं, अगर कभी किसी कारण से दुखी भी हूं, तो आप सभी शक्की शानदार जो सदाबहार प्रस्तुति होती है और लाजवाब गीत होते हैं, उनको सुनकर हम सभी श्रोताओं के चेहरों पर सच्ची खुशी झलकती है. तो दिखावा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता.
0: बिल्कुल सही बात है. और अगर आपको विविध भारती सुनकर खुशी मिलती है, तो इसके गाने भी आपको पसंद आते होंगे. और जब बात सुनने की आ रही है, तो भाई कानों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है.
1: बहुत जरूरी है.
0: और इसी बारे में हम बात करने वाले हैं. कान हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है, और ना केवल सुनने में मदद करता है आरती, बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे निभाता है. इसीलिए कानों की देखभाल बहुत जरूरी है.
1: बहुत जरूरी है. और कानों में इसलिए क्या करना है, हमें कभी कोई नुकीली चीज या माचिस की तीली, जैसे अक्सर हाँ. हम ना कुछ नहीं तो अरे कान में कुछ ली हो रही, तो बस माचिस की तीली लेके करने लगे, तो वो बहुत खतरनाक.
0: और महिलाएं हेयर पिन घुमाती
1: हैं. हाँ, हेयर पिन, चाबी लेता ले, कोई कोई तो चाबी से करने लगता है, कोई कॉटन बड्स जो होते हैं वो भी, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराने भी कभी कभी बने हुए होते हैं, तो हो सकता है उसमें फंगस हो या कुछ हो. तो कभी इस तरीके की चीजों को यूज नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो अधिक उपयोग है वो कानों को नुकसान पहुंचा सकता है. और लंबे समय तक हमें तेज संगीत भी नहीं सुनना चाहिए, और जो शोरगुल का वातावरण रहता है ना, बहुत समय तक ऐसे उसमें भी नहीं रहना चाहिए कि बहुत तेज आवाज आ रही हो जहां पे, उसमें भी रहने से, क्योंकि एक वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पे रहता है ना जो हमारे कानों की होती है, वो एक लिमिटेड होती है. उससे ज्यादा हम अगर शोर में रहेंगे तो वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाएगा.
0: देखो, जिस तरह से आंखों में जब गंदगी आती है, कोई कचरा जाता है, तो आंखों में जो नमी है वो अपने आप आंख उसे निकालकर कुछ देर बाद बाहर फेंकती है, और हम बस हल्के से इशारे से उस गए हुए तिनके को बाहर निकाल सकते हैं. इसी तरह कान में जो एक वैक्स बनता है, जो मोम जैसा होता है, वो अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही साफ होते रहता है. कई बार उसे जबरदस्ती निकलवाने की कोशिश में हम कान की सफाई करवाने कहीं कहीं चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे औजार बना लेते हैं. तो अगर आपको कभी लगे कुछ खुजली आ रही है, तो जो सॉफ्ट वाले ईयरबड होते हैं आप उनका इस्तेमाल करें. जो चाबी, नुकीली चीजें, हेयर पिन, इनका तो कभी ना करें.
1: इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से ही करें, बल्कि अपने आप जितना आपका ये कहते हैं ना, जितनी आपकी उंगली जो आपके हो सके जा सके उस हिसाब से आप करिए. वो सब चीजें आप प्रयोग मत करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, ये पुराने जो होते हैं वो बर्ड्स, उसमें वो फंगस भी होती है, तो वो अंदर जाके नुकसान पहुंचाता है. इसलिए ये सब चीजें आप ना प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है. और दूसरी चीज ये है कि अपने कानों का बहुत ध्यान रखिए, और जो ईयरफोन वगैरह रहता है ना, उसका बहुत कम से कम इस्तेमाल करिए. और क्योंकि ना आजकल लोगों को बहुत समस्या हो रही है, कि बहुत सारे लोग ये समस्या बताते हैं कि कानों में तेज आवाज सुनाई दे रही है, मतलब हर समय 24 घंटे एक आवाज सी आती रहती है, तो बहुत परेशानी इसलिए हो रही है कि अब आजकल लोग ये ईयरफोन का बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं. तो अब बहुत ज्यादा घंटों आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको कानों को नुकसान तो पहुंचाएगा ही.
0: क्योंकि जब इस चीज का प्रचार हो रहा था कि घंटों कान पर मोबाइल लगा के रखने से, बात करने से मोबाइल के जो गर्म होता है वो हीट हमें नुकसान करती है, तो भाई घंटों अगर आपको कान पर फोन नहीं लगाना है, तो बहुत देर तक अगर आप ईयरफोन लगाकर बात करेंगे या गाने सुनेंगे बहुत तेज आवाज में, तो इससे कानों को नुकसान तो होगा ही. एक और नुकसान, अगर आप सड़क पर चलते समय ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पीछे से आने वाले वाहन की आवाज या अन्य कोई आपको आवाज भी दे रहा है, तो आपका जरूरी काम छूट सकता है, दुर्घटना कोई भी हो सकती है. तो ईयरफोन का इस्तेमाल कम से कम करना है.
1: सबसे बड़ी चीज है, आप अगर आपको सुन ही रहे हैं, आप उसको बहुत जरूरी है आपको कान में लगाना, तो आप 50 उसको कम से कम 50 पे रखिए, 50 से ऊपर मत करिए. बहुत ज्यादा फुल साउंड में मत सुनिए उस चीज को, कि आपको बाकी आवाजें ना आए.

0: और दूसरी चीज अपने एक कान में ही लगाइए, अगर आप बाहर जा रहे हैं उसको लगाएं एक कान में लगाइए। आप ये करिए ना, एक कान में लगा लिए, थोड़ी देर बाद आपने दूसरे कान में लगाए, इससे क्या होता है ना कान आपका ऐसे पर्दे पे उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, वो खराब नहीं होगा। और साथ ही अगर आपकी बहुत ज्यादा खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए कृपया करके, अपने आप कोई दवाई मत करिए। कई लोग होते हैं ना कि कुछ हम ये चलो ये डाल लें, ये वाला तेल डाल लें या इस तरह से डाल लें, तो वो चीज आप अपना स्वयं का इलाज मत करिए। आप विशेषज्ञ से के पास जाइए, उनसे दवा लीजिए, उन्हें बताइए जो भी चीजें, तो वो उसका पूरा एग्जामिन करें, उस चीज से उसकी जांच करेंगे, उसके बाद आपको दवाई देंगे। और मतलब कानों की जो नियमित जांच होती है वो भी जरूर करवाइए।
1: हमारे श्रोता ने लिखा है कि नहाने के बाद कान सुखाएं, साफ तौलिए से कोने का प्रयोग करते हुए इसे सफाई करें और स्विमिंग प्लग का उपयोग करें। इसके बारे में मेरी जानकारी कम है आरती। आगे लिखते हैं कि तैरते समय पानी को अंदर जाने से रोकें, गलत घरेलू नुस्खे कभी ना आजमाएं, डॉक्टरी सलाह के बिना कान में तेल या कोई अन्य चीज ना डालें, पानी को झुकाकर अगर चला गया है तो उसे बाहर निकाल दें, और कान में पानी जाने पर एक तरफ झुकाकर ही इसको निकाला जा सकता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। और अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: आरती कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा,
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: फरमाइश के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश के इस सफर में बहुत सारे श्रोताओं से हमारी बातचीत होती है और इस बातचीत से हम एक दूसरे को जान पाते हैं विचारों से और भावनाओं से। और हेलो फरमाइश एक ऐसा मंच है जहां पर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपना संदेश, अपनी भावनाएं प्रेषित करते हैं। तो आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है, तो प्रस्तुत है आपके लिए आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मैं अभिजीत प्रयागराज से बात कर रहा हूँ। मैम, कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। और हम लोग दिन भर जितने कार्यक्रम आपके यहाँ से प्रसारित किए सारे कार्यक्रम से जुड़े रहते, बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम, चाहे वो हेलो फरमाइश हो, हेलो सहेली हो, सखी सहेली का कार्यक्रम हो, गीत माला हो, गीतों भरी कहानी हो, छाया गीत हो, आज के फनकार, ये सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल। तो अभिजीत जी, हमें एक बात बताइए, हम थोड़ा सा आज बात करना चाहते हैं खेलों के बारे में। अपने बचपन की ओर लौटिए और बताइए बचपन में कौन सा खेल खेलते थे आप अपने दोस्तों के साथ?
1: सबसे ज्यादा हम लोग गेंदे जो मैच होते हैं वो ज्यादा खेलना पसंद करते थे। गेंदा जैसे बैट बल्ला है, वो हम लोग जब कभी भी स्कूल से आते थे वो अक्सर हम लोग खेल खेला करते थे। बहुत अच्छा लगता था वो खेल खेलने में, खेल बहुत अच्छा होता था उस टाइम का।
0: कभी घर में बताते हो अपने बच्चों को या अपने घर में जो परिवार के अन्य सदस्य उनके बच्चे हैं, कभी बात होती है इस खेल के बारे में?
1: बिल्कुल होती है मैम। आज के समय में क्या हो गया है, लोग सबसे ज्यादा मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं, ये तकनीक, इसी वजह से लोग कोई अभी तक कोई खेल ये जानते ही नहीं है आज के दिन। लेकिन हमारा तो यही कहना है सभी लोगों से कि मोबाइल से ज्यादा अगर कोई ऐसा खेल खेला जाए तो ज्यादा ही कुछ अच्छा होता है।
0: बिल्कुल। तो चलिए, आपसे अच्छी बातचीत हो गई है, अब बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: चमत्कार फिल्म का नाम है और गाने का बोल है इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। नाम बताइए अपना।
1: जलाल अहमद
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो मैडम?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: मुझे एक गाने की फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल, हम आपको गाना सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद बातें कीजिए हमारे साथ। कैसे हैं, क्या करते हैं आप कश्मीर में?
1: जी हम शॉल काम करते हैं।
0: किस तरह का? पश्मीना शॉल?
1: हाँ, पश्मीना हम बनाते हैं।
0: उसके बारे में बताइए थोड़ा हमको, क्या खासियत है पश्मीना शॉल की, लोग क्यों पसंद करते हैं इस शॉल को?
1: कश्मीरी शॉल तो बहुत पसंद है, बाहर स्टेटों में भी वो जाते हैं, वहाँ भी पसंद करते हैं लोग, यहाँ भी। यहाँ तो बहुत इसके कारीगर है, हाथों से बनाते हैं हम, वो बहुत मेहनत उस पे लगते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं मैडम।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर होते हैं और गर्म भी होते हैं, है ना
1: जी? इसका मुख्तलिफ साइज है।
0: चलिए बताइए हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
1: फिल्म है साथी, उसका कुमार सानू गा रहे हैं, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए।
0: बहुत गहरा गीत है ये तो, है ना?
1: हाँ हाँ, बहुत
0: बहुत सुंदर गाया है कुमार सानू ने, और बहुत ही सुंदर इसके जो शब्द हैं, बहुत ही सुंदर है, गहरे शब्द हैं
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: फैसल इमाम।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं फैजल साहब?
1: मैम अच्छा हूँ मैं, आप कैसी हैं? ठीक है,
0: बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं यूडीसी पोस्ट पे हूँ, डिवीजन क्लर्क पे हूँ कॉलेज में।
0: तो नौकरी के साथ साथ विविध भारती को भी सुनना पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, विविध भारती तो बचपन से, ये सौगात मेरी मम्मी से मिला, सुनते आ रहे थे और कई बार पहले की बात हुई है विविध भारती में फरमाइश में।
0: अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बचपन में आप स्पोर्ट्स भी करते होंगे, खेलते होंगे बहुत सारे खेल?
1: जी जी बिल्कुल, क्रिकेट खेलना बहुत शौकीन है हमारा।
0: कैसे खेलते थे, कितने रन बनाए, बताइए अपने बारे में, क्रिकेट की दुनिया कैसी थी आपकी?
1: क्रिकेट की दुनिया बहुत अच्छी थी, हम तो ज्यादातर बैटिंग करते थे, बॉलिंग दोनों थे। बचपन में तो खैर बहुत कम ही खेल पाते हैं।
0: अब तो नहीं खेलना होता है ना?
1: अब खेलना होता है, सुबह सुबह फुटबॉल खेल लेते हैं।
0: अच्छा,
1: खेलने का मौका नहीं मिल पाता।
0: अच्छा, तो किस खिलाड़ी से ज्यादा प्रभावित रहे आप क्रिकेट खेलते समय?
1: हमारे तो फेवरेट खिलाड़ी रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर रहे हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो आपने अपनी बैटिंग में कितने रन बनाए होंगे ज्यादा से ज्यादा?
1: महीने से ज्यादा ज्यादा 70-80 बनाए हैं।
0: कभी सेंचुरी नहीं बना पाए?
1: बनाना था वो तो खैर, क्रिकेट हम लोग खेलते थे 10 ओवर 20 ओवर से ज्यादातर सत्ता नहीं प्राप्त होते थे हम लोग उस टाइम में। ये है कि फुटबॉल में बहुत गोल किया मैंने।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फुटबॉल खेला।
0: बहुत अच्छी बात, बताइए क्या?
1: खेलने की बहुत चाहत थी, फिर जिम्मेदारी साथ हमारी गुजर गए, जिम्मेदारी घर पे आ गई तो सब चीज से छोड़ना पड़ा।
0: ये होता ही है जिंदगी में कि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन घर की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां कई बार हमको रोक देती हैं वो काम करने के लिए और हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा बताइए, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आपकी सफाई फिल्म का गाना है वादा कर ले साजना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। वादा।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरौन, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, MP से।
0: क्या बात है, आपका स्वागत है बहुत बहुत अरुण साहब।
1: जी और आप कैसी हो?
0: अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, बादल हो रहे हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, हवाएं भी चल रही है।
0: अच्छी कंपेयरिंग की आपने मौसम पर।
1: जी जी, और आपके इधर मौसम कैसा है?
0: हमारे इधर तो अभी गर्मी है भाई, बहुत उमस है।
1: जी जी,
0: पसीना आता है।
1: जी,
0: परेशान हो जाते हैं, बस बारिश का इंतजार है।
1: जी जी,
0: बताइए अरुण साहब अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं, रेडियो का भी शौक करते हैं, क्रिकेट का भी शौक है, कबड्डी का भी शौक है, हर चीज का शौक है।
0: क्या बात है, क्या बात है। आज तो हम खेल के बारे में ही बातें कर रहे थे, हमारे श्रोताओं से जानना चाह रहे थे कि आपके जीवन में खेलों का क्या स्थान है, खेलते हैं कि नहीं। आपने तो खुद ही कह दिया कबड्डी खेलते रहे, कबड्डी का शौक है।
1: कबड्डी का हर चीज का शौक है, लेकिन खेलते नहीं है, सुनने का है, कमेंट्री आती है कमेंट्री सुनते हैं।
0: तो कभी बचपन में गांवों में खेला तो होगा आपने, ग्रामीण अंचल में तो बहुत सारे खेल होते हैं हमारे, ग्रामीण खेल?
1: नहीं, ग्रामीण में तो खेले हैं बचपन में, गिल्ली डंडा भी खेले हैं, फुटबॉल भी खेले हैं, भूत रंजा, टीप टीप, चोर सिपाही, हर चीज खेलने की तो कुछ बात ही अलग है।
0: लेकिन आपने कौन सा खेला, गिल्ली डंडा खेला या कबड्डी खेली? आप कह रहे हैं फुटबॉल भी?
1: गिल्ली डंडा खेले हैं, अंटी भी हर चीज खेली है हमने।
0: अंटी क्या होता है?
1: अंटी वगैरह खेलते है ना, अंटी रहती है ना, कौन में रखते हैं, छाटते हैं उसको, उंगली से मिलाते हैं, उसको मारते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: तो बहुत अच्छा लगा कि आप बचपन में ये खेल खेला करते थे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: अंदाज से सुना देना, आएगा मजा बरसात का।
0: अरे वाह, क्या बात है, अभी तो बरसात आई नहीं, मजा कहाँ आएगा।
1: जी जी, लेकिन बरसात तो आने वाली है, कम कम तो बारिश भी हो रही है।
0: बिल्कुल सही कहा, कई जगह बारिश हो रही है, तो चलिए हम भी इंतजार करते हैं उस बारिश का आपके गीत के।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगीलाल धाकड़ बोल रहा हूँ।
0: मांगीलाल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं।
1: जी, काफी दिनों के बाद कॉल लगी है, बहुत खुशी है मुझे।
0: अरे, खुशी तो होगी, क्यों नहीं होगी, लगातार आपने प्रयास किया होगा।
1: जी जी,
0: कैसा लग रहा है अब आपको जब आपकी कॉल लग गई है तो?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, और कार्यक्रम में मनचाहे गीत सुनता हूँ।
0: मनचाहे गीत के लिए खत लिख रहे हैं हमें?
1: जी जी, भेजे हैं।
0: ठीक है,
1: और हेलो सहेली सुनता हूँ, साथी सहेली सुनता हूँ, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है मांगीलाल जी, और क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती बाड़ी करता हूँ मैम, किसान हूँ।
0: मौसम भी अभी आपके अनुकूल हुआ कि नहीं हुआ, खेती बाड़ी के अनुकूल?
1: अभी नहीं, 25 तारीख तक बारिश आ जाएगी।
0: यानी इंतजार है, सब कुछ अच्छा होगा ना?
1: जी जी मैम।
0: तो बताइए, हम थोड़ा सा आज अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे हैं कि बचपन में वो कौन सा खेल खेलते थे, क्या उन्हें याद है कि वो खेल खेला करते थे अपने ग्रामीण इलाकों में? हमारे कुछ पारंपरिक खेल हैं जिन्हें हम सभी खेला करते थे, आपको याद है कोई ऐसा खेल जो आपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला है?
1: जी मैम, मैं मैच का शौकीन हूँ, मैच भी खेलता हूँ।
0: अरे, बैटिंग करते हैं या बॉलिंग?
1: बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं।
0: क्या बात है, हरफन मौला है फिर तो आप।
1: जी,
0: तो सबसे ज्यादा कितने लिए आपने, विकेट कितने लिए हैं बॉलिंग में?
1: विकेट जो मिल जाते हैं जो ले लेते हैं, 10-12 विकेट ले लिए थे मैंने एक बार।
0: अरे, फिर तो आप मैन ऑफ द मैच हो गए।
1: जी जी मैम, बहुत शौकीन है मैं, रेडियो का बहुत शौकीन हूँ।
0: अच्छा, कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: आज मुझे खुदा गावा फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम, आपको याद करूँ कि चिड़ा याद मिला दे और अब्बा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मोहम्मद रफीक, नागपुर कुतुब शाह नगर नागपुर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं। बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम, मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, घर में छोटी दुकान है, किराना वही चलाता हूँ मैडम।
0: अच्छा एक बात बताइए, दिन भर तो आप किराने की दुकान में काम करते हैं है ना, तो कभी रेडियो के लिए समय तो निकालते ही हैं, विविध भारती के लिए समय निकालते हैं आप?
1: हाँ, इससे तो पुराना रिश्ता है मैडम मेरा है, रेडियो से। तो
0: खेल में रुचि है आपकी?
1: स्कूल में मैडम फुटबॉल खेलते थे मैडम, हम लोग कबड्डी ये चलता था मैडम।
0: अच्छा, कैसे खेलते थे, अच्छा लगता था, गोल कर पाते थे?
1: ज्यादा तो मुझे गोल ही बनाते थे कि हाई रुचि थी ना।
0: हम आज ना अपने श्रोताओं से ही जानना चाह रहे थे कि अगर हम उन्हें बचपन की ओर लौटाएं तो उन्हें क्या याद आता है कि क्या वो खेला करते थे। हम जब छोटे थे कितना खेल खेला करते थे ना।
1: हाँ मैडम सही बात है, तो बचपन होता ही है, बेफिक्री का रहता है मैडम, जवानी तक बुढ़ापा ही कठिन जाता है मैडम, बचपन और जवानी तक अच्छी रहती है मैडम।
0: हाँ, जब आप युवावस्था में आए तब भी आपका ये खेल जारी था फुटबॉल का, या फिर काम में लग गए?
1: हाँ मैडम, क्या बोलते सरकारी जॉब लगा था, पार्टी में ही था, जब जॉब लग गया था मुझे सरकारी मुहावरे में फायदा नहीं था, लेकिन मैंने फिर 2.5 महीने में छोड़ दिया, यानी 2 महीने छुट्टी के लिए किया था मैंने, जब खर्चे के लिए।
0: छोड़ा क्यों
1: मैडम? क्योंकि मैं तो आगे पढ़ाई करना था मैडम, उस जमाने में 10वीं पास करना लोहे के चने जमाना जैसा था। पहली से 10वीं तक पढ़ाई किया हूँ, बिगर ट्यूशन से पास हुआ हूँ।
0: अरे वाह,
1: मैंने कसम खाया था कि मैं 10वीं पास होकर दिखाऊंगा, चैलेंज दिया था दो भाइयों ने,
0: क्या
1: आगे पढ़ना नहीं था 10वीं पास करके, क्योंकि उस ट्रेन में तो 10वीं बहुत काफी था उस जमाने के साथ।
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने जज्बा रखा ना पढ़ाई का, और आज आप अपना घर चला रहे हैं दुकान के जरिए।
1: जी मैडम।
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: झूठा आसमान का मैडम, कौन है जो सपना में आया है, कौन है जो दिल में समाया है, जो झूठा है आसमान भी इसको मेरा
0: रंग लाया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: कौन है जो

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती पद्माताई सिंगारे बात कर रही हूँ, मंदाकिनी दीदी।
0: अरे आपको पता है कि मंदाकिनी बोल रही है इधर?
1: मैं आवाज से पहचान रही हूँ दीदी आपको।
0: अरे क्या बात है,
1: कैसे हो दीदी आप?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ दीदी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं तो घर पे रहती हूँ दीदी।
0: घर पे घर के काम करती हैं?
1: घर का काम करती हूँ, घर पे रहती हूँ और विविध भारती के कार्यक्रम में सुनती हूँ दीदी।
0: और क्या शौक है आपके ये बताइए।
1: मेरे को शौक तो गाना सुनने का शौक है दीदी। रात दिमाग को सवेरे से हेलो फरमाइश में जो कार्यक्रम रहता है वो भी सुनती हूँ। मैं आपका झमकर सुनते मन चाहे चालू जो करे वो, उसके बाद मैं खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ दीदी आपको।
0: तो मन चाहे गीतों के लिए आप हमें पोस्ट कार्ड में अपना नाम पता भेज रही है, पसंद का गाना
1: भेजिए मैंने।
0: अच्छा मुझे एक बात बताइए, आज हम सबसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कभी स्पोर्ट्स आया, खेल आया? बचपन में हम खेला करते थे ना, युवावस्था में भी खेलते थे। आपने अपने बचपन में कौन सा खेल खेला था? लंगड़ी टांग, कबड्डी, खो खो, कुछ खेला था?
1: मैं तो सबसे ज्यादा ऐसे लंगड़ी खेलती थी दीदी, मैं छोटेपन में अभी खो खो खेलती थी। और मेरी जो बहन है वो ज्यादा मेरे को खेलने के लिए देती थी दीदी, लाड़ती थी ना मैं।
0: अच्छा, लेकिन बचपन तो खेलने का ही नाम होता है ना, बचपन में तो हम दुनिया भर के खेल खेलते हैं। तो अपनी बहन के साथ कभी कंचे खेले फिर बैठ के? क्या करती थी बहन के साथ बैठ के? कंचे खेले होंगे, गट्टे खेले होंगे?
1: कंचे खेलती थी मैं अपने बहन के साथ, खेत में जाती थी तो मट्टी खेलती थी, वो मट्टी के बर्तन बनाती थी, मेरी बहन बना के देती थी मेरे को।
0: याद आया ना आपको अपना बचपन, कितना सुंदर होता है हमारा बचपन, है ना। चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए हमें, कौन सा गीत सुनना चाहती है?
1: सुनील का नाम था खानदान और गाने के बोले दिल गर्दन के उड़ते बाद।
0: आ आ आ, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम नमस्कार, विविध भारती।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: नजीर डोंगरे बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से?
1: सोलापुर में, बार्शी से।
0: अच्छा, स्वागत है आपका नजीर साहब, कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ मैडम।
0: अरे वाह, क्या बात, हम भी अच्छे हैं।
1: बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं मैडम।
0: अच्छा, अच्छे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: सुहाना सब बहुत अच्छा लगता है। अभी नई चालू करे ना तुम कार्यक्रम, सब पर 1 बजे से 2 बजे तक
0: सुनते हैं आप सारे कार्यक्रम ना?
1: अच्छा लगता है। हेलो फरमाइश, गीत गाते हैं, अच्छे कार्यक्रम है
0: वो। आपका मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए हमें पत्र लिख रहे हैं आप?
1: नहीं मैडम, नहीं लिखा, अभी लिखूंगा इनसे आगे।
0: अरे क्यों नहीं लिखा भाई, आपके लिए तो है वो प्रोग्राम।
1: आगे बहुत पत्र लिखता हूँ।
0: हाँ बताइए, गाना कौन सा सुनवाए आपको?
1: वो प्रिया प्रिया सिंह बोला गया, ये गीत सुनना है मुझे।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये?
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मैम हम धेमाजी असम से विमल बसुंतर बोलो। मैम
0: विमल जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: जी मैम हम ठीक है, मेरा सिलाई का काम करता हूँ, मेरा दुकान है, दुकान से फोन कर रहा हूँ। मैम
0: कितने बजे तक सिलाई करते हैं?
1: जी मैम हम तो सिलाई करते हो, घर में काम करके आके दुकान खुलता हूँ, फिर सिलाई करके जल्दी चला जाता हूँ 4 बजे 5 बजे तक।
0: क्यों जल्दी क्यों चले जाते हैं, लोग तो देर रात तक काम करते हैं।
1: जी मैम हम लोग का ये थोड़ा बस्ती इलाका है ना मैम।
0: हाँ,
1: इसीलिए थोड़ा बस्ती का अंदर का दुकान है ना, इसीलिए इसे चलता नहीं।
0: अच्छा, समय रहते घर पहुँच जाते हो?
1: जी मैम जी।
0: अच्छे से हो जाता है काम जितना आप चाहते हैं?
1: जी मैम हम लोग का इधर चल जाता है, थोड़ा मोड़ा इसे करते रहता हूँ, और सिलाई का अलावा दूसरा सब में रखता हूँ दुकान और दूसरा है।
0: हाँ, और विविध भारती के लिए कब समय निकालते हो?
1: जी मैम विविध भारती तो सुनते रहता हो, लेकिन पहली बार आज फोन लगाया मैम।
0: कैसा महसूस कर रहे हो?
1: सुनते रहता हूँ, अच्छा लगता है सुन के मैम।
0: अच्छा, क्या फील हो रहा है अभी जब फोन लग गया आपका तो?
1: जी मैम आज पहली बार फोन मिला, इतना अच्छा लगा है, फिर आप लोग से आज बातचीत हो गया, इतना अच्छा लग रहा है मैम।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: जी मैम हमको सुनना है करण अर्जुन का बंधन तो प्यार का बंधन, ये गाना सुनना है मैम।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्ते मंदाकिनी मैडम।
0: नमस्ते। अरे आपको पता है कि आज हम बैठे हैं मंदाकिनी जोशी।
1: बिल्कुल, देश की सुरीली धड़कन प्रसारण सेवा में जब आपकी आवाजें पहुंचती है कार्यक्रम सखी सहेली हेलो फरमाइश जैसे कार्यक्रमों में तो बिल्कुल मन आनंदित उठता है। हो उठता है मैडम जी।
0: अरे क्या बात है, आप इतने सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी मैम।
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: मैं आपका नियमित श्रोता बात कर रहा था, संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: स्वागत है आपका संतोष जी।

0: कैसे हैं आप बताइए।
1: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके कार्यक्रमों से जुड़ाव रखते हैं।
0: अच्छा बताइए क्या करते हैं आप।
1: मैडम मैं एक कृषक हूँ, साथ में वार्ताकार हूँ।
0: अच्छा तो आप वार्ता लिखते हैं।
1: जी मैम।
0: तो अच्छा मैं आपसे दो या तीन लाइन में एक वार्ता लिखवाती हूँ अभी। ये बताइए अगर आपको कबड्डी का खेल दे दिया जाए कि इसके बारे में लिखना है और हमें प्रोत्साहित करना है कि जीवन में खेलों का महत्व होना चाहिए और कबड्डी जो कि हमारा ग्रामीण खेल है कैसा खेल है इसके बारे में बताइए तो क्या कहेंगे।
1: कबड्डी एक ऐसा खेल होता है जिसे मानसिक शारीरिक परिवर्तन गतिविधियां हमारी प्रभावित करते हैं, खास करके युवाओं में अगर देखा जाए तो कबड्डी का एक अच्छा जज्बा होता है। और कबड्डी न केवल उत्साह का प्रेरणा देता है बल्कि कबड्डी शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी आपको ताजगी से भर देता है।
0: अरे वाह क्या बात है बहुत सुंदर। अच्छा आपसे अगर हम पूछे तो आप क्या बताएंगे, आप कौन सा खेल खेला करते थे जब आप छोटे थे या युवा हुए किशोर हुए।
1: खेलों की बात की जाए तो रस्सा कस्सी का जो खेल हुआ करता था वो सबसे ज्यादा हमें भाता था। और जो मैच होते थे खास करके पुराने दौर में जब हम लोग बच्चे थे तो खेला करते थे तो वो सारी यादें हमें आज भी याद आती
0: हाँ।
1: हैं और खेलने का मन होता है।
0: लेकिन
1: जी मैम
0: आज बच्चों की दुनिया केवल कंप्यूटर गेम तक सीमित हो गई है। स्कूल्स में तो खैर गेम्स होते ही हैं लेकिन घर में अगर देखा जाए तो बच्चे ना के बराबर खेलने लगे हैं।
1: जी मैम बिल्कुल सिमट करके रह गए हैं बच्चे, लेकिन बच्चों की परिभाषा जो होती है व्यक्तित्व होती है वो माँ और पिता से शुरुआत होती है। यदि बच्चों की अच्छी आदत डालनी है तो माता पिता को भी सजग बनना चाहिए, अपने आसपास मोबाइल कंप्यूटरों को थोड़ा सा दूरी रखें और खेलों का विषय जरूर चूज करवाएं ताकि बच्चे अपने आप को मेंटेन रख पाएं।
0: बहुत सुंदर बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके संतोष जी। चलिए आपकी पसंद का गीत बताइए हमें।
1: बिल्कुल मैम एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, फिल्म खलनायक का गाना है, ऐसी तेरी याद आती है।
0: क्या बात है चलिए सुनते ही।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैं अमल बसुमतारी बात कर रहा है औरंगाबाड़ा सोनीतपुर असम से।
0: स्वागत है आपका। कैसे हैं अमल जी आप?
1: बहुत अच्छी है, आज तो बारिश हो रहा है इसलिए थोड़ा सा राहत मिल चुका है गर्मी से।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो।
1: कैसे हैं मैडम? बहुत दिन से विविध भारती सुन के आ रहा है लेकिन कॉल नहीं लगा पा रहे थे, आज कॉल लगा पा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी ट्रैफिक होता है आपके प्रोग्राम में लेकिन उसको तोड़ के आपके पास आ चुका है मैडम।
0: क्या बात है, चलिए अच्छी बात है ना, आज आपका कॉल भी लग गया, आप खुश नजर आ रहे हैं। क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती बाड़ी करते हैं, धान का खेती लगाया जाते हैं और चाय का खेती है हमारा और सुपारी वगैरह लगाता है और सब्जी का भी खेती लगाता है।
0: चाय का खेती भी करते हैं?
1: जी जी असम में तो चाय का ही खेती ज्यादा करता है हमारे असम लोग।

0: बिल्कुल असम की चाय। कौन सी चाय? खुशबूदार पत्तियां।
1: जी।
0: अरे हम भी चाय के बहुत शौकीन है। काश आपके पास होते तो आपके खेत पे ही बैठकर चाय बनाते और पी लेते।
1: नहीं, हमारा चाय का तो ऐसे सिर्फ पार्ट निकलता है और इस पार्ट को फैक्ट्री में भेज देता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अमल जी, एक बात बताइए, और क्या करते हैं इसके अलावा? खेती बाड़ी तो करते हैं।
1: और मैं बांसुरी बनाता है, बांसुरी बजाता है, और पंखा बनाता है, हाथ वाला पंखा, ये भी बनाने अच्छा लगता है।
0: अच्छा, बांसुरी बजाते हैं या बनाते हैं?
1: बनाती भी है और बजाती भी है।
0: खेतों से मिलती है
1: हाँ हाँ
0: आपको
1: हाँ
0: ये लकड़ी?
1: बम्बू से बनाता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर एक कलाकार भी
1: जी
0: है। तो बताइए,
1: जी
0: चलिए कभी आपसे सुनेंगे बांसुरी। फिलहाल तो बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: हीरो हिंदुस्तानी फिल्म का वो जो चांद नजर आ गया, ये वाला गाना सुनना है।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: जी मैं दीपक जाधव बात कर रहा हूँ मैडम, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से।
0: स्वागत है आपका दीपक जी, कैसे हैं?
1: जी हम बहुत मजे में मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, आप लोगों से बात करके और अच्छे हो गए हैं आज। कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: जी मैं किसान हूँ मैडम, खेती करता हूँ।
0: क्या है आपके खेत में अभी?
1: अभी तो कुछ नहीं, लेकिन बरसात का इंतजार चालू है।
0: अच्छा, कैसा मौसम हो रहा है आपके शहर में?
1: अभी तो फिलहाल धूप निकल रही है।
0: हाँ तो दीपक जी और क्या करते हैं, इसके अलावा कोई और शौक है आपकी?
1: खेती की सारी करता हूँ खाली,
0: बस और कुछ नहीं।
1: और रेडियो सुनता हूँ।
0: रेडियो सुनते हैं तो रेडियो में कभी आपको कुछ और पसंद आता है? जैसे एक गाने तो सुनते ही हैं, खेलों पर कभी बात करते हैं आप? खेलों की कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं?
1: जी बिल्कुल, सुनते हैं रेडियो में क्रिकेट की कमेंट्री।
0: क्रिकेट की कमेंट्री तो जब आप छोटे थे तो आप कौन सा खेल खेलते थे, याद है आपको? स्पोर्ट्स क्या करते थे, क्या स्पोर्ट्स था?
1: थोड़ा हम खो खो खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे।
0: अरे
1: पसंद है मेरा।
0: अच्छा, पसंदीदा खेल कौन सा है?
1: खो खो।
0: खो खो, बहुत मजा आता था।

0: खेलने में तो
1: जी
0: है ना। कभी आपसे ऐसा हुआ कि खो कहा और आप नहीं उठ पाए हो?
1: बहुत बार हुआ मैडम, मजेदार किससे होते थे वो।
0: फिर बड़े होने के बाद सीधा खेती बाड़ी करी आपने, काम में लग गए?
1: घर में खेती थी ना मैडम, और शिक्षा का आगे चल के खेती करने वाला कोई नहीं था।
0: अच्छा, पढ़ाई की आपने?
1: पढ़ाई 12वीं तक की।
0: अच्छी बात है, चलिए अभी बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
1: हमें तेरे नाम का गाना सुनना है मैडम, क्योंकि किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती।
0: क्या बात है, कितना गहरा गीत सुनना चाहते हैं। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228670288। हमारा दूसरा नंबर 02240024662। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम। ये आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है, FM 101.5 MHz पर। शाम के 5 बजे हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी लेकर, जिसमें आज हम बात करेंगे कि साइबर अटैक से कैसे बचें। साथ ही ज्ञान मंजरी में आपको बताएंगे खेल के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। तो चलिए दोस्तों, हमारे कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह ने।

तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आते हैं आज के बात की तरफ, जिसका विषय है साइबर अटैक से कैसे बचें। दोस्तों आज की दुनिया में साइबर सुरक्षा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। व्यवसायों के लिए बढ़ते खतरों को देखते हुए एक मजबूत सुरक्षा समाधान का होना अत्यंत आवश्यक है। आजकल इतने सारे खतरे मौजूद हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन है। दोस्तों साइबर हमला आपके सिस्टम या नेटवर्क का जानबूझकर किया गया दुरुपयोग है। साइबर हमले दुर्भावनापूर्ण कोड का उपयोग करके आपके कंप्यूटर लॉजिक या डेटा को नुकसान पहुंचाते हैं और आपके डेटा को चुराते हैं, लीक करते हैं या बंधन बना लेते हैं। दोस्तों साइबर हमलों से बचाव हर व्यवसाय और संगठन के लिए आवश्यक है। साइबर अटैक से बचने के लिए जरूरी है कि अपने सभी ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए कम से कम 12 से 15 अक्षरों के लंबे जटिल और अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करें। अपने ईमेल, सोशल मीडिया और बैंकिंग अकाउंट्स पर MFA या 2FA चालू करें, जिससे हैकर्स के लिए पासवर्ड चुराने के बाद भी अकाउंट से सेम लगाना मुश्किल हो जाता है।

कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में।
2: तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे साइबर अटैक से कैसे बचें। दोस्तों, अपने फोन, कंप्यूटर और सभी एप्स को हमेशा अपडेट रखें। अपडेट्स में सुरक्षा की कमियों को ठीक करने वाले पैच शामिल होते हैं। किसी भी लॉटरी, भारी डिस्काउंट या बैंक अकाउंट बंद होने वाले ईमेल या मैसेज में दिए गए अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। इसी के साथ ध्यान रहे, पब्लिक वाईफाई या का इस्तेमाल करते समय बैंकिंग या ऑनलाइन शॉपिंग करने से बचें। साथ ही सुरक्षित रहने के लिए VPN का उपयोग करें। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक पासवर्ड, UPI पिन या OTP न बताएं। दोस्तों, यदि आप किसी साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं तो तुरंत भारत सरकार के राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। तो चलिए दोस्तों, इसी बीच सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों

0: को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आते हैं ज्ञान मंजरी की तरफ, जिसका विषय है खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है। दोस्तों 11 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस खेल को संरक्षित करने, बढ़ावा देने और प्राथमिकता देने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, ताकि सभी लोग, विशेष रूप से बच्चे, इसके लाभ प्राप्त कर सकें और अपनी पूरी क्षमता तक विकसित हो सके। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस खेल की शक्ति का जश्न मनाने का समय है। यह एक ऐसा समय है जब हम सब एक साथ आकर यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक बच्चा खेलने के अपने अधिकार को पूरा कर सके। दोस्तों खेल महज मनोरंजन से कहीं बढ़कर एक सार्वभौमिक भाषा है, जिसे सभी उम्र के लोग बोलते हैं और जो राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक सीमाओं से परे है। यह साझा जुनून समुदाय की भावना और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देता है।

तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे खेल के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। दोस्तों, खेल व्यक्तियों में लचीलापन, रचनात्मकता और नवाचार को भी बढ़ावा देता है। विशेष रूप से बच्चों के लिए खेल रिश्तों को मजबूत बनाने और आत्मनियंत्रण, आघात से उभरने और समस्या समाधान कौशल को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह बच्चों को संज्ञानात्मक, शारीरिक और रचनात्मक, सामाजिक और भावनात्मक कौशल विकसित करने में मदद करता है, जो उन्हें तेजी से बदलती दुनिया में सफल होने के लिए आवश्यक है। दोस्तों, प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून 2024 को विश्व स्तर पर मनाया गया था। इसका शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, शैक्षिक संस्थानों तथा बाल अधिकार समूहों के प्रयासों से किया गया। इस अवसर पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया, जिसकी सह मेजबानी यूनिसेफ और यूनेस्को द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस खेल की शक्ति का जश्न मनाने का समय है। यह समय जागरूकता बढ़ाने का है, जिससे लोगों को पता चल सके कि बच्चों के विकास और भलाई के लिए खेल कितने जरूरी हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

तो दोस्तों, आज की बात में हमने जाना साइबर अटैक से कैसे बचें, साथ ही ज्ञान मंजरी में हमने खेल के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर चर्चा करी। तो चलिए, स्टूडियो की घड़ी अब हमें आपसे और बातें करने की इजाजत नहीं देती है। कल फिर हाजिर होंगे एक नई उमंग के साथ। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी सवाईमाधोपुर का रणथंभौर चैनल है FM 101.5 MHz पर। और लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण।

श्रोताओं, शाम 5:45 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधुली। शाम 6 बजे हम आपको सुनवाएंगे महिलाओं का मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत। आज की इस महिला जगत कार्यक्रम में आप सुनेंगे आजरी बात, विषय होगा परिवार की नारी धुरी। साथ ही सुनिएगा वार्ता मातृ शिशु स्वास्थ्य। अन्य जानकारी के अंतर्गत जानकारी लीजिएगा बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। शाम 6:30 बजे होंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:40 पर सुनिएगा जिले की चिट्ठी और 6:50 पर होंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। गीतों और गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 7 बजे। शाम 7:10 पर सुनिएगा विशेष कार्यक्रम केंद्र सरकार के 12 वर्ष। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे।

शाम 7:45 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। रात 8 बजे होगा किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम कृषकों के लिए। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे चर्चा गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना का महत्व। आज की जानकारी में सुनिएगा संतुलित पशु आहार का महत्व। साथ ही होगी भेंटवार्ता पशुओं में होने वाले प्रमुख रोग बीमारी एवं रोकथाम। यादों के स्वर पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 8:30 से। और रात 8:45 पर सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या। फोन करें गीत सुने फरमाइसी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे रात 9 बजे से। रात 9:30 से सुनिएगा विविध भारती कार्यक्रम। तो रात 9:30 विविध भारती कार्यक्रम में होगा आज के फनकार। रात 10 बजे सुनिएगा छाया गीत। और रात 10:30 होगा ढलती जाए रात। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार आप सुन सकते हैं रात 11 बजे। ये तो था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी सवाईमाधोपुर का रणथंबोर चैनल है, FM 101.5 MHz पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम गोधुली। ये आकाशवाणी सवाईमाधोपुर का रणथंभौर चैनल है, FM 101.5 MHz पर। और अब लीजिए सुनिए महिलाओं का मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत सुनवा वाली सारी बहनों को थाकी बहन रीना जोशीरो घणो घणो राम राम सा। तो बहनों आज री बात में आपा बात करूंगा परिवार की धुरी नारी, ये विषय पे आज आपा बातचीत करूंगा। तो बहनों यह बात तो सामान्यतः सभी लोग अच्छे से जान गया है कि नारी जो है वह परिवार को हृदय है और प्राण है। परिवार को जो संपूर्ण अस्तित्व और वातावरण है वो एक महिला पर ही निर्भर रहवे है। यदि महिला ना हो तो घर घर नहीं लगे है। तो धुरी यानी कि परिवार को पूरी तरीके से चलावा वाली जो इकाई है वह महत्वपूर्ण इकाई महिला को ही मान्यो जावे है। परिवार में जो रिश्ता है उनकी डोर को मजबूत बनावा के लिए जो महिला के ऊपर जो जिम्मेदारियां होवे है तो परिवार को एक सूत्र में बांध के रखनो यो कोई आसान काम नहीं बनाओ। इसलिए नारी जो है हर तरीका सु कोशिश करे है और उको सफल बनावा में जुटी रहवे है। अक्सर आप सभी देखा हाँ आपनी में भी ऐसी आदत रहवे है कि हर काम की जो जिम्मेदारी रहवे है घर में वह स्वयं पर ले लेवे है, जिससे कई बार जो है काम की भी अधिकता हो जावे है और थकान से जो है आदमी चिड़चिड़ोपन होनो स्वाभाविक है। तो अपनी खींच दूसरा पर उतर भी जावे है तो ऐसी स्थिति में परिवार का अन्य सदस्य कि यह जिम्मेदारी भी बने है कि काम को मिल बांट के आपसी सहयोग से पूर्ण करावा, जिससे कि उन्हें भी आराम मिल सके। परिवार में रह के नारी जो है अपना बच्चान को भी अच्छा संस्कार देवे है, इसलिए ही माता को प्रथम गुरु बतायो गयो है। और छोटी छोटी बचत करके कसा मुसीबत के समय रुपया को जो है सही समय पे उपयोग करनो, वास्तव में यह बात तो एक महिला से ज्यादा कोई नहीं समझ पावे है। चाहे वह मना करे है कि उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन वह पैसा को जो है इस प्रकार से बचत करे है कि जब समय आवे है असो मुसीबत को या कोई ऐसी कोई बात हो जावे है तो वह पैसा को तुरंत निकाल के दे देवे है। पति का हर सुख दुख में साथ निभानो या महिला की ताकत ही है, इसलिए महिला को जो है शक्ति स्वरूपा मान्यो गयो है। घर का रीति रिवाज है जो परंपरा है उनको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ावा को काम भी एक महिला ही करे है। तो बहनों यह बात सत्य है कि जो महिला है वह समाज में परिवार समुदाय अर्थव्यवस्था और नेतृत्व क्षमता सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभावे है। कामकाजी और घरेलू दोनों ही तरीका सु व सकारात्मक पहलू के साथ कार्य करे है। तो वास्तव में यह कोई अतिशोक्ति नहीं है कि

महिला ही एक परिवार की धुरी होवे है। तो भिणा हो बाता को सिलसिला तो आगे भी जारी रहेगो, पर भिणा को सुनाओ ये प्यारो सो लोकगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: तो बनियो बेनो, अभी अपन ने सुनियो ये संदेश और आगे अपन बात कर ले वहां चर्चा में मातृ और शिशु स्वास्थ्य का बारे में। तो मां बनो एक नारी को संपूर्णता को एहसास दिलाना है, इसलिए मां और शिशु की जो देखभाल रहे है वह बेहद जरूरी है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से तात्पर्य माताओं और बच्चों को जो स्वास्थ्य है और उनका कल्याण सु है, जिससे कि उनको गुणवत्तापूर्ण जो है स्वास्थ्य सेवा, जो स्वास्थ्य जो भी वहां की चिकित्सा इकाइयां है उनके द्वारा पहुंच सके और समय रहते ही वो रोग की रोकथाम भी हो सके। तो गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव उत्तर अवधि के दौरान जो महिला रहे है उनका स्वास्थ्य को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहे है। तो उस समय जो भी टीकाकरण करना है, माता को जो पोषण संबंधित जो भी खान पीन है उसको ध्यान रखना है, तो ये समस्त प्रकार के जो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है वो समय समय पे चिकित्सक की सहायता से आपा ले सका। हाँ, गर्भावस्था के समय अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में देखे जावे है कि प्रसव के दौरान मृत्यु दर जो है बड़े है वहाँ पे, क्योंकि ना समझी के कारण भी माता और शिशु दो ही को जो है स्वास्थ्य प्रभावित हो जावे है। तो इसलिए समय रहते ही जो भी स्वास्थ्य इकाई है वहाँ जाके आपा को इलाज कराना आवश्यक है। साथ ही सरकार भी की तरफ से भी जो योजना चलाई जा रही है प्रधानमंत्री मातृ शिशु योजना, उसको उद्देश्य भी यही है कि सुरक्षित प्रसव संस्थागत ही करावे। जैसा कि कोई भी जिला अस्पताल है या प्राथमिक केंद्र है वहां पे करावे, और साथ ही वहां पर जो है संस्थागत प्रसव जब हो जावे है तो एक प्रोत्साहन राशि भी देवे है 5,000 रुपए की। तो माँ और शिशु दो ही को स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभावे है, क्योंकि आगे वाली पीढ़ी तैयार होवे है। तो जो शिशु मृत्यु दर भी अक्सर देखवा में मिले है तो उको भी जोखिम कम हो जावे है। तो एक माता और शिशु के लिए उचित पोषण, स्वस्थ कि स्वस्थ रेवा के लिए एक शुरुआत की नींव है, और साथ ही जो माँ है वह स्तनपान से जो बच्चा को पूरा पोषण दे सके है, तो नवजात शिशु को भी जो भी आवश्यक पोषक तत्व और जो भी रोग प्रतिरोधक जो टीका रेवे है उसको जरूर लगवा के और बच्चा की जो है काया निरोगी रह सके। तो इस प्रकार से आप मातृ और शिशु का स्वास्थ्य को अच्छे से ध्यान रख पाए।

और जो नई पीढ़ी को जो भविष्य है उनको निर्माण भी अच्छे से हो पावे है, क्योंकि कहवे है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करे है। तो भिड़ाओ या थी बात मात्र और शिशु स्वास्थ्य का बारे में, आगे भिड़ाओ को फिर से सुनाऊंगा यो प्यारो सो लोकगीत।

0: अभी अपन ने यो गीत सुने दीपाली और अली की आवाज में। आगे अन्य जानकारी में आपा बात करूंगा बच्चों को मोबाइल से दूर रखा। तो बिना आज का समय में विज्ञान ने जो काम असंभव थो उनको भी संभव बना के छोड़ दियो है, और वैज्ञानिक क्रांति ने जो है दुनिया को बदल के रख दियो है। इन सब में यदि बात करा तो संचार का क्षेत्र में जो सबसे बड़ी क्रांति हुई है वह है मोबाइल की। ये मोबाइल का उपयोग दिन पे दिन जो बढ़ते चले जा रहे हो और जो नई नई तकनीकी में विकसित होके आ रही है, जिका कहवे है ना कि मोबाइल वरदान भी है तो अभिशाप भी है। फायदों तो है ही, लेकिन कई जगह भिड़ाओ को नुकसान भी है। और यदि यो नुकसान यदि आप बच्चान का संदर्भ में देखा तो वास्तव में घर घर में इस समय पे जो छोटा बच्चा है या किशोर अवस्था का है या युवा अवस्था का है, तो वे सभी मोबाइल से लत से ऐसा ग्रसित हो रहा है कि यह भी एक प्रकार की बीमारी ही है। घर में इस समय सभी के पास जो है मोबाइल रहे है, तो बच्चा भी उनको देखे है और उनसे ज्यादा मतलब आपा लोगा से ज्यादा तो बच्चान को ध्यान मोबाइल पे रेवे है, और वे उनका ऐसा शिकार हो रहा है कि उनको जो है खेलवा कूदवा वे एकाग्र चित्त हो गया है। यानी कि जो बाहर का लोगा से जो मिलनो जुलनो है वो कम हो गयो है, खेलनो कूदनो बंद हो गयो है, तो जिससे कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास में भी कमी आई है। बच्चा की जो लंबाई है वे भी कम हो गई है, क्योंकि जब बच्चा खेलेगा ही नहीं तो एक जगह बैठे बैठे वे जो है बस सिर्फ मोबाइल ही देखे। और मोबाइल में अब जो सबसे बुरी लत जो बच्चान को पड़ी है वह है गेम, मतलब खेल खेलवा की, मोबाइल में खेल खेलवो। तो असा में असा खेल रेवे है मोबाइल में जी में बच्चान की जान भी, कई बच्चा अपनी जान गवा देवे है। इलिए बच्चान को मोबाइल से दूर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की जो जीवन शैली है सबसे पहले सुधार आपा खुद को करना पड़ेगा कि बच्चान के साथ आपा ज्यादा से ज्यादा समय बितानो चाहिए। ये नहीं कि आपा काम काजी भी हाँ उसके बाद आपा खुद भी मोबाइल लेके बैठ गया और आपा को भी लग रहे हो कि बच्चों खानो नहीं खा रहे हो, हाँ मोबाइल देख के खा लेगो, तो इसे ही उसकी आदत खराब हो रही है। उसे बातचीत करा, छोटी छोटी जो भी जानकारी है वो उसे पूछा, स्कूल में काई हुई हो काई नहीं हुई हो, बाहर खेल लियो, तो ये सारी बात है जब बच्चों अपन को बताएगो उत्सुकता के साथ तो उनको भी अपनी बात बतावा में मजा आएगा, और आपा भी उनकी बात सुना उनको समाधान करा तो उनको भी बढ़िया लगेगा। तो जो मोबाइल है उसे वो अपने आप ही दूर हो तो चले जाएगा। तो भिड़ा वो मैं मोबाइल की जो लत है उनको आपा धीरे धीरे ही सुधार कर सका हाँ। और जो भी अभी जो नया बच्चा है बिल्कुल, तो उनको तो आपा बिल्कुल ही दूर रखा, उनको पूरा समय देवा। क्योंकि और आज का समय में कई हो रहे हो कि बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई जिसे अपन कह रहे हो, तो वो जो है सबसे ज्यादा वो जो टाइम है वो को देखवा में बिता दे, जिससे उनकी आंखियां भी प्रभावित हो रही है, उनकी आंखियां में दर्द हो गए है, चश्मा लग रहा है, तो इसे उनको थकान भी हो जाए एक जगह बैठे बैठे। और यूं तो कहिए कि जो कक्षा को जो कमरों रह वे है या जहाँ वे पढ़े हैं तो वहां पर शिक्षक भी उन पर निगाह रखे हैं, साथ ही यदि किताबा से पढ़े तो किताबा को भी पन्ना उलट पुलट करे, हाथ वो हिलावे है करे है, तो ऐसा है। और जब वो मोबाइल देखे है तो वो मोबाइल देखता देखता उनको ध्यान भटक जावे है, दूसरी चीजा देखवा लग जाए। तो समय से पहले जो बच्चा है वे परिपक्व हो गया है, उनको वे जानकारियां प्राप्त हो गई है जो उनको एक उम्र पर मिलनी चाहिए। तो बिना ऐसी बात है कि ये सब एक व्यक्ति का उसे नहीं हो पाएगा, हम सब की जागरूकता और सतर्कता से ही ये काम बन सके है। जहां तक हो सके आपा मोबाइल से बच्चान को दूर रहना, आपस में आपा सभी बातचीत करा, और जो जरूरी काम है वो कर सका, इसके लिए मोबाइल है बात सही है, लेकिन इसका शिकार या इसकी लत में नहीं लगा, तभी जाके आपा आगे आवा वाली पीढ़ी को बचा बचा सकांगा। तो भैया या थी मोबाइल का शिकंजा सु बच सकवा वाली बात।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

तो भले आओ। घड़ी की टिकटिकी इजाजत कौन ही दे रही है कि आप कार्यक्रम को आगे जारी रख पावा। तो देव था की बहन रीना जोशी को इजाजत। राम राम साहब।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी सवाईमाधोपुर का रणथंबोर चैनल है, FM 101.5 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके पश्चात जिले की चिट्ठी और 6:50 पर सुनेंगे

मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भी भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल के मंत्र के साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन के कलेवर में बदलाव का आह्वान किया। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, दो सीटें भाजपा और एक कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में। और राज्य में कल से 15 जुलाई तक शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे।

0: समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भी भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। वे आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में बोल रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार देने को सरकार की प्राथमिकता बताया गया। साथ ही महिला नेतृत्व आधारित विकास, उद्यमिता, कृषि और स्टार्टअप पर भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी शिरकत की। श्री शर्मा ने राजस्थान के विकास के विजन, उपलब्धियों और भावी कार्य योजनाओं को पेश किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण, रेल तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर आकाशवाणी परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमांत क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने इस समय इन संस्थानों में परिवर्तन पर भी जोर दिया। श्री वैष्णव ने डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल मंत्र के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाने की बात की।
1: नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने रेल विकास के लिए पुरजोर प्रयास किए हैं।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, पर जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: इसके बाद श्री वैष्णव ने एमएनआईटी में सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और एआई लैब विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद कर नवाचार, तकनीक और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में भी शिरकत की। उन्होंने प्रदेश भाजपा मुख्यालय से प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले का कल जयपुर आने का कार्यक्रम है। वे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। श्री अठावले वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जन सशक्तिकरण सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले की गहन जानकारी लेने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज बीकानेर पहुंचे। श्री खींवसर ने चिकित्सकों और अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल में भर्ती महिलाओं के

0: स्वास्थ्य की जानकारी ली, साथ ही प्रभावित प्रसूताओं के परिजनों से बात कर बेहतर इलाज करवाने का आश्वासन दिया। चिकित्सा मंत्री ने मीडिया से कहा कि मामले की विस्तृत जांच करवाई जा रही है, रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज अस्पताल परिसर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। उन्होंने घटना की उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने आज जयपुर में जैविक उर्वरक निर्माण और भंडारण संयंत्र में हो रही गंभीर गड़बड़ियों का खुलासा किया। श्री मीणा अपनी टीम के साथ कानोता स्थित एक फैक्ट्री का जायजा लेने पहुंचे, जहां निर्धारित मानकों के विपरीत बायो फर्टिलाइजर्स बनाए जा रहे थे। कृषि मंत्री ने इन उर्वरकों की पैकेजिंग और लेबल पर अंकित जानकारियों को भ्रामक बताया। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कच्चे माल का उचित भंडारण और रखरखाव नहीं किया जा रहा था। मीडिया से बातचीत में श्री मीणा ने बताया कि किसानों के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नकली खाद और बीज बेचने वालों के खिलाफ प्रदेश भर में अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: ये जो यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बायो एजेंट, बायो स्टिमुलेंट, बायो फर्टिलाइजर, सीवीड एक्सट्रैक्ट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये फर्जी बनाया जा रहा है और इस फर्जी प्रोडक्ट को ये किसानों को महंगे दामों में बेचते हैं। बुरी तरह से बेरहमी से किसानों का लूटने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। खरीद के उसकी उपज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसकी भूमि खराब हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी, बेकार हो जाएगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राजस्थान से राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2026 के लिए तीनों प्रत्याशियों को विधानसभा में आज निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। राज्यसभा निर्वाचन के रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉ. सतीश पूनिया, डॉ. अलका सिंह और कांग्रेस उम्मीदवार नीरज डांगी को चुने जाने की घोषणा की। उन्होंने तीनों प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिए। राज्य में कल से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये शिविर 15 जुलाई तक चलेंगे। शहरी शिविरों के दौरान साफ सफाई, सड़क मरम्मत, फ्री होल्ड पट्टे जारी करने सहित अन्य फ्लैगशिप जनहित योजनाओं के लिए आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि पिछले सालों की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर राज्य सरकार की ओर से ब्याज में 100% छूट दी जाएगी।
2: नगर निकायों में कैंप लगने हैं, उन कैंपों में आम आदमी को जो भी पट्टा लेना है, विभाजन करवाना है या दूसरे कोई काम है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है, ऑफलाइन आवेदन करेगा, तो हमने निकायों पर निर्देश किया कि वहाँ आपकी व्यवस्था रखें और उचित शुल्क पर उसका आवेदन ऑनलाइन हो, इससे सुनिश्चित अभियान की अवधि के दौरान निश्चित रूप से निस्तारण हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे।
0: ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से नागरिकों को 22 प्रमुख विभागों की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इनमें खातों के विभाजन, नामांतरण और रास्ते संबंधी प्रकरण तथा अन्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। साथ ही पेयजल, बिजली, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। प्रदेश में मॉनसून के दौरान संभावित बाढ़, जलभराव, अतिवृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए व्यापक और समन्वित तैयारियों पर जोर दिया गया है। आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने आज जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि जन सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने आपदा प्रबंधन में पूर्व तैयारी, समयबद्ध चेतावनी और प्रभावी समन्वय पर बल दिया। डॉ. मीणा ने 15 जून से राज्य और जिला स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्षों को सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मॉनसून की नियमित निगरानी के लिए वेदर वॉच ग्रुप का भी गठन किया गया है। साथ ही डॉ. मीणा ने सभी बांधों, जलाशयों और एनीकटों की मरम्मत तथा रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस के दौर के बीच आज से कुछ स्थानों पर मौसम में बदलाव की उम्मीद है। राज्य में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कई हिस्सों में

देखने को मिल सकता है। 12 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट बताया गया है। वहीं कुछ क्षेत्रों में ओले गिरने के भी आसार हैं। बदले मौसमी तंत्र का असर 14 जून तक बना रह सकता है। अंधड़ और बरसात की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस बीच कई शहरों में अधिकतम तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच मापा गया। तेज धूप के कारण तापमान में बढ़ोतरी हुई है। जयपुर में एक निर्माणाधीन इमारत में मिट्टी ढहने से 3 महिला श्रमिकों की मृत्यु हो गई। घटना वैशाली नगर इलाके में हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि गृहिणियां केवल घरेलू कामकाज तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे परिवारों और भावी पीढ़ियों के निर्माण में अहम योगदान देती हैं। अदालत ने कहा है कि घर का प्रबंधन करने वाली महिलाओं को केवल गृहिणी कहकर संबोधित करना समाज में उनके योगदान को कम आंकना है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटीश्वर सिंह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि घर की देखभाल और प्रबंधन का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के दौर में भी भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल के मंत्र के साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन के कलेवर में बदलाव का आह्वान किया। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित, 2 सीटें भाजपा और 1 कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में। और राज्य में कल से 15 जुलाई तक शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सवाई माधोपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सतीश वर्मा ने तैयार किया है। जिले में 21 जून को आयोजित होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन के तहत विभिन्न गतिविधियां और व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक, ग्राम पंचायत, निजी और राजकीय शिक्षण संस्थानों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, कारागृहों, पुलिस थानों, पर्यटन स्थलों, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर योग आयोजन किए जाने, योग संयम पोर्टल पर पंजीकरण कराने तथा योग के उपरांत फोटो अपलोड करने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जिले के गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन को भी अब जंक्शन का दर्जा मिल गया है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर स्थित गंगापुर सिटी से दौसा मार्ग पर रेल यातायात सुचारू होने के बाद कोटा रेल मंडल प्रबंधन की ओर से ये घोषणा की गई। जिले में इन दिनों जनगणना का कार्य प्रगति पर है। प्रगणक घर घर जाकर लोगों से 33 प्रश्नों को पूछकर एचएलओ ऐप पर दर्ज कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे लोगों ने स्वगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भी ऑनलाइन दर्ज की। 25 मई को गंगा दशमी से शुरू हुए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में लोगों का भारी उत्साह देखने को मिला। अभियान का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किया। अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रभात फेरी, कलश यात्राएं, पीपल पूजन, जल पूजन, पौधरोपण, संकल्प, शपथ, श्रमदान और मैत्री फुटबॉल मैच जैसी अनेक गतिविधियां आयोजित की गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर साइकिल रैली के साथ अभियान का समापन हुआ और इसी के साथ हरियालो राजस्थान अभियान का आगाज हुआ। अभियान के तहत इस मॉनसून सीजन में सघन वृक्षारोपण किया जाना है। इसके लिए लोगों को नर्सरियों से पौधे वितरित किए जा रहे हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से बीते दिनों खुशखबरी मिली है। बाघिन T124 रिद्धि दो शावकों के साथ नजर आई है। नए शावक देखे जाने के बाद वन्य जीव प्रेमियों में और पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर देखी गई। वहीं जिले के पालीघाट स्थित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में दुर्लभतम घड़ियाल प्रजाति के नन्हे बच्चे अंडों से बाहर निकल रहे हैं। पालीघाट क्षेत्र में अब तक करीब 100 घड़ियाल हैचलिंग्स का सुरक्षित जन्म हुआ है। चंबल क्षेत्र में वन विभाग के प्रयासों की ये एक बहुत बड़ी सफलता है। जिले में इन दिनों मौसम का मिला जुला असर है। कभी तेज गर्मी तो कभी पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की और मध्यम बरसात का दौर चला।

0: इसके साथ ही ओलावृष्टि भी हुई। हालांकि इससे भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन एक बार फिर से गर्मी ने जोर पकड़ लिया है। आगामी मॉनसून के मद्देनजर डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल के सदस्यों ने जिले के विभिन्न बांधों का निरीक्षण कर यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाओं को जांचा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बीच परिवहन विभाग और पुलिस की ओर से यातायात और सड़क सुरक्षा नियम को तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत वाहनों के अवैध मॉडिफिकेशन, फर्जी नंबर प्लेट, लाल नीली बत्ती, काली फिल्म, प्रेशर हॉर्न, सायरन हूटर, नंबर प्लेटों के अनधिकृत शब्द चिन्ह और स्टिकर लगाकर पंजीयन चिन्ह की दृश्यता को प्रभावित करने, नियम विरुद्ध नंबर प्लेटों वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। ग्राम कृषि महोत्सव 2026 के तहत करमोदा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में उर्वरकों के संतुलित उपयोग विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृषि विभाग की ओर से आत्मा योजना के तहत फूल उत्कृष्टता केंद्र में पर्यावरण, जल संरक्षण और प्राकृतिक खेती विषय पर कृषि संगोष्ठी और कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में किसानों को प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी देकर पर्यावरण संरक्षण में सहभागिता का आह्वान किया गया। जिले में इन दिनों राजस्व विभाग की ओर से रास्ता खोलो अभियान के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में विभागीय अधिकारी और पुलिस की मौजूदगी में गैर मुमकिन रास्तों पर बरसों से किए गए अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। अभियान के तहत जिले भर में अनेक स्थान पर सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण हटवाकर रास्ते खुलवाए गए हैं। सवाईमाधोपुर जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो, दुनिया में उथल पुथल रा मौजूदा दौर में आई भारत खुद माथे भरोसा और मजबूत इरादा सागे आगे बढ़ रियो है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल रा मंत्र सागे आकाशवाणी और दूरदर्शन रा कलेवर माए बदलाव बाबत कहो। जैसलमेर रा रामगढ़ माए 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर रो जयपुर रो उद्घाटन कीनो। प्रदेश हूँ राज्यसभा चुनाव माए 3 ही उम्मीदवार निर्विरोध चुनीचिया, 2 सीटा भाजपा और 1 कांग्रेस रा खाता माए। राज्य में काल 15 जुलाई ताई शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर लगाया जावेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि दुनिया में अनिश्चितता रा मौजूदा दौर में आई भारत खुद माथे भरोसा और मजबूत इरादा सागे आगे बढ़ रियो है। वे आज नई दिल्ली में राखी जी नीति आयोग री गवर्निंग काउंसिल री मीटिंग में बोल रहा है। श्री मोदी कहो कि विकसित भारत बनावन ओड़ी बढ़ रहा देश में केंद्र और राज्य सरकारा ने भेली जिम्मेदारी और बढ़ गई है। वे कहो कि राज्य बीच एक दूजा री मदद, बातचीत और विचारान और लेन देन भी होनु चाहिए। मीटिंग में चोखी भनाई लिखाई, कौशल विकास और नौजवाना ने नौकरी धंधारा मौका मुहैया करावन मत है सरकार रो खास ध्यान भेवन री बात कही जी। ऐसा गई महिलावारी अगुवाई माए विकास, उद्यमिता, खेतीबाड़ी और स्टार्टअप रवारा माए चर्चा करी जी। मीटिंग माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजस्थान रा विकास री सोच, उपलब्धियां और कार्य योजना मारी जानकारी दीनी। सूचना और प्रसारण, रेल और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर में आकाशवाणी रा परिसर जैसलमेर जिला रा रामगढ़ में 20 किलोवाट बूता वाला FM रेडियो ट्रांसमीटर रो वर्चुअल तरीका उद्घाटन कीनो। इस मौके श्री वैष्णव सामरिक अवसंरचना माथे ध्यान देता थका आकाशवाणी और दूरदर्शन सरहदी हलका में संचार व्यवस्था मजबूत करण सारू कहो। वे डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल रा मंत्र सागे आकाशवाणी और दूरदर्शन रा कलेवर माए बदलाव बाबत कहो।
2: नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल

0: कल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए, अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी, पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
1: केंद्रीय मंत्री प्रदेश में न्यारा न्यारा रेलवे स्टेशन ने और बेहतर बनावन रा काम रोई जिक्र कीनो। वे कहो कि एनडीए सरकार रेलां रा विकास सारू हर संभव कोशिश कर रही है।
0: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, तो जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते हैं, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
1: कार्यक्रम में राज्य ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जयपुरी सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा, प्रसार भारती रा अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी रा महानिदेशक राजीव कुमार जैन समेत कई आला अहलकारी मौजूद रहा। ये पाछे श्री वैष्णव मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रो दौरो कर वठे सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी और एआई लैब विकसित करण रो ऐलान कीनो। वे विद्यार्थियों सागे बातचीत कर नवाचार, तकनीक और स्टार्टअप ने बढ़ावो देवन माथे जोर तीनो। केंद्रीय मंत्री जयपुर रा कृषि अनुसंधान केंद्र में राखी जिया विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शामिल भया। वे प्रदेश भाजपा मुख्यालय में खबर नवीसा सा गई बातचीत कीनी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले काल जयपुर पधारेला। वे नशा मुक्त भारत अभियान रातेत रख्या जावन वाला कार्यक्रम में खास पावना रा तौरों शिरकत करेला। मारो वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग जन सशक्तिकरण सम्मान समारोह में शामिल भेवन रो कार्यक्रम है। बीकानेर रा पीबीएम अस्पताल में जापा वाली लुगाइया री तबियत खराब हेवन रा मामला री जानकारी लेवन सारू चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज बीकानेर में डॉक्टरों और अहलकारा सागे मीटिंग कीनी और हालात रो जायजो लीनो। वे अस्पताल में भर्ती महिलाओं री साता पूछी। मंत्री जापा वाली लुगाइया रा परिवार वाला सागे बातचीत कर वाने बेहतर इलाज रो भरोसो दिलायो। चिकित्सा मंत्री खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका कहो कि मामला री विगतवार जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट मिलिया पाछे जरूरी कार्रवाई करी जावेला। ये मामला न लेर कांग्रेस रा कार्यकर्ता आज पीबीएम अस्पताल परिसर में सरकार रे खिलाफ प्रदर्शन कीनो और नारा लगाया। वे वाकया री आला दर्जा री जांच करावन और दोषियों रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई री मांग कीनी। इन दौरान पुलिस ने हल्को लाठीचार्ज करनो पड़ियो। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज जयपुर में जैविक खाद बनावन रा कारखाना में कथित गड़बड़ियां रो खुलासो कीनो। वे कानोता रा एक कारखाना में तय मानका रा इतर जैविक खाद बनावन री ठाकीनी। कृषि मंत्री इन खाद रा कट्टा और लेबल माथे मंडोड़ी जानकारियां ने भरमावन वाली बताई। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका डॉक्टर मीणा बतायो कि काश्तकारा सागे किणी भांतरी दगाबाजी बर्दाश्त नहीं करी जावेला। वे कहो कि नकली खाद बीज बेचण वाला रे खिलाफ आखा राज्य में अभियान चलायो जा रियो है और दोषी मिलन वाला रे खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जावेला।
2: ये जो यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बायो एजेंट, बायो स्टिमुलेंट, बायो फर्टिलाइजर, सीवीड एक्सट्रैक्ट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये फर्जी बनाया जा रहा है और इस फर्जी प्रोडक्ट को ये किसानों को महंगे दामों में बेचते हैं। बुरी तरह से बेरहमी किसानों का लूटने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। खरीद के उसकी उपज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसकी भूमि खराब हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी, बेकार हो जाएगी।
1: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रदेश और राज्यसभा रे तीन सीटां रा द्विवार्षिक चुनाव सारू तीन ही उम्मीदवार निर्विरोध चुनी चिया है। राज्यसभा चुनाव रा रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा, भारतीय जनता पार्टी रा डॉक्टर सतीश पूनिया, डॉक्टर अलका सिंह और कांग्रेस रा नीरज डांगी रे चुनिया जावन रो ऐलान कीनो और वाना चुनिया जावन रा सर्टिफिकेट तीना। राज्य में काल 15 जुलाई तक

0: शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर लगाया जावेला। शहरी शिविरा माए साफ सफाई, सड़कानी मरम्मत और फ्री होल्ड पट्टा जारी करण समेत जनतारा भलारी न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां रो फायदो लेवण सारू पात्र लोगों अर्जियां ली जावेला। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा बतायो कि लारला बरसा री लीज री बाकियात री रकम एक मुश्त जमा करावण पर ब्याज माए पूरी छूट दी जावेला।
1: नगर निकायों में कैंप लगने, उन कैंपों में आम आदमी को जो भी पट्टा लेना है, विभाजन करवाना है या दूसरे कोई काम है, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है, ऑफलाइन आवेदन करेगा, तो हमने निकायों को निर्देश किया है कि वहाँ की व्यवस्था रखें और उचित शुल्क पर उसका आवेदन ऑनलाइन हो, इससे सुनिश्चित अभियान की अवधि के दौरान निश्चित रूप से निस्तारण हो, इस बात को सुनिश्चित करेंगे।
0: आपदा प्रबंधन सहायता और नागरिक सुरक्षा मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज जयपुर में अहलकारा सागर मीटिंग कर जरूरी हुक्म दीना। वह राज्य में चौमासारी ऋत में बाढ़, पानी भरण, घनी बिरखा वेवण और दूजी कुदरती आपदाओं रो सामो करण सारू मिलर तैयारियां करण माथे जोर दीनो। डॉक्टर मीणा 15 जून नु राज्य और जिला स्तर माथे आपदा नियंत्रण कक्ष चालू करण रा हुक्म दीना। आपदा प्रबंधन मंत्री कहो कि चौमासा माए हालात माथे लगातार निगरानी राखण सारू वेदर वॉच ग्रुप बनाई चियो है। वह सगला बंधा और एनिकटा ने मरम्मत और रख रखाव ते करण रा हुक्म ही दीना। अरब मौसम प्रदेश माए पड़ रही जोरदार गर्मी और उमस बीचे आज कठे कठे मौसम माए बदलाव रा आसार है। 12 जिला माए आंधी बारिश सारू चेताई चियो है, जितका कठे कठे ओला पड़वारी संभावना है। 14 जून ताई अंधड़ और बरसात री संभावना ने ध्यान रखता थका जनता ने सावचेत रहवण री राय दी रीची है। इबीचे आज कई ठोणा पारो 40-46 डिग्री सेल्सियस बीचे दर्ज करी चियो। केंद्र सरकार सुरक्षा प्रणालियां और माली बुनियादी ढांचा मत है साइबर अपराधा रा बद्धता खतरा सारू चेतायो है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र रिओर जारी चेतावनी रे मुजब साइबर धोखाधड़ी सारू डीप फेक वीडियो काम लिया जा रहा है, जहां नजरिए साइबर ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जॉब पोर्टल, डेंटिंग प्लेटफॉर्म और फोन नजरिए ठगी करे है। केंद्र सरकार एथेनॉल भेल और बनाई जा पेट्रोल माथा एक्साइज ड्यूटी माफ करती नहीं है। वित्त मंत्रालय का नियम जारी अधिसूचना रे मुजब 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल भेड़ो करी जा पेट्रोल माथा एक्साइज ड्यूटी नहीं लागेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून न विचार बतावेला। आ इन कार्यक्रम री 135वीं कड़ी भेला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800-117-800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ये विचार भेजा जा सके है। आखिर माए खास समाचार एक कर फेर सुन ली रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो दुनिया माए उथल पुथल रा मौजूदा दौर माए भारत खुद माथे भरोसा और मजबूत इरादा सागे आगे बढ़ रियो है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव डिजिटल फर्स्ट हाइपर लोकल रा मंत्र सागे आकाशवाणी और दूरदर्शन रा कलेवर माए बदलाव बाबत कहो। जैसलमेर रा रामगढ़ माए 20 kW FM ट्रांसमीटर रो जयपुर उद्घाटन कीनो। प्रदेश राज्यसभा चुनाव में 3 ही उम्मीदवार निर्विरोध चुनी चिया, 2 सीटा भाजपा और 1 कांग्रेस रा खाता माए। और राज्य में काल 15 जुलाई ताई शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर लगाया जावेला। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
2: FM 101.5 MHz पर ये आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है। डीजी प्रस्तुत है गीतों और गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हरिहरन की गाई इस गजल के साथ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: और लीजिए कार्यक्रम के अंत में सुनिए ध्वनि भानुशाली की आवाज में ये नगमा।

ध्वनि भानुशाली और अश किंग के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है, FM 101.5 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित विशेष कार्यक्रम केंद्र सरकार के 12 वर्ष।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर।
1: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है, 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक

0: बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये,
1: नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं, एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी, अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है, बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ, और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है, क्या किसान वाकई में खुश हैं? क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद आपका।
1: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूं, लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूं। गर्मी बहुत है, किसान खुश है?
2: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है, और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूं। मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनको बहुत बहुत बधाई।
1: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन, ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा है, सरकार में एक अहम पद पर हैं आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
2: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मवत सर्वभूतेषु। और ये भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा। अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेकर बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। पशु नदियों, पर्वत, पहाड़ों के लिए भी और ग्रह नक्षत्र, तारों के लिए भी, चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है। और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
1: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं, अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
2: सबके साथ ही, मैं अकेला ऐसा नहीं हूं, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा न चुनाव की बात, न मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। यही तो अपनापन है।
1: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज

0: पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
1: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
0: देखिए, एक तो संकट है
1: जिसको इतिहास याद रखेगा,
0: 25 करोड़, देखिए इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो, कौन सोचता था कि यह दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी, कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है, जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब किसान महिला नौजवान सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? एलओपी तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल भी नहीं चलेगा।
0: बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
0: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पुकाओ पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
1: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है?
0: हम बच्चों के साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई, दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। सीबीआई को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
1: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं?
0: यह है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की भरने की कोशिश की गई।
1: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
0: सवाल ही पैदा नहीं होता, बच्चे देश का भविष्य है, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
1: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
1: नहीं तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन?
0: हकीकत तो यही जनता जान, देखिए हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, एनडीए शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
1: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
0: देखो सवाल ही पैदा नहीं होता, वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
1: नहीं लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान।

0: अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है।
1: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूँ
0: सर, लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
1: देखिए, कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इम्पोर्ट करते थे। उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी। कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम, राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
0: शिवराज जी, आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगहों पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या LPG के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
1: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है, और जनता ये सच जानती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों, और अपील की उन लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूं तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, अब एक के बाद एक कदम के बारे में सोची। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे, कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले। अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूं। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
0: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी, आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
1: तत्काल ही देखिए, मैं तो उनकी हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे। और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे, प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहे। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
0: अच्छा,
1: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता है, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूं, और मिलकर उन

कल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

0: ये आकाशवाणी है कि विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
1: छब्बीस मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है पूरी आधुनिकता के साथ में, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय। तो खास मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में।
2: धन्यवाद।
1: भारत किस तरीके से जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनः जागरण हो रहा है। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाहन गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, पर इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाए और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाए, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए। बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहां से भारत के राज्य का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की जिसपे हम काम कर रहे हैं, वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज्यादा बेहतर है, उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सबको अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
1: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहां किसी भी देश का हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं। और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने अभी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती

0: क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
1: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में, जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहां पे नालंदा विहार विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और पोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी उसके ऊपर वहां पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पर रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
0: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेनजी की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें, अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है, या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
1: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेजों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए, जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहां पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के, नेताजी के नाम से द्वीप हुआ, जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल है या जो पुरातत्व स्थल है उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एम्यूनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और खासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर है, और वहाँ पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ एआर वीआर एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहाँ पे जो हमारे यूथ है, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है, ये लोथल 5000 वर्ष पुरानी साइट है। 5000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉकयार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयरहाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी, तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसकी उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो ज्ञान का ज्ञान की प्राप्ति होगी, उससे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
0: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जेनजीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी और अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम बच्चे थे, और आज जब आप इस दौर में है संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर, जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खासकर जब भारत की वो पुरानी धरोहर है, वो मूर्तियां, वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं तो कैसा महसूस होता है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
1: देखिए, मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब

0: सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है, बट ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, इसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है, बल्कि भारत के सभी मिशंस, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशंस, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है, उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूं कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में पूर्व में भी जाता रहा हूं और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशन में जाता हूं, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहां भारत कोई स्टैंड लेता है तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
1: सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेन जी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था महिलाओं के लिए सामने आ रहा है, वही संस्कृति आज हमारे दीपावली का त्योहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज, उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है, और इसको हम सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज को एस्टैब्लिश करें, बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस और हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
1: तो हम बात कर रहे थे अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: श्रोतम, ये आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंबोर चैनल है, FM 101.5 MHz पर, और लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी के गाए फिल्म चांदनी के इस नगमे से। जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है शिव हरि ने।
4: चांदनी

और इसी कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए फिल्म दर्द से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। गीत के बोल लिखे हैं नक्श लियालपुरी ने और धुन बनाई है खयाम ने।

और लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में सुनिए हाथी मेरे साथी फिल्म का ये नगमा। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी ने, गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है, FM 101.5 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं। अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाला मारा सगला किसान बेड़ भाई को थाका हरीश भाई को घणो घणो राम राम। किसान भाइयों, अपना ई कार्यक्रम का प्रायोजक छे कृषि सहकारिता एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली। आज अपने कार्यक्रम के मायने आप चर्चा करेंगे गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना का महत्व के बारे में और आज की जानकारी में जानेगा कि अपना संतुलित पशु आहार को का महत्व हो जाए अपना पशु का और एक भेंटवार्ता से अपनी को जो अपना विषय है पशुओं में होने वाले प्रमुख रोग बीमारियां एवं रोकथाम और देखो मनोरंजन भी जरूरत है तो मनोरंजन का सुनेगा प्यारा सा लोकगीत। तो आप कार्यक्रम को आगे बढ़ावा उस पहले सुनाए जरूरी संदेश।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: किसान भाइयों, यह सुने आपने प्यारा सो लोकगीत और आप कार्यक्रम को आगे बढ़ावा और चर्चा करा कि आपने जो गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना को महत्व के बारे में। तो किसान भाइयों, ई योजना के तहत आपने जो राज्य सरकार छे उन्हें किसानों के कारण केचवा खाद यूनिट बनावा के कारण जो इसकी लागत छे उनको 50% या अधिकतम 10,000 रूपया तक को अनुदान आपको देवा को प्रावधान छे। किसान भाइयों, ई योजना को जो मुख्य उद्देश्य छे वह यही छे कि अपना जो किसान भाई छे वे जो रासायनिक अपना खादन के ऊपर देखो निर्भर रहे हो छे, तो वहां के ऊपर वे निर्भर कौन रहे हुए, क्योंकि जो अपना रासायनिक खाद है एक तो देखो महंगी खाद अपन को खरीदा चाह और ये अपना जो खेतन में डाला था तो अपने जो खेत की मिट्टी से उनको भी खराब कर दे छे और क्योंकि अपने उपजाऊ क्षमता भी कम होती जाओ और जो मिट्टी से उनकी उर्वरकता कम होती जाओ छे और तो किसान भाई अपने मिट्टी भी देखो बंजर हो जाओ छे। ई कारण आप चाहिए कि आप रासायनिक जो खाद से वहां के ऊपर निर्भर था छोड़ आपा जो जैविक खाद से वहां के ऊपर निर्भर रहे जिसो आपने जो मिट्टी से उनकी उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी और अपनी उपज भी देखो धीरे धीरे बढ़ेगी और जो अपना को पैदावार मिलेगी ना वह एक तरह से शुद्ध होगी, उसका मायने कोई भी हानिकारक रासायनिक तत्व कौन होगा। तो किसान भाइयों, ई योजना का मायने आपको चाहिए कि आप केचवा खाद को निर्माण करा। ई योजना को लाभ लेबा का आप जो वर्मी कंपोस्ट जो यूनिट बनाऊंगा उनका यदि आप आकार की बात करा तो कारण आप देखो 20 फीट लंबाई में और 3 फीट चौड़ाई में और 2.5 फीट आप गहराई को एक मतलब यूनिट बनावा और जो एक में बनावा में आपको बनावा का जो लागत आओगी उनको 50% सरकार के द्वारा आपको अनुदान दिया जाओ या अधिकतम सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाओ वहां 10,000 रूपया प्रति यूनिट। तो इस तरह से किसान भाई आप एक बेड बना अपना जो जैविक खाद से केचवा खाद से उनको अपना निर्माण करेगा तो उसे देखो आपको एक पंथ दो काज दो फायदा है, एक तो आपको देखो सरकार द्वारा सहायता मिल रही है, दूसरा आप एक खाद को बना अपने खेतन का मायने डालेंगा तो अपने खेत की जो माटी है और अपनी जो उपज है वह भी देखो बढ़िया होगी और खेत की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी और आप देखो रासायनिक जो आप खाद से वहां पर निर्भर है वह भी खत्म होगी। किसान भाई जो एक कारण अपने जो अपना प्रत्येक ब्लॉक से अपने गांव में शहर में उसमें सुखा 50 किसानों को चयन हो चे आवेदन आप करवा कारण एक योजना को लाभ लेवा कारण अपने पास एक तो आधार कार्ड होने चाहिए, जन आधार कार्ड होने चाहिए, बैंक की पासबुक होनी चाहिए जो चालू हो गए, खेत की जमाबंदी और अपने पास पशुधन को प्रमाण पत्र होनी चाहिए और आवेदन आप देखो ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा स्वयं भी कर सका चा या किसान भाई ई मित्र पर जार अपने जो राज किसान साथी पोर्टल योजना पर अपना ई मित्र सु आवेदन करा सके चे। तो किसान भाइयों, ई योजना को लाभ आपको जरूर लेनी चाहिए, पता अपनी चालती होगी पर सुनाए को जरूरी संदेश।

0: किशन भाई या सुनियो अपन जरूर संदेश और अब आप कार्यक्रम को आगे बढ़ावा और आज की जानकारी के महीना पर जाना कि अपना जो संतुलित पशु आहार का महत्व के बारे में किशन भाई संतुलित जो पशु आहार चे वह आहार यह हो चे कि उनका महीने जो भोजन का सभी जो संतुलित पोषक तत्व हो जैसे कि प्रोटीन विटामिन वसा कार्बोहाइड्रेट सारी चीजा के अंदर होनी चाहिए और ये कोई आप संतुलित पशु आहार कह सकता चाह किसान भाई अपना जो पशुओं को यदि आप संतुलित पोषक जो पशु आहार से वह खिलाऊंगा तो अपना पशु स्वस्थ रहेगा वहां की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता से यानी कि बीमारी से लड़वा की जो क्षमता से वह भी बढ़ेगी उनकी जो पाचन क्रिया से वह भी सही रहेगी और सबसे बड़ा फायदा किसान भाई देखो संतुलित पोषक आहार को कि अपना जो पशु चे या मैं कहें कि जो बाजपन की समस्या रेव चे वह कोनानी क्योंकि उनकी प्रजनन क्षमता इशू बढ़े चे और अपना पशु कहें समय पर गर्भधारण कर ले जाए तो किशन भाई संतुलित पशु आहार के मायने जो मुख्य घटक चे आपको देखो कहीं कहीं काम में लेनी चाहिए तो सबसे बड़ो तो संतुलित पशु आहार यही मान्य चे कि हरियो चारो अपना को अपना पशु को जरूर खिलानी चाहिए क्योंकि जो हरिया चारा का मायने सभी प्रकार का विटामिन प्रोटीन और फाइबर जो सब चीज मुख्य तत्व हो जाए वे खिलाने चाहिए आपको एक कारण आप देखो ज्वार चे बाजरा चे रजको काचनी जई वर्षीम जो भी अपने पास हो कि आप बुआई कर दे और जो हरियो चारो यहाँ का सबका आप खिलावा और इको आप जो 200 संतुलित पोषक तत्व चे उनको मुख्य घटक ही अच्छा अपना की आप जो सूखो चारो चे अपने पास जैसे हमारे गेहूं को खाक लो चे या अपने जो बाजरा की जो कड़बी चे उनकी देखो कुट्टी करा ले तो एको कहीं एक मायने कहीं चाहिए सबसे बढ़िया तो यह कि आप जो अपना खाक ला के मायने देखो आप जो हरियो चारो चे उनकी कुट्टी कर और एक मायने मिला दिया चाहे सो खाकलो मिला अपना आटो मिला देवा तो इस अपने पशु देखो बढ़िया अच्छी तरह से खाओगो और वह देखो बढ़िया पानी भी पियोगो और बढ़िया स्वस्थ भी रहोगो और जो अपना कहीं चाहिए कि इस पाचन क्रिया से वह भी सही रहेगी भाटा के मायने किशन भाई देखो आप अनाज का मायना आप देखो मक्का ले लिया जो बाजरो आप और खड़ का मायना आप जैसे हमारे सरसों चे बिनोला की चे मूंगफली की जो भी अपने पास खड़ो है और इसके अलावा आप गेहूं ग्वार या अपने पास दाल चे उनकी जो चूरी ले लेवा और यह सबन को जो अपन मिश्रण कर या को मिला आपस में और या को आप पोषक आहार आप घर पर भी तैयार कर सकता यदि आप किशन भाई 100 मात्रा की बात करा तो यदि आपको 100 किलोग्राम बाटो बनाना है तो उसके कारण देखो आपको लगभग 35-40 किलो अनाज को दलियो डलवा लेवा और उसका मायने आप 35-30 से 1 किलो खल डाल देवा और उसमें जो अपना चोकोर आटो से दाल किया कि चूरी चे यह सब उनको मिला देवा और खनिज मिश्रण जरूर किशन भाई आपको मायने 2 किलो डालनी चाहिए और 1 किलो साधारण नमक ये सब आपको मिला और देखो घर पर ही आप देखो अपना गाय बेसन का जो बाटो बना सका जा और घर पर ही खिला सका जा किशन भाई में देखो अपना कई जो किशन भाई छे वे दूध दे वाला पशु उनको कहीं कि बाटो खिलाओ पर ऐसा कौन करनी चाहिए जी बाटो आपको चाहे दूध दे चाहे न दे अपना जो जानवर छे वहां को कम से कम 1.5 किलो सभी जानवरों को खिलानी चाहिए जिससे वे स्वस्थ रहेगा हष्ट पुष्ट रहेगा हाँ दूध दे वाला जानवर को किशन भाई आपको चाहिए कि थोड़ा ज्यादा खिला दे जैसे अब 3 गाय की बात करें तो 3 लीटर दूध के ऊपर आपको 1 किलो और भैंस को 2 लीटर के ऊपर 1 किलो आपको बाटो आपको दे देनी चाहिए तो इस तरह से किशन भाई अपना जानवर को आपको बाटो को संतुलित जो पशु आहार चे उनको बहुत महत्व हो चे और आपको संतुलित पशु आहार खिलानी चाहिए बात अपनी चलती रहेगी पर सुनाई को जरूरी संदेश
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं
2: मतलब
1: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी है? अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी हाँ माटी भी तंदुरुस्त

0: और लोग भी।
1: अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: परम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहा है, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

गोस्वामी जा रही लाजी हमारी।

0: किसान कम सुनने वाले सभी किसान भाइयों को हमारा राम राम। किसान भाइयों, आज चर्चा करेंगे गर्मियों में पशुओं में होने वाले रोग, बीमारी और उनसे बचाव। इसके लिए आपके साथ में है डॉक्टर राजेश रोशन मीणा, पशु चिकित्सक, पशुपालन विभाग सवाई माधोपुर। इनका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार साहब। सर, ये पशुओं में गर्मियों में कौन कौन से रोग एवं बीमारियां होती है और उनका किस तरह से बचाव करेगा?
1: पशुपालक भाइयों को राम राम।
0: जी साहब,
1: गर्मियों में होने वाले चार तरह की बीमारियां हैं जिनका टीकाकरण किया जाता है, लेकिन इससे पहले एक बीमारी और है, लू लगना, हीट स्ट्रोक।
0: जी,
1: गर्मियों में लू भी लग जाती है, जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, तो इस तरह इस गर्मी से बचाने के लिए पशुओं को नमी युक्त या फिर चांद चप्पल जो बनाते हैं अपन देसी हैं उनमें बांधना चाहिए, एवं नीम की छाया में नी बांधना चाहिए। इस प्रकार गर्मियों में पशुओं को हरा चारा खिलाना चाहिए
0: जी,
1: ताकि पानी की कमी को पूरा किया जा सके। इस प्रकार पशुओं को खड़बाटे की मात्रा इस समय कम कर देनी चाहिए
0: जी,
1: और लू से बचने के लिए पशुओं को ठंडा पानी पिलाएं दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम की, ताकि पानी की कमी की पूर्ति हो सके और दूध की मात्रा भी बराबर बनी रहे।
0: जी जी, बिल्कुल सही बात है सब।
1: गर्मियों में प्रत्येक पशु को, बड़े पशु को 2 ग्राम रोज मोटा नमक खिलाना चाहिए, ताकि वो पानी अच्छी तरह से पी सके
0: जी।
1: इस प्रकार और जो बीमारियां हैं वो है गलगोटू बीमारी, एक खतरनाक बीमारी है जो कि गाय भैंसों में होती है
0: जी। इसकी पहचान कैसे होती है सर, पहचान कैसे होती है गलगोटू बीमारी की?
1: हाँ, इसमें क्या है, पशु के गले में सूजन आ जाती है, नाक और मुंह से पानी या मुंह से लार गिरने लगती है और टेम्परेचर 105 डिग्री करीब हो जाता है
0: जी।
1: पशु बिल्कुल सारा खाना पानी सब छोड़ देता है, स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है, तो पशुपालक भाइयों को निकटतम पशु चिकित्सालय से पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए। इसमें सावधानियां भी है, टीके लगवाएं, टीके हर वर्ष लगाए जाते हैं
0: गलगोटू बीमारी के। जी बिल्कुल सही है बात सर, लगवाना चाहिए। और इसके जैसे घरेलू उपचार करते हैं किसान भाई, तो क्या करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए उनको इसके लिए?
1: गलगोटू बीमारी का तो कोई घरेलू उपचार है नहीं सर, मात्र एक टीका ही है
0: जी,
1: इसके रूप में पहले ही से ही टीका लगवाना चाहिए। इसी प्रकार एक बीमारी है लंगड़ा बुखार
0: जी,
1: क्यू
0: इसके लक्षण क्या है सर?
1: क्यू ब्लैक वाटर बीमारी है, जिसको हम देसी भाषा में लंगड़ा बुखार कहते हैं
0: जी।
1: पुट्ठे में सोजन और लगड़ापन आ जाता है, और पुट्ठे को इससे पशु के पुट्ठे को अपन दबाते हैं, सूजन आने पर चटपट की आवाज आती है।
0: अच्छा,
1: समझ लेना चाहिए लगड़ा बुखार है, तो उसका भी टीके क्वार्टर जिससे भी टीके मई जून में ही लगाए जाते हैं, इसके भी पशुपालक भाई को लगाने चाहिए। इस प्रकार एक और बीमारी फड़किया भी भेड़ बकरियों में मुख्यतः पाई जाती है, चारों तरफ घूमती रहती है पशु बकरी जो है ना, वो दीवार से मारती रहती है, हाथ पैर लेते लेते चलाती रहती है और उछल कूद करती रहती है। और इसी प्रकार एक और बीमारी है तीसरी, जो होगी FMD, खुरपका मुंह पका, जिसमें नाम से पता चल रहा है कि खुर और मुंह पर छाले बन जाते हैं, सूजन आ जाती है और पक जाता है मुंह।
0: किस कारण से होने की संभावना होती है साहब इस खुरपका मुंह पका रोग?
1: इसी टाइम है बरसात के बाद, तो इसके अभी टीके लगाए जाते हैं
0: जी।
1: FM वायरल डिजीज है, फुट माउंटेन डिजीज
0: जी। और फिर इनके जो जैसे कोई बीमार पशु है तो उसको अन्य पशुओं से किस तरह से सावधानी बरते के अलग रखें उसको के?
1: बिल्कुल, जैसे गलगोटू से या खुरपका मुखा बीमारी से पशु ग्रसित है तो उसको सेपरेट रखना चाहिए, तुरंत सेपरेट कर देना चाहिए, ताकि अन्य पशुओं में रोग ना फैले, क्योंकि ये एक संक्रामक रोग है, एक पशु से दूसरे पशु में और पशुओं से फैल सकती है
0: जी। जी,
1: FMD
0: जी। और इसके जैसे कोई रोग से ग्रसित है, इस तरह के रोग से

0: पशु और उसको किस तरह का दाना पानी या पशु आहार नहीं खिलाना चाहिए, या खिलाने के लिए कौन कौन से पशु आहार उचित होते हैं सर?
1: चारा तो खिलाएंगे लेकिन उसको सेते सारा कुछ उसका जो पानी की खेल है उसको खिलाना चाहिए बाल्टियों से, और सेपरेटली उसको अलग खान में चारा खिलाना चाहिए ताकि वो दूसरे पशुओं को संक्रमित ना कर सके
0: जी।
1: और फिर उसको प्रथम पशु चिकित्सालय से डॉक्टर को लाके दिखाना चाहिए ताकि दवा गोली देकर वो स्वस्थ हो।
0: जी जी बिल्कुल सही बात है। जैसे कई दुधारू पशु होते हैं, दुधारू पशुओं में भी कई जेर की समस्या ज्यादा होती है, कई छोटे बछड़ों में भी कई समस्या होती है, तो उनके लिए क्या करें सर?
1: मैं पशुओं को जैसे जेर की बीमारी देती बाबा, जेर की बीमारी कहते हैं, हालांकि ये कृमिनाशक

0: पशु और उसको किस तरह का दाना पानी या पशु आहार नहीं खिलाना चाहिए, या खिलाने के लिए कौन कौन से पशु आहार उचित होते हैं सर?
1: चारा तो खिलाएंगे लेकिन उसको सेते सारा कुछ उसका जो पानी की खेल है उसको खिलाना चाहिए बाल्टियों से, और सेपरेटली उसको अलग खान में चारा खिलाना चाहिए ताकि वो दूसरे पशुओं को संक्रमित ना कर सके
0: जी।
1: और फिर उसको प्रथम पशु चिकित्सालय से डॉक्टर को लाके दिखाना चाहिए ताकि दवा गोली देकर वो स्वस्थ हो।
0: जी जी बिल्कुल सही बात है। जैसे कई दुधारू पशु होते हैं, दुधारू पशुओं में भी कई जेर की समस्या ज्यादा होती है, कई छोटे बछड़ों में भी कई समस्या होती है, तो उनके लिए क्या करें सर?
1: मैं पशुओं को जैसे जेर की बीमारी देती बाबा हम जेर की बीमारी कहते हैं, हालांकि ये कृमिनाशक
0: दवाई देते हैं कई किसान भाई, लेकिन कई है कि जानवर दूध दे रहा है फिर वो ज्ञापन है 2 महीने 2.5 महीने का, ज्यादा भी है तो उनको भी दे सकते हैं कि कोई समस्या थोड़ी हो सकती है?
1: मैं कहना चाहूंगा कि ज्ञापन के हिसाब से अलग बोली दी जाती है, ये थोड़ा सावधानी भी चाहिए पशुपालकों को
0: जी।
1: ब्याई के हिसाब से अलग बोली आती है, जैसे एल्बेंडाजोल नॉर्मली ब्याई हुई जानवर को खिलाते हैं और फेनबेंडाजोल
0: जी
1: फेंटास है 1 ग्राम से 3 ग्राम तक
0: जी जी
1: ज्ञापन पशु को खिला सकते हैं खिलाते हैं
0: जी।
1: अब इसके साथ साथ ही हमें मिनरल मिक्सचर भी खिलाना चाहिए ताकि उनकी जो कैल्शियम फॉस्फोरस की कमी है पशुओं में वो भी
0: दूर हो सके
1: हो सके। इसी प्रकार पशुपालक भाइयों को हरा चारा भैंस और गायों को खिलाएं और अपने खेतों में जो हरा चारा उगाया जाता है उससे खिलाने से क्या है कैल्शियम की कमी, हरे चारे में कैल्शियम होता है, पानी की कमी और कैल्शियम की कमी पशु में नहीं रह पाए नहीं
0: जी
1: बराबर
0: जो हरे चारे में सर किसान भाई क्या अभी ज्वार और बाजरा दोनों करते हैं तो कौन सा लाभदायक रहता है कौन सा हानिकारक रहता है एक खिलाते हैं तो?
1: पानी हुई क्योंकि ज्वार थोड़ी सी हरी ज्वार थोड़ी सी सूख जाती है ना
0: जी
1: नहीं खिलानी चाहिए क्योंकि उसमें साइनाइड पॉइजनिंग होती है, बराबर पानी देते रहे ज्वार में और बिल्कुल हरी ज्वार खिलानी चाहिए नहीं खिलानी चाहिए क्योंकि उसमें साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हो,
1: पशु मर जाते हैं। बाकी हरा जैसे बरसी में है और आदमी है
0: बाजरे भी खाते हैं कई लोग
1: बाजरा है खिलाना चाहिए
0: कुट्टी करके और खूब खिलाओ
1: हाँ मशीन द्वारा कुट्टी करके उसको खाकले में मिला तेल मिला के और रोज खिलाना चाहिए उसमें थोड़ा सा 100 ग्राम नमक
0: जी जी
1: डाल देना चाहिए ताकि वो मिक्सर मिक्सर की पूर्ति सुनो हो सके
0: जी। पशुओं में सर कुछ चर्म रोग भी होते हैं
1: गर्मी की वजह से होते हैं
0: जी, कोई सावधानी उसके लिए सर विशेष?
1: ये है कि अपन जो नीम के पत्ते हैं
0: जी
1: नीम काट काट के नीम के पत्ते खिलाएं ताकि उनका चर्म रोग भी नहीं होंगे, पेट के कीड़े जो कृमि ना सके या जहर वाली समस्या वो भी खत्म हो जाती है। तो गाय भैंस भेड़ बकरियों को नीम के पत्ते काट काट के खिलाने चाहिए, नीम के बबूल के खिलाते हैं। अब भी ज्यादा से ज्यादा पशुओं को पत्ते खिलाने चाहिए, चर्म रोग जो भी है खून साफ होता है इनको खाने से
0: जी जी
1: साफ होगा तो चर्म रोग नहीं होगा।
0: बिल्कुल सही,
1: अगर ज्यादा ही चर्म रोग है समस्या है आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं।
0: तो आपने बात की पशुपालक भाइयों के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: धन्यवाद।
2: किसान भाई यह सुने अपन देखो 1100 लोकगीत और आप कार्यक्रम को आगे बढ़ावा और सुना एक मनोरंजन का 1100 लोकगीत।

किसान भाइयों, आप चलता चलता जाना आप अपना मौसम का हालचाल। तो आज अपना मौसम का मायने अधिकतम तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जो है 28 डिग्री सेल्सियस। हवा के जो चालवा की गति से वाचे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और मौसम का मायने नमी से 37% की। तो किसान भाइयों, अपने कार्यक्रम को समय अब यही समाप्त हो रहे। तो अपना ई कार्यक्रम का प्रायोजक छा कृषि सहकारिता एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली। कार्यक्रम को समाप्त करवा की दो इजाजत था का भाई इसको राम राम सा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी सवाईमाधोपुर का रणथम्बोर चैनल है, एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर। और लीजिए, प्रस्तुत है पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यादों के स्वर। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं महेंद्र कपूर और मुकेश के गाए इस नगमे के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म मिलन से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और लीजिए कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए आशा भोसले की आवाज में फिल्म दिल ने फिर याद किया से। गीत के बोल लिखे हैं जीएल रावेल ने और धुन बनाई है सोनिक ओमी ने।

और लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आमने सामने का ये नगमा। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में सुनिए अमानुष फिल्म का ये नगमा, जिसे गाया है आशा भोंसले और किशोर कुमार ने। गीत के बोल लिखे हैं इंदीवर ने और धुन बनाई है श्यामलाल मित्रा ने।

इसी गीत के साथ यादों के स्वर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है, FM 101.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया।

0: अंकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यह यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।

0: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
1: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
3: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
2: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
4: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
2: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: अंग्रेजी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
2: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: FM 101.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंबोर चैनल है। रात्रि के 9 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले नगमा सुनने के लिए हमें फोन कॉल किया है उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव और भारती राव ने। तो लीजिए सुनिए इनकी पसंद पर फिल्म क्रोधी का ये नगमा।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हम

अभी आपने उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव और भारती राव की पसंद पर फिल्म क्रोधी का नगमा सुना और लीजिए कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए फिल्म गीत से। इस नगमे को सुनने की फरमाइश की है पिपरीजा सागर मध्य प्रदेश से उमाशंकर पटेल, शांति प्रियांशी, नंदनी और माधव ने।

लीजिए। कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए फिल्म किशन कन्हैया से। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावरकर और संजय मुरंबेकर ने। तो लीजिए पेश है आपकी फरमाइश का ये नगमा।

कार्यक्रम का अगला नगमा सुनने के लिए फोन कॉल किया है मथुरा उत्तर प्रदेश से शारदा प्रसाद प्रजापति, नवीन कविता गोविंद और सिमरन ने। तो लीजिए इनकी पसंद पर सुनिए फिल्म आरजू का ये नगमा।

श्रोताओं, आकाशवाणी के सवाई माधोपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब हमारे श्रोता अपनी पसंद का फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम फोन करें गीत सुने प्रतिदिन सुन सकते हैं रात 9 बजे से 9:30 बजे तक। कार्यक्रम सुनने के लिए आप हमें फोन कॉल कर सकते हैं शाम 5:10 से 5:40 तक। और इसी कार्यक्रम का अगला नगमा सुनिए। पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजूरिया, गीता और गगनदीप की पसंद पर फिल्म हम सब चोर हैं का ये नगमा।

और लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म अमर प्रेम का ये नगमा। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है गुलाबबाग मानटाउन सवाई माधोपुर से भगवान साहेब गुप्ता, सीमा गुप्ता, तुषार, शैफाली, सक्षम और तन्वी ने।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। ये आकाशवाणी सवाईमाधोपुर का रणथम्भौर चैनल है FM 101.5 MHz पर। रात्रि के 9:30 बजे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती कार्यक्रम में आज के फनकार।

0: और इसी के साथ समाप्त होता है कीजिए नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम चार दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना देते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पूरे पकाने दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली चंदा।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: मेरा जन्म भी बम्बई का है और मैं भी साउथ बॉम्बे में ही मेरा बचपना मैंने बिताया। हम लोग पहले नाना चौक पे रहते थे। बहुत कम उम्र से पिताजी के साथ में, मेरे पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौर जो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, तो संगीत जो था वो और खेलों से ज्यादा प्रभावित हमें संगीत ने किया, क्योंकि अगर कोई पहली आवाज सुनी तो वो किसी साहस की सुनी, या कोई पहला खिलौना हाथ में आया तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट ही था। लेकिन ये था कि हम लोग पांच भाई थे और हम लोग पांचों इतने मतलब खेल कूद में भी हम लोगों को सबको बड़ा हम लोगों को शौक था।
1: उनके नाम जानना चाहेंगे हम।
0: सबसे बड़े भैया जो है हमारे श्रवण भाई जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उसके बाद में एक सिस्टर है मेरी ललिता, एक और भाई हैं अमर जो बिजनेस में है, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटे विनोद ही इज ऑल्सो प्लेबैक सिंगर, और सबसे छोटा है दिलीप। मुझे एक किस्सा बराबर याद आ रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे, म्यूजिक सिखाते थे, क्योंकि मैं संगीत में बहुत ज्यादा एक्टिव था, तो जब भी कोई स्कूल का फंक्शन होता था तो कहीं ना कहीं वो मुझे उसमें तबला बजाने के लिए कहते थे या गाने के लिए कहते थे।

0: पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं हुई, क्योंकि संगीत बहुत कम उम्र से ऐसा रच बस गया था कि या तो खेल का शौक था या संगीत का शौक था, पढ़ाई में बहुत मैं हमेशा पीछे रहा।
1: रूप कुमार राठौड़ एक दक्ष तबला वादक हैं। गायन की दुनिया में सक्रिय होने से पहले शास्त्रीय संगीत की महफिलों में कई नामचीन गायकों के साथ संगत किया करते थे। 1984 में रूप कुमार राठौड़ ने गायन की दुनिया में कदम रखा और अपनी पहचान बनाई एक सुरीले गजल गायक के रूप में।

पार्श्व गायक के रूप में रूप कुमार राठौड़ को पहला मौका दिया संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म अंगार में। इसके बाद आई फिल्म भैरवी, जिसमें रूप कुमार राठौड़ की आवाज को बहुत पसंद किया गया। कुछ और फिल्में मिली जैसे गुमराह, मोहब्बत की आरजू, तेजस्विनी और नाजायज, लेकिन रूप कुमार राठौड़ को असली कामयाबी मिली फिल्म बॉर्डर से।

पर मेरे करियर की शुरुआत हुई। मैं मतलब वोकल सीख सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही एक लगाव तबले की तरफ, एक ज्यादा रुझान या रुचि रही तबले से। और उन दिनों घर में काफी म्यूजिशियनों का आना जाना रहता था और कई उस्ताद, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सबके पास में बहुत टाइम होता था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बड़ा भाईचारा प्यार, और गाने बजाने की बातें ज्यादा होती थी rather than gossip। तो वो टाइम ऐसा था कि नामकरण है तो रात भर प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सब आर्टिस्ट आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जो आवाज, जो तबले की जो पहली आवाज या धा या ता या त्रिट या सुना होगा, तो उसने कुछ ऐसा प्रभाव दिमाग पे डाला कि अगर मैं रो रहा हूं और अगर मेरे हाथ में तबला आ गया तो मैं चुप हो जाता था। और मुझे बराबर याद है कि एक बार मुझे बहुत बुखार था, 102-103 डिग्री बुखार था, और रात में अब्बा जी, जिसे हम प्यार से अब्बा जी कहते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब घर पे आए और उन्होंने देखा कि अरे बेटे को बहुत बुखार है। तो मैं सो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, तबला की आवाज मुझे सुनाई दी और मेरी आंख खुल गई और मैं रोने लगा, जिद करने लगा। और फिर खां साहब ने, अब्बा जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और वो बजाते रहे और एक घंटे में जो मेरा बुखार भाग गया। हाँ, तो वाकई वो कुछ ऐसा कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ वो दैवी साउंड या उसका जो नाद था वो मेरे मनस पे मतलब इतना ज्यादा छाया हुआ था। तो शायद यही वजह रही हो सकती है कि मैंने तबला एज अ प्रोफेशनल बजाना शुरू किया।

पहला प्रोग्राम मुझे याद है, जैसे मैं 6 साल का था तब मैंने स्टेज पे पहला परफॉर्मेंस, एक गोवला टैंक पे एक हॉल है तेजपाल हॉल,

0: रुकुमार जी, आपने बताया कि आपके घर में संगीत की महफिलें हुआ करती थी और बहुत नामी गिरामी कलाकार उस महफिल में आया करते थे। मुझे बताएंगे कि कौन कौन आते थे?
1: अबाजी का आना जाना रहता था,
0: उस्ताद अल्लाह रखा
1: साहब, और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, एक पंडित सदाशिव पवार जो बहुत, जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ तबले में भी, पंडित काशीनाथ मिश्रा, इनका भी काफी आना जाना रहता था, और एक दशरथ पुजारी करके बहुत मराठी के बहुत बड़े कंपोजर हुए, उनसे भी बड़ा याराना था पिताजी का, और शमी अहमद खान साहब, उनका भी आना जाना रहता था।
0: तबला जो था उसमें आपका गुरु पिताजी तो थे ही, इसके अलावा और किन से आपने सीखा?
1: कहा जाता है कि देखिया सीखिया परखिया, तो कुछ चीजें जो है वो देखने से आई, कुछ चीजें सीखने से आई, और कुछ चीजें जो है अपने आप परखने से आई। प्रभावित मैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि

वो सब मेरे गुरुजन ही हैं, खास तौर से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी, पंडित शांता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद तरखवा खान साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सब को देख देख के, सुन सुन के जो है मैंने विद्या हासिल की। जैसे एक लव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और जो है विद्या हासिल की, तो मैं भी इसी तरह से मैंने इनको सुन सुन के काफी चीजें अपने हाथ में बिठाई और मैं आज भी वो चीजें बजाता हूँ। बड़ा खूबसूरत एल्बम जिसका टाइटल था वादा, और इसके संगीतकार मशहूर उस्ताद अमजद अली खान साहब, और गजलें सारी लिखी थी एक और बड़े उस्ताद गुलजार साहब, और उनके साथ में ये काम करने का मौका मिला। उसमें से ये एक चीज जो बहुत पॉपुलर हुई, ऐसा कोई जिंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था।

0: 84 में मुझे बराबर याद है कि कहीं प्रोग्राम था, पाटकर हॉल में प्रोग्राम था, और वहां मैं एज ए तबला प्लेयर ही गया था
1: मुंबई में,
0: और वहां पर हारमोनियम पड़ा हुआ था, ग्रीन रूम में मैं बैठ करके मैं कुछ गा रहा था, और कहीं से सोनाली की एंट्री हुई। उसको लगा कि कहीं कोई कैसेट सुन रहा है या कोई टेप बज रही है, और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से वो देखते रही और मुझे कहा कि तुम्हें तो गाना शुरू कर देना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, इतना नेचुरल गला है तुम्हारा।
2: संगीत के प्रति अनुराग सोनाली और रूप कुमार राठौड़ को एक दूसरे के करीब लाया और दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो गए।

0: ज़माना।
1: लंबे समय तक गायन के बॉर्डर पर रहने वाले रूप कुमार राठौड़ फिल्म बॉर्डर के बाद गायन की मुख्य धारा में आ गए। उनकी और कुछ मशहूर फिल्में हैं करीब, हम साथ साथ हैं, हो तू तू, लावारिस, सरफरोश।

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार और गायक रूप कुमार राठौड़ पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
1: आज के फनकार।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी।

भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम के बाकी नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। महफिल में आज उनका ही चर्चा है, हर नजर को ठहरा गए, एक हल्की सी मुस्कुराहट पे अरमान मचल जाते हैं, इस कदर छाए हैं बादलों में जैसे बूंदों का आशियां, खामोश बैठे हैं ऐसे जैसे रात कुछ सोच रही हो, सच कहूं तो ऐसी सादगी का क्या कहना, उस नाज का क्या कहना, उस नाजनी का क्या कहना।

खफा होना भी क्या कयामत है, देखते तो इधर ही हैं। वो तेरी नजर का निशाना खाली जाता नहीं, प्यार उनसे भला किस तरह छुपाएं। साज़े दिल पे एक तरह ना दिल ने छेड़ा है, चांदनी रात में ये फसाना दिल ने छेड़ा है।

मचलती घटाओं की गुलाबी रंगत, प्यारे वो पल जब बादे सबा ने कुछ कहा। दिल कहता है आपके प्यार की दास्तान ये सुनाती हैं, कुछ तूफान दिल में मचलते हैं। ये आपका जाना और जाकर फिर लौट आना, तो बंदिशों के दरवाजे मोहब्बत में रहने दो। कुछ दिल की कहो, कुछ कुछ दिल में ही रहने दो।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी।

0: सुनिए
1: कहिए सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम। ये आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंबोर चैनल है, FM 101.5 MHz पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने

0: अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है। रात्रि के 11:05:40 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातःकालीन प्रसारण सभा में सुबह 5:55
0: ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम 101.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी सवाई माधोपुर का रणथंभौर चैनल है। रात्रि के 11:05:40 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातःकालीन प्रसारण सभा में सुबह 5:55 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद।